अभी आप भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना सुन रहे थे। वंदे मातरम।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है, शक संबत 1948 के ज्येष्ठ मास की 15वीं तिथि, तदनुसार 5 जून सन 2026 सुबह के 5:53 और 40 सेकंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: कोयल सी तेरी बोली, कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु,
1: हाय।
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: अब हम आपको हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा दे दें। अब से कुछ ही पलों में यानी 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 6:05 पर होगा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम सत्य वचन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे। श्री मोदी दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना रहा।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता के लिए भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव येविट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत यूके विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत यूके विजन 2035 के विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु तथा स्वच्छ ऊर्जा और शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया है और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की है। दोनों पक्षों ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों और राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में एक वर्ष का सेवा विस्तार देने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका ये कार्यकाल 10 जून से प्रभावी होगा और ये एक और वर्ष की अवधि के लिए रहेगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 7 जून तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून को 1973 से हुई थी। ये दिन पर्यावरण की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाइजिंग को शिकस्त दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: आकाशवाणी रेनबो पर अब वक्त है स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम सत्य वचन का, तो चलिए सुनते हैं स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम सत्य वचन।
2: दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय FR मीडिया एकेडमी।
3: जी हाँ, अपने वादे के अनुसार फिर हाजिर है आपका दोस्त SR यानी संतोष राव आकाशवाणी FM रेनबो पर लेकर प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन। करिए स्वीकार हमारी नमस्ते सलाम और प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज दुनिया में गुनाह दिन प्रतिदिन इतना बढ़ता जा रहा है कि हर पल डर के साए में इंसान अपना जीवन जीने को मजबूर हो रहा है। एक दूसरे के प्रति विश्वास खत्म होता जा रहा है, इंसानियत कम होती जा रही है। दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि ऐसे वक्त में तुम परमेश्वर के पवित्र वचन को थामे रहना, प्रार्थना और आराधना में बराबर बने रहना, ताकि अपने आप को गुनाहों से बचाए रखो।

जी हाँ, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि मनुष्य लाख जतन करने के बावजूद अपने आप को अपने ज्ञान और अपनी सामर्थ्य से शैतान को कभी हरा नहीं सकता। इसीलिए शैतान और उसकी ताकतों पर विजय पाने के लिए और दिन प्रतिदिन उससे लड़ने के लिए तुमको परमेश्वर के प्रति अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखना होगा और अपनी नजरों को पिता परमेश्वर की ओर लगाए रखना होगा, क्योंकि वही तुम्हें शैतान और उसकी ताकतों से लड़ने की सामर्थ्य देगा और सच्ची राह दिखाएगा।

जी हाँ, आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन मेरे यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि शैतान हम मनुष्यों से ज्यादा पिता परमेश्वर के बारे में और उसके उद्धार के बारे में जानता है, इसीलिए वो हम मनुष्यों के हृदय में नाना प्रकार के प्रलोभन द्वारा और मनों में शक डालकर परमेश्वर से दूर करने की करता है कोशिश, ताकि हम पिता परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह से वंचित होते जाएं और उसको मौका मिल सके हमें और आपको गुनाहों में गिराने।

दोस्तों, जब हम प्रभु के वचनों पर चलते हैं और जय जयकार के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो प्रभु की कृपा और अनुग्रह हम पर बना रहता है। प्रभु का सामर्थ्य हाथ आप पर सदा बना रहे। हम लेते हैं आपसे विदा, लेकिन दोस्तों आप हमें मैसेज या फोन करके ये अवश्य बताएं कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा। हमारा नंबर है 9693644242। जी हाँ, 9693644242। और हमारा दूसरा नंबर है 7678438471। जी हाँ, 7678438471। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते यानी गुरुवार सुबह 6:05 पर हम फिर हाजिर होंगे एक नए सत्य वचन के साथ। तब तक के लिए आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी रेनबो के सफर में। आकाशवाणी रेनबो के सफर में शुरुआत हो चुकी है कार्यक्रम सुप्रभात की। सुप्रभात का ये सफर है और ये सफर बिल्कुल सुहावना है। ये सुबह बिल्कुल मनमोहक है, सुहावनी है और इस सुबह की शुरुआत करते हैं कि बहुत ही खूबसूरत से विचार के साथ कि जीवन में हर उत्तर शब्दों से नहीं मिलता, कि जीवन में हर उत्तर शब्दों से नहीं मिलता, कुछ उत्तर समय और शांत मन खुद दे देते हैं।

आकाशवाणी रेनबो के सफर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नुबुल श्रेष्ठ और आप सुन रहे हैं सुप्रभात। और आपको हमारा ये साथ कैसा लगता है जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं अलग अलग कार्यक्रम में, और अलग अलग कार्यक्रम में अलग अलग जानकारी के साथ आप जुड़ते हैं और हर किसी को सुनते हैं। हर किसी की बातें अलग हैं, विचार अलग हैं, उनका बोलने का तरीका अलग है। तो जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। आप इतने सारे स्टेशंस हैं और आप अगर चुनाव करते हैं आकाशवाणी रेनबो का, तो कहीं ना कहीं आपको हमारा साथ ज़रूर अच्छा लगता होगा। और इस साथ की बात आज मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारे जीवन में किन लोगों का साथ है, कौन लोग हैं जिनके साथ हमारा जुड़ाव है और हम उनके साथ रहते हैं, यही निर्धारित करता है कि हमारा वर्तमान क्या है और भविष्य कैसा होगा। क्योंकि आप की जैसी संगति होती है ना, वैसा ही असर आप पर पड़ता है, आप ऐसे ही बनते जाते हैं। तो ये चुनाव करना बहुत ज़रूरी है कि किन लोगों के साथ और किन लोगों के बीच में आप रहते हैं, क्योंकि मनुष्य केवल अकेले नहीं बनता, वो अपने संबंधों, संवादों और संगति के माध्यम से धीरे धीरे निर्मित होता है। तो आज संगति का असर तो होता ही है, इसी पर बात करेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो के इसी सफर में।

तो आप किन लोगों के साथ समय बिताते हैं ये काफ़ी मायने रखता है। उनके विचार, मूल्य, आकांक्षाएं और जीवन दृष्टि अनजाने में हमारे भीतर प्रवेश करने लगती है, इसलिए ये मायने रखता ज़रूर है और बहुत ख़ास भी बन जाता है। हमारा ये जो मन है ना, वो बेहद ग्रहणशील है। वो केवल शब्द नहीं सुनता बल्कि वातावरण भी ग्रहण करता है। इसलिए संगति केवल मित्रों का समूह नहीं बल्कि वो अदृश्य मिट्टी है जिसमें व्यक्तित्व का वृक्ष उगता है। बात कर रहे हैं हम संगति की। तो ज़रा सोचिए आपके दोस्तों के बारे में, आप जिनसे बहुत सारी बातें करना पसंद करते हैं उनके बारे में, और क्या कभी आपको भी ये लगा है कि जो कई बार ऐसा होता है ना कि मेरे साथ तो ऐसा होता है कि जब मैं किसी से बात कर रही हूँ और जब किसी से बहुत ज़्यादा बातें होती हैं तो पूरी बॉडी लैंग्वेज तक कई बार कॉपी होने लग जाती है और आपको ये पता चलता है कि हाँ, आप उस व्यक्ति की जो तरीका है बात करने का वो आपके अंदर आ रहा है, फिर आपको रोकना पड़ता है, एक स्टॉप लगाते हैं आप, है ना। तो संगति पर हम बात कर रहे हैं, तो ज़रा आप भी सोचिए, क्योंकि ये जो हम कहते हैं ना कि भविष्य में ऐसा क्यों हुआ, ये घटना क्यों घटी, तो वो जो भविष्य है वो वर्तमान में बोए जा रहे बीजों का ही रिजल्ट है, और उन बीजों का चयन बहुत हम हद तक हमारी संगति पर निर्भर करता है, हमारी संगति तय करती है। यदि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा परिश्रमी हैं, ज्ञानी हैं, सच का साथ देने वाले हैं और आत्मविकास की ओर बढ़ रहे हैं, तो आपका उसका जीवन भी उसी दिशा में ढलने लगेगा।

और ये जो दिशा है वही आपकी दशा भी निर्धारित करती है। और अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो नकारात्मकता से भरे हुए हैं, आलस्य से भरे हुए हैं, कहीं ना कहीं डर है, स्वार्थ है, चिंता है, जो बीत चुका है उसी की बातें हैं और अतीत में जो घटनाएं हुई हैं सिर्फ उसी पर विचार विमर्श करते रहते हैं, तो भविष्य भी वैसा ही रंग ग्रहण करता है। तो सर आप सोचिए कि आप क्या करते हैं जब आप अपने दोस्तों के साथ होते हैं, किस तरह की बातचीत होती है और कैसा वातावरण होता है।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो। पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

तो संगति का असर तो होता ही है, और हम वैसे भी बनते जाते हैं जैसे हमारी संगति होती है. और तभी तो कहते हैं कि अच्छे लोगों की संगति में रहा करो, अच्छे लोगों का साथ हो तो आप भी सकारात्मक होते हैं, और जो बीत गई हैं बातें उन पर ज़्यादा चिंता नहीं करते हैं, बल्कि उनसे सबक लेते हुए, चिंतन करते हुए आगे बढ़ जाते हैं. और हमारी जो असली प्राथमिकता है ना, वो हमारे बोलने से नहीं, हमारे शब्दों से नहीं है, बल्कि वो संगति से प्रकट होती है. जो लोग हमारे करीब हैं और किस तरह के लोगों के बीच में हम सहज महसूस करते हैं, वही दिखाता है हमारे अंदर की सोच को, हमारे संस्कार को, हमारी इच्छाओं का वही दर्पण है. इसलिए अगर आप किसी को भी समझना चाहते हैं तो उसके शब्दों पर मत जाइए, उसके दावों पर मत जाइए, बल्कि देखिए वो किन लोगों के बीच में रहता है, उसके जो निकट के जो संबंध हैं वो कितने सार्थक हैं, है ना. तो इससे भी आप पता लगा सकते हैं कि कोई जो व्यक्ति है वो किस तरह का है. तो ज़रा आप भी सोच समझ के अपनी संगति का चुनाव करें, क्योंकि आप ही तो ये कहते हैं ये बात, और समझते भी हैं, और आप हमें सुन भी रहे हैं और लिखकर भेज भी रहे हैं कि अच्छे और मेहनती संगति के जो लोग होते हैं, जब आप उनके साथ रहते हैं तो आप पॉजिटिव रहते हैं, आपके विचार भी अच्छे हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं. और जब साथ अच्छा ना हो तो फिर उसका जो असर है वो हमारे विचार और कार्य दोनों पर पड़ता है. इसलिए संगति किस तरह की है ये बहुत मायने रखता है. अभी हम आपके साथ जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो के इस सफर में, और आप सुन रहे हैं सुप्रभात.

आकाशवाणी रेनबो के सफर में आप सुन रहे हैं सुप्रभात। मैं हूँ आपके साथ नुपुर कुलश्रेष्ठ, और साथ ही साथ आज हमने बात की आपकी संगति कैसी है, और संगति का असर तो होता ही है। तो यदि आप ये जो संगति है ना, ये बहुत मायने रखती है, ये आपकी सोच, चरित्र और भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए सही सोच और चरित्र सही रहेगा तो भविष्य भी उज्जवल होगा। इस बात का पूरा ध्यान रखें, और जब भी लगे अगर आपको कि संगति ठीक नहीं है तो फिर आपको वहाँ से हट जाना चाहिए। अपनी संगति को लेकर हमेशा सतर्क रहना चाहिए, और ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको, आपकी ऊर्जा को खींचते हैं, आपको लगता है कि आप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, आप गलत रास्ते पर हैं। तो यदि संगत गलत हो जाए तो उससे तुरंत बाहर निकलना ही बुद्धिमानी है। तो आज बस इतना ही, लेकिन आप आज कौन कौन से कार्यक्रम हैं जिनके साथ आपका साथ बना रहेगा, बिल्कुल आपको बता देती हूँ। आप कुछ ही देर में सुनेंगे गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, रविंद्र सिंह होंगे आपके साथ। उसके बाद गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर के दूसरे अंक में एक बार फिर आपसे मैं जुड़ूंगी इस कार्यक्रम में। दिल के तराने गाने नए पुराने सुनेंगे आप रविंद्र सिंह के साथ ही 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। उसके बाद वेस्टर्न म्यूजिक में मैचलेस म्यूजिक आर में आपके साथ होंगे शालिका कपूर, और फिर आप सुनेंगे बॉलीवुड ट्रेल्स रंजन अनेजा के साथ, और उसके बाद प्लेट कूल में आपके साथ होंगे शालिका कपूर और मेरा वाला सॉन्ग सुनेंगे 1:05 से लेकर 2 बजे तक, रंजन अनेजा ही होंगे आपके साथ। 3 बजे से लेकर 4 बजे तक का समय है रेडियो डॉक्टर का, लेकिन उससे पहले आप सुनेंगे आशियाना जिसमें आपके साथ होंगी ज्योतिका सिंह, और रेडियो डॉक्टर में आपके साथ जुड़ेंगी शैली भाषांजलि, और आज का विषय रहेगा स्पेशल कार्यक्रम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर। और उसके बाद आप सुनेंगे अल्फा जैन, और सिटी लाइट्स की में आप फिर एक बार जुड़ेंगे शैली भाषांजलि के साथ सिटी की खबरों के साथ 5:05 से लेकर 6 बजे तक, और मैसेज मसाला मिक्स आप सुनेंगे प्रवीण शर्मा जी के साथ। उसके बाद आप सुनेंगे लिपिका दास के साथ फ्राइडे फिस्टा, और उसके बाद आप म्यूजिक मस्ती में एक बार फिर जुड़ेंगे प्रवीण शर्मा के साथ। आपकी याद आती रही इस कार्यक्रम में आपके साथ होंगी गीता चौधरी, 9 बजे से लेकर 10 बजे तक ये कार्यक्रम सुनेंगे आप। और उसके बाद वेस्टर्न म्यूजिक में एक बार फिर आपके साथ होंगी लिपिका दास और रंगे महफिल इस कार्यक्रम के साथ। बस यहीं तक रहेगा गीता चौधरी आपका साथ देंगे इस कार्यक्रम में, और फिर आप एक नई शुरुआत होगी, फिर से आपसे जुड़ेंगे। आप बस जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो के इसी सफर में। मैं नुपुर कुलश्रेष्ठ आपसे लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।

0: और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज ही दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और समुदायों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग शारीरिक फिटनेस से कहीं अधिक स्वस्थ रहने के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
1: योग भोग से भी मुक्ति देता है और रोग से भी मुक्ति देता है, और सबसे अहम बात कि मिनिमम बजट में हेल्दी लाइफस्टाइल का ये सबसे उत्तम उपाय है। इसलिए आपको ये मंत्र याद रखना है, हर रोज योग भगाएगा सारे रोग।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव येवेट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने इसके विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा तथा शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की। दोनों नेताओं ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों तथा राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई शोध रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्री कश्यप के निधन पर शोक व्यक्त किया है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुकरण ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोनताई और कैंग खाईजिंग को शिकस्त दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपका। मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त रविंद्र सिंह और कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। तो चलिए जल्दी से गुड मॉर्निंग कर लेते हैं क्योंकि सुप्रभात तो नूपुर कर ही चुकी है। अब इस सफर को भी आगे बढ़ाते हैं क्योंकि यहाँ पर होगी इतिहास के पन्नों की बात, मौसम का हाल और इसके साथ साथ वो जानकारियां जो इतिहास के पन्नों में समेटे होती हैं हमारी उन हस्तियों को जिनसे हमें जरूर रूबरू होना चाहिए। तो चलिए एक प्यारे से गीत के साथ शुरू करते हैं सफर को, क्योंकि सुबह सुबह की बात है, रविंद्र आपके साथ हैं और प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। म्यूजिक जब मस्त मस्त हो तो फिर दिन तो होना ही है मस्त मस्त। तो चलिए इसी म्यूजिक के साथ साथ आज के दिन को और प्यारा से बना देते हैं, है ना।

अब भाई चैन खोया हो या रात में कुछ भी खोया हो, हम तो ये कहेंगे सवेरे सवेरे वो चीज़ अगर मिल जाए हमें तो फिर कह नहीं क्या। और अगर गर्मी का मौसम हो और सुबह खुशनुमा और बेहतरीन तारो ताज़ा हवा बह रही हो तो फिर क्या बात है। तो भैया मौसम विभाग ने भी ये बता दिया है कि दिल्ली में 5 जून को भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। तो आप तैयार रहिए इस बारिश के मौसम का लुत्फ उठाने के लिए, क्योंकि

जो तपिश इस वक्त हम लोग झेल रहे थे वो उससे हमें छुटकारा मिलने वाला है, और लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पवन भी बहने वाली है। तो इस पवन का आप आनंद लीजिए, और जो ताज़ी ताज़ी हवा चेहरे को छूती है ना, तो बस कुछ अलग ही नज़र आता है ये सवेरा। और सुबह ऐसा लगता है जैसे कुछ कह रही हमको कि भाई जागो, तो सुबह उठकर थोड़ा थोड़ा रनिंग करो, मतलब भागो, तो तभी तो जिंदगी का मजा आएगा। तो तापमान बता देते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। सब कुछ आपके अनुरूप है, यानी गर्मी में सर्दी का एहसास हो रहा है भाई साहब। मौसम का आनंद उठाइए हमारे साथ प्यारे प्यारे गीतों का। इंतज़ार तो इसी बात कर रहा था कि भाई कोई हमें सुबह सुबह उठा दे आके, और हमारी जो थोड़ी बहुत सुस्ती बची है उसको भगा दे। कोशिश तो हमारी यही रहती है लेकिन आपको तो ट्यून इन करना ही पड़ेगा 102.6 FM रेनबो, जहाँ पर सतरंगी मौसम आपका इंतज़ार करता है।

0: तो बातें जब मौसम की होती हैं तो फिर मौसम सुहाना हो तो कुछ अलहदा निकलने लगती हैं और हमारे जो दिल के जज्बात हैं, एहसास हैं, वो जाग जाग कर कहते हैं, भाई साहब जितना भी काम है ना अभी ठंडे ठंडे मौसम में निपटा लो वरना बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि अगर गर्मी है तो फिर पसीने की बूंद है, ये कहती है भाई मेहनत का पसीना है। खैर, इसके साथ साथ जब बात होती है अपने बारे में कुछ जानने की तो थोड़ा सा पीछे पलट कर देखना चाहिए कि क्या कुछ पाया है हमने, और यही कहता है हमारा आकाशवाणी। और आकाशवाणी का जो पूरा का पूरा इतिहास है वो हम समझे रहते हैं अपने कुछ बातों में, अपने कुछ बयानों में, अपने कुछ एहसासों में। चलिए एहसास करते हैं आकाशवाणी के इस 90 साल पूरे होने पर।
1: नमस्कार श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि 8 जून 2026 को आकाशवाणी के 9 दशकों की यात्रा पूरी होने जा रही है। इसी अवसर पर हम इस यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ावों को आपके साथ साझा करेंगे।

0: तो जुड़ जाइए हमारे साथ स्मृतियों के सफर की विशेष श्रृंखला आकाशवाणी एट 90 में मेरे यानी निशा भारद्वाज के साथ। फरवरी 1998 को आकाशवाणी नई दिल्ली से न्यूज ऑन फोन सेवा की एक अभिनव शुरुआत की गई। इसका मुख्य उद्देश्य श्रोताओं को ऑन डिमांड और उनकी सुविधा के अनुसार कभी भी ताज़ा समाचार उपलब्ध कराना था। इस सेवा के माध्यम से श्रोता किसी भी स्थान से केवल एक निर्धारित नंबर डायल करके हिंदी और अंग्रेजी में मुख्य समाचार सुन सकते थे। जल्द ही इसका विस्तार चेन्नई से तमिल, हैदराबाद से तेलुगु, मुंबई से मराठी और पटना से हिंदी जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में हुआ। आगे चलकर ये सेवा अहमदाबाद, बेंगलुरु, जयपुर, लखनऊ और इम्फाल जैसे शहरों तक भी पहुंची। तो श्रोताओं, रेडियो की इस यात्रा को और अधिक जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी एट 90 में। तो फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए निशा भारद्वाज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: सहायता टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

हाँ जी, दिल में उतर गया ना गीत के बोल, है ना। कहीं खो गए और जो बची कुची सुस्ती थी, भाई साहब भाग गई ना आपकी। हमारी भी कोशिश है कि भगाते रहेंगे आपकी ये सुस्ती और आपके जीवन के सफर को और खूबसूरत बनाते रहेंगे। लेकिन उससे पहले आपको जागना होगा और ये समझना होगा कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है। और तो जिंदगी में पहला विचार जो सुबह सुबह उठ के हमारे लिए आ जाना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, हमारे हमें अपने जीने के तरीकों को कहीं ना कहीं बदलना होगा। लेकिन अगर हमें यह समझना है कि हम कहां पर खड़े हैं, तो कहते हैं कि भाई एक इंसान को अगर ये वाकई समझना है कि वो अपनी तरक्की में क्या क्या हासिल कर चुका है, तो उसे पीछे मुड़कर देखना होगा। भाई साहब, पीछे मुड़कर देखना मतलब घूमकर देखना नहीं, आप घूमकर मत देखिए। पीछे मुड़कर देखने का मतलब है अपने पास्ट पर एक नजर डालिए। तो चलिए हम भी पास्ट पर एक नजर डाल लेते हैं। इंसान 5 जून 2026 में आते आते क्या कुछ हासिल कर चुका है, देखते हैं अपना पास्ट क्या है उसका ड्राफ्ट। तो भाई साहब, 1752 तारीख ही बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पतंग उड़ाकर बिजली को ऊर्जा स्रोत साबित कर दिया। देखा वैज्ञानिक क्या नहीं कर सकते। 1989 तारीख आज की, भारतीय मिसाइल त्रिशूल का श्रीहरिकोटा से सफल परीक्षण किया गया। 1981 के दिन आज ही की तारीख, पहली वैज्ञानिक रिपोर्ट्स में एड्स के मामलों का उल्लेख किया गया। 2017 में आज की तारीख, मैसेंजर अंतरिक्ष यान ने शुक्र ग्रह के पास दूसरी उड़ान भरी। 2017 5 जून GSLV Mark 3D-1 सबसे भारी रॉकेट का प्रक्षेपण किया गया। 2019 आज की तारीख,

लोग प्रतिवर्ष, ये अध्ययन में रिपोर्ट सामने आई कि प्रतिवर्ष लोग 50,000 माइक्रोप्लास्टिक कण निगल जाते हैं। और अगर हम सामाजिक और खेल जगत के इतिहास की बात करें तो 1915 में डेनमार्क ने संविधान में संशोधन कर महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था। 1961 में भारतीय टेनिस खिलाड़ी रमेश कृष्णन का जन्म हुआ था। 1988 भारतीय क्रिकेट अजिंक्य रहाणे का जन्म हुआ था। तो इतिहास के पन्नों में बहुत सारे ऐसी बातें दर्ज हैं जो हमें बताती हैं कि भाई हम कहां तक आ पहुंचे हैं। महिलाओं का अधिकार हो चाहे विज्ञान की उछाल, हर जगह हर बात को हमें जानना इसलिए जरूरी है कि हम जब पीछे मुड़कर देखें और जिस आसान जिंदगी को हम जी रहे हैं पता चल सके कि वो किन मुश्किलों के दौर से गुजर कर आई है ना। तो हमारे जो नैना है ना वो जरा फोकस्ड होने चाहिए। कहते हैं ना कि नजर बदलो नजरिया बदल जाता है। तो हर चीज को देखने का नजरिया आपका बेहतर है तो हमारा कल और खूबसूरत और बेहतर हो जाता है। हमारा आपका प्यार, एक दूसरे के हाथों में हाथ और एक दूसरे के प्रति हमारी जो समझ है वो हमें खूबसूरत बनाती है, हमारे शहर को, हमारे मोहल्ले को, हमारे देश को खूबसूरत बनाती है। इसलिए प्यार करो एक दूसरे से।

कभी कभी कुछ कहे बिना भी चीजों को समझ लिया जाता है, वो इशारे समझ लिए जाते हैं जो सामने वाला करता है। अगर हम नहीं समझ पाते तो कभी कभी हमें नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे हम ये बातें क्यों कर रहे हैं, रविंद्र जी सुबह सुबह आपको हो क्या गया है, ठीक तो हो, नींद में चल के तो नहीं आए? भाई साहब बिल्कुल नहीं, नींद में चलने की बात अलग है, नींद से जागने का समय है। क्योंकि बिना कुछ कहे इशारों में बहुत कुछ कह देती है हमारी ये प्रकृति। क्योंकि आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, तो विश्व पर्यावरण दिवस की जब बारी आती है, इस विषय पर सोचने की बारी आती है, तो हम सबकी भागीदारी बहुत जरूरी हो जाती है। और इसीलिए कि सिर्फ हम अपनी उलझनों में ना उलझे रहे, बल्कि हम जहां पर जिस स्थान पर जिस मिट्टी में जन्म ले चुके हैं उसके बारे में सोचना भी हमारी जिम्मेदारी हो जाता है। पर क्या हम अपनी उलझनों के बीच ये भी सोचते हैं? तो सोचना चाहिए। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, इसका इतिहास भी थोड़ा सा बता देते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1972 से शुरू किया गया और यह दिन हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी को बचाना, उसको स्वस्थ रखना हमारा सबसे बड़ा दायित्व हो जाता है। और वर्ष 2026 में भी इसको बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन एक महत्वपूर्ण संदेश के साथ। और इस बार का जो फोकस है वो प्लास्टिक प्रदूषण जैसी गंभीर समस्या पर है, जो समुद्रों, नदियों, वन्य जीवों और मानव स्वास्थ्य तक को प्रभावित कर रही है। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन को हराएं, प्रदूषण को हराएं। विश्व पर्यावरण दिवस की जो शुरुआत है वो संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर वैश्विक जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से की गई, और इंसान को बताने के लिए कि भाई आपकी भागीदारी भी उतनी जरूरी है, सिर्फ सरकारों के या प्रशासनिक लोगों के काम नहीं है ये। जब तक हम सब मिलकर ये भागीदारी तय नहीं करेंगे, तब तक हम प्रकृति को, अपनी पृथ्वी को नहीं बचा सकेंगे। और जानते हैं 150 से ज्यादा देशों के लोग इसमें हिस्सा लेते हैं, यानी जागरूक होते जा रहे हैं। हर साल एक नई थीम और एक मेजबान देश को यह जिम्मेदारी सौंपी जाती है, और हम सब मिलकर इस दिवस को मनाते हैं, किसी विशेष पर्यावरणीय समस्या पर वैश्विक ध्यान को केंद्रित किया जाता है। और पहला विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया गया था वो 1973 में मनाया गया था। हर साल दुनिया में 4 करोड़ टन से अधिक प्लास्टिक कचरा पैदा होता है, जिनमें से सिर्फ 9% ही रिसाइकिल हो पाता है। प्रतिदिन औसतन भारत में 26,000 टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है, जो कि चिंताजनक है, लेकिन उसके प्रयास लगातार जारी हैं कि हम कैसे इससे बच सकते हैं, और वैज्ञानिक भी उस मामले में जुटे हैं। लेकिन उन्होंने चेताया कि अगर हम पूरे विश्व की बात करें, अगर इसी रफ्तार से प्लास्टिक कचरा बनता रहा तो 2050 तक समुद्र

समुद्रों में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक होगा। अब अंदाजा लगा सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं यह भी समझ लेते हैं। हम को बस कुछ संकल्प लेने होंगे, उनका पालन करना होगा। प्लास्टिक का उपयोग कम करें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, पानी और ऊर्जा की बचत करें, कचरे को अलग अलग करके रीसाइकिलिंग को बढ़ावा दें और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े अभियानों में हिस्सा लें। तभी ये प्रकृति खूबसूरत होगी, तभी हमें ताजी हवा मिलेगी। वो कहते हैं ना कि जब आसपास का वातावरण अच्छा होता है, सराउंडिंग्स अच्छी होती है, तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। और हम अपनी प्रकृति, अपनी धरती के लिए इतना भी नहीं कर सकते। मस्त रहिए, कोशिश कीजिए कि हम सब इसमें भागीदारी निभाएं और इसे और खूबसूरत बनाएं।

0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

शब्द ना हो, कोई अलाप हो, तब भी वो दिल में उतर जाता है। कुछ एहसास करा जाता है कि मानो कुछ कहने की कोशिश की जा रही है, है ना। और जिंदगी यही है भाई, रंगमंच है। हर बार जिंदगी का अगला पल हमें कुछ ना कुछ नया सिखा जाता है और हम उसी में उलझ जाते हैं कि भाई कब तक सीखें। और जिंदगी इसी का नाम है कि हम जब तक चाहें तब तक सीखें, यानी सीखने की कोई उम्र नहीं होती। लेकिन हाँ, इस सीखने के बीच में अगर हम अपने संघर्षों को अपनी ताकत बना लेते हैं तो फिर अपना नाम इतिहास के पन्नों में जरूर दर्ज करा जाते हैं। और इनमें से ही कहते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो खिलाड़ी होते हैं, और खिलाड़ी जो होते हैं, कुछ खिलाड़ी उनमें से ऐसे होते हैं जिनको खेल जो है विरासत में मिलता है। उनके कंधों पर बस इतना होता है कि उस विरासत को आगे ले जाने की बड़ी जिम्मेदारी होती है और इसके साथ साथ दबाव भी। और ऐसा ही एक खिलाड़ी है जिसे खेल विरासत में मिला और उसने उस विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी निभाई। उनका नाम है रमेश कृष्णन, जो कि एक टेनिस खिलाड़ी रहे हैं और पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित रहे। चलिए कुछ बताते हैं इनके बारे में। दरअसल रमेश जी के पिता ने भी अधिक, रमेश ने जो उपलब्धियां हासिल की, अपने पिता से भी वो आगे गए दो कदम, और अपने करियर में उन्होंने जो उपलब्धियां हासिल की, अपना संघर्ष जो उन्होंने

संघर्ष के पल बिताए, उसके दम पर अपनी खुद की पहचान बनाई, यानी पिता का नाम लेकर नहीं चले। यह जरूर पता था कि उनके पिता हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान अलग तरीके से बनाई। इनका जन्म जो हुआ था आज ही के दिन हुआ था, 1961 में चेन्नई में, और इनके पिता रामनाथन कृष्णन भी प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रहे हैं। रमेश कृष्णन ने अपने पिता की भांति भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलवाई और उन्होंने अपने पिता का अनुसरण करते हुए 1979 यानी 1979 में जूनियर विंबलडन चैंपियनशिप जीती थी और जूनियर फ्रेंच टाइटल जीतकर वो नंबर एक जूनियर खिलाड़ी बन गए थे। करियर की उनकी बात करें तो साल 1981 और 1987 यानी 1981 और 1987 में रमेश US ओपन के क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने में कामयाब रहे और 1986 में उन्होंने विंबलडन के क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय किया। हालांकि उनके करियर का जो सबसे ऐतिहासिक साल था वो रहा 1989 यानी कि 1989, ये साबित हुआ ऐतिहासिक वर्ष। ऑस्ट्रेलियन ओपन में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए उन्होंने तत्कालीन नंबर एक खिलाड़ी मैट्स विलेंडर को सीधे सेटों में हराते हुए पूरे विश्व को चौंका दिया कि भाई साहब भारत के इस खिलाड़ी को कमजोर करके ना खा जाए, और इस जीत ने रमेश कृष्णन को इंटरनेशनल स्तर पर पहचान दिलाई। 1987 में डेविस कप में भारतीय टीम को फाइनल तक पहुंचाने में भी रमेश कृष्णन जी ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने डेविस कप में भारत की अगुवाई भी की और उन्होंने अपनी काबिलियत और शानदार खेल के दम पर भारत को टेनिस में नई पहचान दिलाई और टेनिस के खेल में अहम योगदान देने के लिए रमेश कृष्णन को साल 1998 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया, है ना। इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसे किस्से दर्ज रहते हैं जो हमें जोश से भर देते हैं, जो हमें ये एहसास कराते हैं, इंस्पायर करते हैं कि भाई कुछ भी कर सकता है एक इंसान, बस मन में जज्बा होना चाहिए। और हमारे मन में ये जज्बा है कि हम आपकी सुबह को खूबसूरत बनाएं कुछ खास बातों के जरिए, कुछ प्यारे प्यारे गीतों के जरिए, कुछ प्यारे एहसासों के जरिए, क्योंकि यहां बातें होती हैं दिल से दिल तक।

0: भैया चलने का नाम जिंदगी, चलना तो पड़ेगा, नहीं चलोगे तो धक्का देके बोलेंगे भाई साहब आगे चलो, हम पीछे खड़े हुए हैं और यही बात हमसे नूपुर कह रही है कि भाई साहब अब आगे बढ़ो, हमारा वक्त आ गया है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते बढ़ते भी हम आपको कुछ बता जाते हैं क्योंकि भाई 90 साल पूरे हो रहे हैं रेडियो के, तो रेडियो में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका आप लुत्फ उठा सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं, क्योंकि रेडियो के रंगमंच नाम से एक नाटक भी प्रस्तुत होने जा रहा है। आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में जो है श्रोताओं को भी आमंत्रित किया जा रहा है और इसका आप लुत्फ उठा सकते हैं इस रंगमंच का। और भारत रत्न रविशंकर स्टूडियो में 5 जून 2:03 आप आ सकते हैं यहाँ पर आकाशवाणी के कलाकारों के साथ। ये पल जीकर आप जाएंगे तो यकीनन आप और गहराई से हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो 5 जून का अगर आपको इंतज़ार है तो उस इंतज़ार को आप थोड़ा सा कायम रखें। और इसके साथ साथ 8 जून को भी एक प्रोग्राम होने जा रहा है जो अपने गौरवशाली 90 वर्ष पूरे करने जा रहा है रेडियो, उसके ही उपलक्ष्य में और इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के अवसर पर आकाशवाणी द्वारा 8 जून 2026 को शाम को 3:30 पर, भाई साहब 8 जून की बात कर रहे हैं, 5 की नहीं है ना, 8 वाला बता दिया आपको। तो यहाँ पर जो है सभी श्रोता जो भी सुनने वाले हैं उनको आमंत्रण है, आप यानी यहाँ आ सकते हैं रंग भवन सभागार में, संसद मार्ग नई दिल्ली में, और यहाँ पर इस कार्यक्रम का आप लुत्फ उठा सकते हैं। भारतीय लोक कलाओं की समृद्ध विरासत होगी यहाँ पर, सांस्कृतिक विविधता आपको देखने को मिलेगी और उनके प्रचार प्रकाश प्रचार प्रसार में जो अमूल्य योगदान है आकाशवाणी का, उसके जरिए आप जानेंगे देश के विविधता में क्या एकता है। और जब आप नाथ एट 90 सुनेंगे जिसमें शास्त्रीय संगीत का लुत्फ उठाएंगे, रंग पंजाबी सुनेंगे जिसमें आप पंजाबी लोक एवं सूफी संगीत का आनंद उठाएंगे, यूथ वाइब्स को भी महसूस करेंगे सुगम संगीत के जरिए, और मरुतरंग को भी आप महसूस करेंगे। इतने सारी चीज़ें अगर आपको एक जगह पर मिल जाए तो भाई साहब क्या है। लेकिन जो व्यक्ति हमारे साथ है उससे थोड़ा सा हम रूबरू हो लेते हैं क्योंकि उनका प्रोग्राम आगे आने वाला है, गीत का अब समय बहुत कम है। तो नूपुर आप यहाँ पर आ गई हैं तो क्या क्या लाने वाली हैं?
1: बहुत कुछ है और वो तो आप प्रोग्राम सुनिएगा ना, ऐसे आप तो चले मिल जाएगा बस।
0: नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं तो यहीं स्टूडियो में रहूँगा।
1: तो पूरी जानकारी जो भी साझा होंगी उसके साक्षी आप भी बनेंगे, आप भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तो सुनिएगा भी और बहुत ध्यान से सुनिएगा।
0: तो बातें होंगी ना दिल से दिल तक?
1: बिल्कुल, सारी बातें दिल से दिल तक पहुंचती हैं और उसके लिए बिल्कुल आप तैयार रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो के इसी सफर में। अभी आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर के दूसरे अंक में बस मैं कुछ ही देर में आपके साथ जुड़ूंगी।
0: तो चलिए भाई इंतजार करिए इस प्यारी मधुर सी आवाज का और हम दे देते हैं वो आपको बता देते हैं कहाँ पर हम हैं, है ना। मुझे थोड़ी देर के लिए इजाजत दीजिए, बाय बाय।

और आपने खुद से इश्क किया है, सोच में डूब गए ना? तो ज़रा सोचिएगा, और अगर नहीं की है शुरुआत खुद से मोहब्बत करने की, खुद का ध्यान रखने की, तो अभी भी देर नहीं हुई है, शुरुआत की जा सकती है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप? फिट एंड फाइन, हेल्दी एंड स्मार्ट। और ज़रूरी है आपका रहना स्मार्ट, क्योंकि आप ही तो हैं हमारे स्टार्स, और हमारे ये स्टार्स फिट एंड फाइन, हेल्दी एंड स्मार्ट रहे, बस यही दुआ रहती है। इसी दुआ के साथ मैं नूपुर कुलश्रेष्ठ स्वागत।

0: कर रही हूँ आप सभी का प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR में।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun.

अब ये मौसम का जादू ही तो है कि आपके चेहरे पर इतना सुकून है, इतना रिफ्रेश रिवाइव फील कर रहे हैं आप, और इतना अच्छा आपको लग रहा है कि आपका पूरा मूड ही बदल गया है। और वह कहते भी है ना कि जब मौसम बदलता है तो मूड अपने आप बदल जाता है। तो मूड अगर आपका बहुत अच्छा हो गया है तो फिर खुश रहिए। आज भी बारिश होने की संभावना है, बादल छाए रहेंगे, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो तेज़ ठंडी हवा भी आपके चेहरे को स्पर्श करेगी, और उसकी जो गति रहेगी बारिश के साथ साथ 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवा चलने की संभावना है। तो अभी मौसम सुहावना बना रहने वाला है, और बिल्कुल आपको बता देते हैं कि आज का जो अधिकतम तापमान है वो कितना रहेगा और न्यूनतम तापमान कितना रहेगा। तो 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा मैक्सिमम टेम्परेचर और 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जी हाँ, मिनिमम टेम्परेचर। और मौसम बदला है तो आप भी उस हिसाब से बिल्कुल बाहर निकले, है ना, अम्ब्रेला ज़रूर कैरी करें और ख़ुद को हर तरह के इन्फेक्शन से बचाए रखें और अपनी इम्यूनिटी हमेशा स्ट्रांग बनाए रखें। और जुड़े रहें हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो के सफ़र में। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR।

और बोलना तो आपसे बहुत कुछ है, और कब से बोल रहे हैं, बोलते ही जाते हैं कि योग कीजिए और योग कीजिए और निरोगी रहिए, है ना। क्योंकि योग जो है वो आपको माइंड बॉडी सोल हर लेवल पर आपको हिट एंड फिट रखता है, और आप फिट हैं तो आप हिट हैं, और अपनी सेहत का पूरा आप ख्याल रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर आप किसी भी एक्टिविटी में आप अपने आप को इंडल्ज करते हैं, किसी स्पोर्ट्स में आप जाते हैं, और फिर अगर हम बात कर रहे हैं योग की, तो अब आप समझ रहे हैं ये बन चुका है योगासन। और योगासन शब्द संस्कृत के युज और आसन शारीरिक मुद्राओं शब्दों से मिलकर बना है, और पहली बार, जी हाँ, पहली बार इसका आयोजन होने जा रहा है वर्ल्ड योगासन स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप। और इस चैम्पियनशिप में 70 से अधिक देशों के खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे, और साथ ही साथ इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, अहमदाबाद में किया जाएगा। और इस चैम्पियनशिप का आयोजन 4 से लेकर 8 जून तक गुजरात के अहमदाबाद के EKA एरिना में किया जाएगा। और जैसा कि आपसे कहा, आपको बताया कि 70 से अधिक देशों के जो देश हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, और 500 से ज़्यादा खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे। और अलग अलग बात करें, प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जैसे कि जूनियर लेवल पर यूथ और सीनियर वर्गों में पारंपरिक योगासन, आर्टिस्टिक योगासन, रिदमिक पेयर्स और टीम स्पर्धाओं सहित अलग अलग मेडल मुकाबले होंगे। और आप बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए ये कंपटीशन जो है, चैम्पियनशिप जो है, वो आप देख सकते हैं। और बच्चों को शुरू से स्कूल्स में योगा सिखाया जाता है, योग किया जाता है, वो उनको योग से आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आता है, आप बहुत ही सम हो जाते हैं, आप शांत हो जाते हैं, बहुत सारे थॉट्स जो हैं वो आपको परेशान करते हैं, तो वो आपको रोकने में मदद करता है। क्योंकि जब आप योग करते हैं तो आप अपने सिर्फ और सिर्फ आप आसन से ही नहीं जुड़े रहते, आप वहीं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आप अपनी श्वास जो है, जो सांसें आप ले रहे हैं, उसकी गति पर भी ध्यान देते हैं, और उसके साथ साथ आप ध्यान करना भी सीखते हैं, मेडिटेशन करना भी सीखते हैं। जब आप अपनी सांसों की सिर्फ गति पर भी ध्यान देते हैं तो वो भी एक तरीके का मेडिटेशन है। और अब आप इसको खेल के रूप में देखेंगे, योगासन खेल। और ये जो पहली बार ये जो चैम्पियनशिप है, इसका आयोजन किया जा रहा है, तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, खुश हूँ, और ये बहुत अच्छी बात है कि सबको इससे जुड़ना चाहिए, अपने जीवन में योग को अपनाना चाहिए। और योग जब आप करते हैं, और ये आपके खान पान से भी जुड़ा है, आपकी सेहत को पूरी तरह से स्वस्थ रखता है, आपको बीमारियों से दूर रखता है। अगर आप इसकी शुरुआत एक छोटी उम्र से ही कर देते हैं, और कहते हैं कि हम सब के अंदर योग है, मतलब जब हमने जन्म लिया, बर्थ लिया, तो तब से हम योग की जो आसन है वो मुद्राएं हम करते हैं। आपने देखा होगा एक जो बच्चा है वो कितना फ्लेक्सिबल होता है ना, और वो कैसे पैर के अंगूठे को मुंह में ले लेता है, और पूरी तरीके से वो अपनी बॉडी को कहीं भी घुमा लेता है। हम डरते हैं कि अरे ये ऐसे कैसे आप जा रहे हैं, पलट लेगा, कुछ भी करतब दिखा देगा, है ना। तो वो हमारे साथ है, हमें बर्थ के साथ ही वो मिला है, लेकिन जिस तरीके से हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमारी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल है, क्योंकि हम वो सब करना छोड़ देते हैं। तो अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपका जो हर अंग है वो स्वस्थ बना रहेगा। तो जुड़िए योग से और आनंद लीजिएगा वर्ल्ड योगासन स्पोर्ट चैम्पियनशिप 2026 का, जिसका आयोजन किया जाएगा 4 जून से लेकर 8 जून तक। आप जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो के सफर में। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, मैं हूँ आपके साथ नुपुर कुलश्रेष्ठ।

गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर सुन रहे हैं आप आकाशवाणी रेनबो के सफ़र में। और ये जो ज़िंदगी के सफ़र हैं उसमें कई बहुत सारे एग्ज़ाम्स आपको देने पड़ते हैं, और एक बहुत ही ख़ास एग्ज़ाम है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं और उससे जुड़ी जानकारी का इंतज़ार भी कर रहे थे कि कब डेट्स आएंगी, कब पता चलेगा कि एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और उससे जुड़ी और भी जानकारी आपको कैसे मिलेगी। तो अगर आप भी UGC नेट जून 2026 की परीक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उससे पहले अगर आपको था कि किस शहर में आपका सेंटर पड़ेगा और कहाँ जाके आपको एग्ज़ाम देना होगा और साथ ही एडमिट कार्ड कब आएगा, तो ये जो इंतज़ार है वो बिल्कुल ख़त्म होता है, क्योंकि सिटी इंटीमेशन जो स्लिप है वो 10 जून तक जारी कर दी जाएगी। तो आप वहाँ पर ये डिटेल ले सकते हैं कि किस शहर में आपका एग्ज़ाम है, और परीक्षा केंद्र का पूरा पता तो नहीं होगा अभी, लेकिन परीक्षा शहर की जानकारी मिलने से आप तैयारी कर सकते हैं, पहले से योजना बना सकते हैं और कि आपको कहाँ रहना है, कहाँ जाना है। और उसके साथ ही 15 जून तक एडमिट कार्ड जो है वो जारी कर दिया जाएगा, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आपका कहाँ सेंटर पड़ा है और रिपोर्टिंग टाइम क्या रहेगा, शिफ्ट कौन सी रहेगी। तो ये सारी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच जाएगी एडमिट कार्ड जारी होने के साथ ही। और साथ ही साथ परीक्षा कब होगी, तो 22 जून से लेकर 30 जून के बीच UGC नेट जून 2026 की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, ये आयोजित की जाएगी। और आप एग्ज़ाम्स के लिए पूरी तैयारी रखें अभी अपनी, और साथ ही साथ जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो बिल्कुल मत भूलिएगा अपना एडमिट कार्ड ले जाना और एक फ़ोटो पहचान पत्र भी ज़रूर आपको लेकर जाना है। तो आप बिल्कुल तैयारियों के में लगे रहिए, जुड़े रहिए, और साथ ही साथ ये जानकारी जो आपको मिली है कि सिटी स्लिप आपकी जारी हो जाएगी 10 जून तक और एडमिट कार्ड 15 जून, और साथ ही साथ परीक्षा की तारीख आपको पता है। और अगर आप और भी ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप आधिकारिक UGC नेट पोर्टल पर जा सकते हैं और वहाँ पर इससे जुड़ी और भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ इसी सफ़र में। मैं हूँ आपके साथ नुपुर कुलश्रेष्ठ, और ये साथ बिल्कुल आपके साथ बना हुआ है।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: जी हाँ, ये आकाशवाणी है और आकाशवाणी की गौरवशाली 90 वर्षों की ये जो जर्नी रही है, उस अवसर पर एक बहुत ही खास सुंदर सांस्कृतिक संध्या स्पेक्ट्रम आकाशवाणी एट 90 एक संगीतमय यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं, यहाँ पर शामिल हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। इस खास अवसर पर आकाशवाणी के जो कलाकार हैं वो शास्त्रीय संगीत, लोकगीत, लोक नृत्य और जो युवा संगीत है उसकी मनमोहक प्रस्तुतियां पेश की जाएंगी, प्रस्तुत की जाएंगी। तो आप भी बिल्कुल आ सकते हैं, यहाँ पहुँच सकते हैं, आमंत्रित है। डेट कौन सी है? 8 जून, दिन है सोमवार और समय रहेगा शाम के 4 बजे और स्थान है रंग भवन सभागार, आकाशवाणी संसद मार्ग, नई दिल्ली। तो आप यहाँ पर जरूर आए और आनंद लें इस संध्या का स्पेक्ट्रम आकाशवाणी एट 90 एक संगीतमय यात्रा।

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
4: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: आकाशवाणी के सफर में हैं आप मेरे साथ, मैं हूं आपके साथ नुपुर और आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। और जब मौसम बदला है तो क्यों ना फिर बाहर एक खूबसूरत सफ़र पर निकला जाए। वैसे तो आप घूमने फिरने के जो मौके हैं वो कम ही छोड़ते हैं, है ना। और जब भी मौका मिले एक सफ़र पर निकल जाना चाहिए, कोई साथ हो तो भी अच्छा और ना हो तो भी अच्छा, लेकिन अगर मन है, दिल करता है कि चलिए एक सफ़र पर निकलते हैं और कुछ नया एक्सपीरियंस कर कर आते हैं, तो फिर ज़रूर जाना चाहिए। अपने आप को रोकना नहीं चाहिए, जो कदम बढ़े हैं आगे की ओर इनको बस इनका साथ देना चाहिए आपको। और दिल्ली में ऐसा क्या है जो आप को छू सकता है, तो अगर कला प्रेमी हैं आप और कला का हर रूप हर विधा आपको बेहद भाती है और आप को अच्छे लगते हैं वो रंग जो दिखाते हैं आपके अलग अलग इमोशंस को, तो आप बिल्कुल पहुंच सकते हैं एक बहुत ही ख़ास एग्जीबिशन में जिसको आप देख सकते हैं कन्वेंशन सेंटर फॉय। और इसका आयोजन किया जाएगा 11 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक और एग्जीबिशन का नाम है इमोशंस ऑफ बॉम्बे। तो यहाँ जो कलाकार हैं स्वाति गोयल, उन्होंने पूरी कोशिश की है जो बॉम्बे की जो एक जो लाइफ है, जो हम कहते हैं कि बहुत ही भागती दौड़ती सी ज़िंदगी है, उसी के साथ एकाकीपन भी है, शांति भी है।

हर जो रंग है, हर जो चीज़ है उसको पकड़ने की कोशिश की है, वो रंग बिखेरने की कोशिश की है, हर इमोशन को पकड़ने की कोशिश की है, और इमोशंस को एक हर एक रंग के थ्रू बयां किया जा रहा है उसके ज़रिए। तो आप भी ज़रा पहुंचिए और देखिए इमोशंस ऑफ बॉम्बे में आपको क्या क्या रंग बिखरे दिखते हैं और आप कौन से रंग को समेटते हैं, अपने लिए चुनते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। और आप अगर जाना चाहते हैं तो इंडिया हैबिटेट सेंटर में इसका आयोजन किया जा रहा है। उसके साथ ही आप कलाबिंब, ये भी जो विजुअल आर्ट गैलरी लोधी रोड में इसका आयोजन किया जा रहा है और इंडिया हैबिटेट सेंटर में, आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं और कई आर्टिस्ट हैं उनकी पेंटिंग्स जो हैं आप उनके हुनर का आनंद ले सकते हैं। इस ग्रुप में आप पेंटिंग्स के साथ साथ स्कल्पचर एग्जीबिशन भी हैं और आप इसका आयोजन किया जा रहा है 11 बजे से लेकर 7 बजे तक, तो आप इसका बिल्कुल आनंद ले सकते हैं। तो यूं ही ये जो मौका है, अवसर है, इसको ना जाने दें और बाहर निकलें, और जो आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, उनको भी हौसला मिलता है तो ज़रूर पहुंचिए। और साथ ही साथ आकाशवाणी रेनबो के सफ़र में कुछ ही देर में आपके साथ जुड़ेंगे रविंद्र सिंह और आप सुनेंगे कार्यक्रम दिल के तराने, गाने नए पुराने, 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, और उसके बाद समय रहेगा मैचलेस म्यूजिक आर का। इसमें आपके साथ होंगी शालिका कपूर और उसके बाद बॉलीवुड की खबरों के साथ आपके साथ जुड़ जाएंगे बॉलीवुड ट्रेल्स में रंजन अरनेजा। तो प्रोग्राम्स बिल्कुल जारी रहेंगे आकाशवाणी रेनबो के इसी सफर में। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR में बस इतना ही, आप जुड़ रहिए हमारे साथ। मैं नुपुर कुलश्रेष्ठ अब आपसे लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम है दिल के तराने, गाने नए पुराने, क्योंकि गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर के बाद अब आ रहा है वो प्रोग्राम जहां पर संगम होता है नए और पुराने गीतों का और जिसका रहता है आपको इंतजार। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त रविंद्र, ये प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं। तो आपका इंतजार यहां पर खत्म होता है और एक प्यारा सनगमा पेश होता है।

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

0: तो भाई 1975 में ये मूवी आई थी, फिल्म जूली, और ये रोमांटिक ड्रामा जो था लोगों के दिलो दिमाग पर छा गया था। और इसका निर्देशन किया था K.S. सेतु माधवन ने, और इसकी जो पटकथा लिखी थी चक्रपाणी ने, और इसके जो मुख्य किरदार में थे जो लक्ष्मी थी, इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। और पहली इनकी हिंदी मूवी थी ये। इसमें विक्रम मकानदर, नादरा, रीता भादुड़ी, ओम प्रकाश, उत्पल दत्त और श्रीदेवी ने भी इसमें अभिनय किया है बाल कलाकार के रूप में, और ये उनकी पहली महत्वपूर्ण हिंदी भूमिका उन्होंने उसमें निभाई थी। और जहाँ तक फिल्म समीक्षकों की माने तो उन्होंने इसे काफ़ी हिट, सुपर डुपर हिट मूवी माना था। और ये मलयालम फिल्म चट्टकारी जो कि 1974 में आई थी उसकी रीमेक थी, जिसमें लक्ष्मी ने अपनी मलयालम फिल्म की शुरुआत की थी। उन्होंने इस फिल्म के एक और रीमेक तेलुगु फिल्म मिस जूली प्रेमा कथा 1975 में जो कि आई थी उसमें भी अभिनय किया था। तो सुपर डुपर हिट रही थी ये मूवी, और ये गीत जो है लोगों के दिलो दिमाग पर काफ़ी लंबे समय तक छाया रहा था।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त,
3: पता का चाय गजब का स्वाद।
4: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
5: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
4: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
5: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
4: और विनर्स को क्या मिलेगा?
5: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रूपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रूपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रूपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रूपए।
4: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
6: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

तो कार्यक्रम है दिल के तराने, गाने नए पुराने, और ये नए और पुराने गीतों का संगम लगातार जारी है। और अब वक्त है पुराने गीत का, तो आप कौन सा गीत लेकर आ रहे हैं, जरा लुत्फ उठाइए इस गीत का।

0: सुपर डुपर हिट अनामिका फिल्म से लिया गया ये गीत है। 1973 में ये फिल्म आई थी जिसको क्लासिक रोमांटिक थ्रिलर मूवी की तरह जाना जाता है और फिल्म बहुत लोकप्रिय रही थी। सस्पेंस और रोमांटिक ड्रामा रहा था ये। इसमें जो मुख्य किरदार थे वो संजीव कुमार देवेंद्र दत्त के रूप में और जया भादुड़ी अनामिका के रूप में। और इसका इस फिल्म का निर्देशन किया था रघुनाथ जलानी ने। ये जो कहानी है पूरी, एक लेखक संजीव कुमार को एक घायल महिला मिलती हैं, यानी जया भादुड़ी मिलती हैं, और जो अपनी याददाश्त खो चुकी होती हैं लेकिन खुद को उनकी पत्नी बताती हैं, और जैसे ही वो उसकी असली पहचान खोजने की कोशिश करता है यहीं से शुरू होता है ट्विस्ट। और इस फिल्म को जब आप देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। इस फिल्म का यही जो मशहूर गीत था जो बाहों में चले आए, जिसको हमने अभी बजाया है, जिसका आपने आनंद उठाया है, और ये गीत कभी भी बजाओ, लता जी की आवाज़ का तो खैर कहना ही क्या कि जब भी सुनो तो बस लगता है कि सुनते ही रहो। तो 2008 में एक और साइकोलॉजिकल थ्रिलर नाम से इसी पर फिल्म बनी थी, और ये जो अनामिका 2008 में आई थी ये फिल्म हॉलीवुड उपन्यास रेबिका पर आधारित थी। यानी अलग अलग मूवी है, लेकिन हमने जिस फिल्म का गीत आपको सुनाया वो है 1973 में आई अनामिका, जिसका कोई जोड़ नहीं है। तो फिलहाल प्रोग्राम चल रहा है,
1: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
0: थोड़ी थोड़ी देर में आपको याद दिलाना पड़ता है कि भाई साहब आप कहाँ पर हैं। तो कार्यक्रम चल रहा है दिल के तराने गाने नए पुराने, और मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त रविंद्र सिंह। तो चलिए लौटे वापस अपने दौर में। और कहते हैं वक्त कब बीत जाता है, कब वर्तमान भविष्य की तरफ इशारा करता है। अब आने वाला कल कैसा होगा नहीं पता, लेकिन इसको तो जीते हैं।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने FM रेनबो 102.6 पर।

तो भाई रब ने जोड़ी बना दी और इसीलिए दिल के तराने गाने ने पुराने आपके दिल दिमाग पर जा रहता है। और हमारी कोशिश भी रहती है कि हमारी बातें तो दिल से दिल तक होनी चाहिए, साथ ही गानों के जो बोल हैं वो भी आपके दिल से जुड़े होने चाहिए। तो फिल्म थी सुहाग 1979 में जो कि आई थी, और इसका ये जो गीत है ना, तेरी रब ने बना दी जोड़ी, ज़बरदस्त हिट इसलिए रहा था क्योंकि शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, रेखा और परवीन बॉबी की जोड़ी जो है देखते ही बनती थी। और किस जिस तरह के किरदार बने पाते निभाते हैं अमिताभ को देखने के लिए और इन जोड़ियों को देखने के लिए, तो फिर क्या ही कहने कि सिनेमा घरों में लाइन लग जाती थी। और मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा भोसले ने इस गीत को अपनी आवाज़ से सजाया है, और इस में संगीत जो दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है, और इसके गीतकार आनंद बख्शी साहब हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आज भी जब ये गीत सुनते हैं तो बस कहने ही क्या, पुरानी यादों में चले जाते हैं, और इसीलिए ये प्रोग्राम है ज़बरदस्त सुपर डुपर हिट भी रहता है। तो फिलहाल प्रोग्राम चल रहा है दिल के तराने गाने नए पुराने, और इसके साथ ही अब वापस लौटते हैं अपने दौर में, है ना, चलते हैं। कौन सा गीत सुनाऊं? विशाल डडलानी की आवाज़ में एक जुनून।

तो उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर आप वेस्टर्न म्यूज़िक के शौकीन हैं तो मैं एशलेस म्यूज़िक कवर लेकर आ रही हैं शालू आपके लिए। तो बस थोड़ा सा इंतज़ार, फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। एक और प्यारे से नगमे के साथ आपको यहाँ पर छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि यहाँ पर चलता रहेगा गीतों का सफ़र।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और समुदायों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग शारीरिक फिटनेस से कहीं अधिक स्वस्थ रहने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
1: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।

भारतीय रिजर्व बैंक अब से कुछ देर में द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा मुंबई में ये घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। अप्रैल में रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के लिए पश्चिमी देशों के प्रयास

उन्होंने कहा कि रूस भारत को विश्वसनीय साझेदार मानता है। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉ कश्यप के निधन पर शोक व्यक्त किया है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से पर्यावरण संरक्षण, सतत जीवन शैली और जैव विविधता की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करने का आग्रह किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक संस्कृति का उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रकृति का संरक्षण न केवल एक जिम्मेदारी है बल्कि देश की संस्कृति और परंपराओं का अभिन्न अंग भी है। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच जापान के काकामिगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दो?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
4: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
3: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
4: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
3: और विनर्स को क्या मिलेगा?
4: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
3: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
6: The MMH, the matchless music are the time. Exactly 30 minutes past 10, so we do have 30 odd minutes to be together on the airwaves of 102.6 Akashvani Rainbow. Also 30 odd minutes for you to make use of those 30 odd minutes and send in your messages to us on 9868107070, which you are doing ever so conscientiously, ever so dutifully and ever so lovingly. Dolly writes in, she says, All right. This is what she says. She says, good morning, Shalu. How are you? Absolutely delighted to be with you, Dolly. And he says, Neele Gagan Ke Tale has been beautifully depicted in this song. Nature has been beautifully depicted. Yes, indeed. And that's why it was chosen. Stay tuned for other songs. You might see a little link there, Dolly. And then this is this is Sagar, right? He says, good morning, Sagar. And he's writing in from Pauri Garhwal, Uttarakhand. Oh, the mountains and the hills, you lucky person. You say that the song Stand By Me reminded you of a particular Hindi song. Well, it happens, doesn't it? Songs and music travel and so do the inspirations. Thank you for writing in. My dear friend writes in, this is Indu Dilliwali and has been waiting because she was one of the first to write in the messages and I dug it up and here she is. She's always waving to me through her emoticons. I'm waving right back to you, dear Indu. And you say it's always a pleasure to listen to the songs and the playlist is also something that you're enjoying. Thank you so, so much. Wonderful to know this. Rajkumar has written in again and he's enjoying the show too. And he does agree that it indeed is a wonderful world. Ditto, Rajkumar. Ditto. And just to underline that, here's this track.

0: ठंडी स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: है बबई। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
5: Continuing with the message break here, some messages have come in. Dolly's written in to say that yes, she is enjoying the show. Thank you so much. Somebody's written in, oh, this is Shyam Sundar, writes in from Goa, does that ever so often. Thank you so much. And then we have Subhijit, who writes in from the city of Joy, Kolkata, and says he's listening, or should I say, yeah, he's listening to the program and he loves the medley of Hindi and English tracks, which is lovely. And this is the first time I'm writing into this morning show. Why, oh why, Subhijit, why have you waited this long? 9868107070.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। चालू वित्त वर्ष के लिए दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से अल्पकालिक उधार दर या रेपो दर को 5.25% पर तटस्थ बनाए रखने का निर्णय लिया है।
1: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments,

कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलू ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काकामिगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी और प्रोग्राम शुरू हो गया है बॉलीवुड ट्रेल्स। तो फिर आज फ्राइडे मॉर्निंग में क्या है आपके प्लान्स? चलिए, अगर नहीं बनाया तो हम बताते हैं, वीकेंड की करें शुरुआत। कोई अच्छी फिल्म देखना चाहते हैं तो वो भी बताएंगे जनाब। कृति सनन आजकल न्यूज में है, क्यों बताऊंगा इन जस्ट अ लिटिल व्हाइल। ऋतिक रोशन, और आमिर क्या कर रहे हैं आजकल अपनी लाइफ में, दिस एंड लॉट्स मोर। जुड़े रहें आकाशवाणी रेनबो के संग, सुनते रहें बॉलीवुड ट्रेल्स।

यू कह रहे हो शेक इट लाइक शम्मी। जी हाँ, यह बात हो रही है शम्मी कपूर साहब की। क्या डांस करती थी, क्या गजब का उन्होंने एक अपना पूरा माहौल तैयार किया था। जब वो एक्चुअली वो भी इंस्पायर्ड थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, किसी बाहर विदेशी यू नो सिंगर से। आई एम फॉरगेटिंग द नेम, आपको याद आए तो बता दीजिएगा, नंबर हम थोड़ी देर में बताएंगे। वैसे अभी हम बात करने जा रहे हैं कृति सैनन की, और कृति इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि उनकी आने वाली फिल्म कॉकटेल 2 के लिए वो बहुत ज़बरदस्त तैयारी कर रही हैं। एंड यू नो हु इज़ द लकी गाय इन कृति'स लाइफ, मैं मतलब लव लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ, वो व्यक्ति जिससे सुबह 6:30 बजे जाके वो मिलती हैं, वो कोई और नहीं है, उनके जिम ट्रेनर हैं। जी, इज़ अ लकी गाय करण सानी। और मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि देखिए फिटनेस जो होती है ना स्टार्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है, वो क्या खाते हैं, उनके लिए एक डाइटिशियन होता है। और कृति को वैसे मैंने काफ़ी वैसे देखा है अपने प्रोग्राम्स में रिसर्च के दौरान, एंड आई हैव सीन कि वो पूरे एक एंटोराज के साथ चलती हैं, उनका हेयर, मेकअप, डिज़ाइनर, ड्रेस वाला, इन ऑल दिस पीपल दे आर सराउंडेड, ये इतने बड़े जो सितारे होते हैं इनके आस पास, ये सितारे नहीं गैलेक्सी होते हैं, हाँ हाँ, और इनके आसपास लोग होते हैं, और बहुत बहुत मेहनत लगती है कि भाई सुबह 6:30 बजे जाके अपनी फिटनेस पे काम करना। और स्पेशली ये बात कही गई थी इस मूवी के लिए कि इन्हें लीन और फिट लुक चाहिए, जो कृति ऑलरेडी हैं, लेकिन जीरो फिगर नहीं चाहिए, जो मशहूर की थी इंडिया में करीना कपूर ने, वो एक दौर था। वैसे हम ये कहेंगे कि आपको हेल्दी रहना चाहिए और इन स्टार्स को इतना भी फॉलो ना करें, हाँ तो ले लो वो नेक्स्ट जो ब्रेड आप देख रहे हैं, मक्खन लगा टोस्ट है, वो खा लीजिए। आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स, मैं हूं आपके साथ रंजन। फ्राइडे मॉर्निंग, आकाशवाणी रेनबो के संग 90 सालों का सफर, स्वर्णिम।

जी अगर आप डांस करते हैं, जाहिर सी बात है इट्स अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। तो लाइफ की जो भी उलझने हैं, जो बोरियत है, उसको दूर कीजिए और थोड़ा थिरक लीजिए, बिकॉज इट्स गुड फॉर योर फिटनेस। और फिटनेस की जब बात आती है तो हमारे बॉलीवुड के अंदर ऋतिक रोशन का नाम इज ऑन वन ऑफ द टॉप मोस्ट एक्टर्स। लेकिन ऋतिक थोड़े से नाराज हैं आजकल के जिस तरह के रोल्स उनको ऑफर हो रहे हैं। यानी सेइंग दैट मुझे गुड बॉय इमेज को तोड़ के कुछ खतरनाक सा करना है। वैसे ही उनकी लास्ट जो मूवी थी उतना अच्छा बॉक्स ऑफिस पर नहीं परफॉर्म कर पाई थी। और वैसे ही इज रियली प्रिपेयरिंग फॉर क्रिश 4। क्रिश 4 में ना सिर्फ वो आपको एक्ट करते दिखाई देंगे बल्कि उसे डायरेक्ट भी करेंगे। खैर वो तो फ्यूचर में है, वहां की बात तो हम बाद में करेंगे। लेकिन आप सोचिए, जब आप एक हीरो की इमेज अपने दिमाग में, आंख बंद कर लीजिए अगर गाड़ी नहीं चला रहे हैं तो, और सोचिए एक गुड बॉय, यू नो मैरिज मटेरियल, एक हीरो लुकिंग जब स्टार सोचते हैं तो कोई वो चुनिंदा 3-4-5 चेहरे आपके दिमाग में आएंगे आई एम श्योर। जैसे यू नो सलमान खान, जिन्होंने शादी नहीं की है, आमिर खान जो रुकी नहीं रहे। बताएंगे आज आमिर की बहुत सारी बातें होंगी। खैर और ऋतिक रोशन, ही इज दैट यू नो क्विंटेंसेंशियल ग्रीक गॉड लुक, पता नहीं क्या क्या बातें उनके बारे में कही जाती हैं। तो वो विलन टाइप रोल क्यों करना चाहते हैं? ही वॉन्ट्स टू एक्चुअली चैलेंज हिज एक्टिंग एबिलिटीज। हमें पता है आप बड़ा अच्छा एक्ट कर सकते हैं ऋतिक। आई विश यू ऑल द बेस्ट। भगवान करे भाई तुहानू मिले सारे भैड़े भैड़े रोल, मतलब ऑन स्क्रीन आप विलन भी कर सकते हैं। आपने किया भी है पीछे एक मूवी के अंदर जो आपको पसंद है। खैर लाइफ जो है स्पाइसी वैरायटी है, लाइफ का द वैरायटी ऑफ लाइफ जो है ना, द स्पाइस ऑफ लाइफ जो है वो वैरायटी है, ये कहना चाह रहा हूं। तो अगर आपको वैसे रोल्स मिलेंगे हम उसमें आपको जरूर देखना चाहेंगे। लेकिन इस सवाल का जवाब दीजिए जो इस गाने के बाद मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। हो सकता है कि इस सवाल का जवाब देके आप बन जाएं बॉलीवुड सरताज। तो जुड़े रहें हमारे साथ, सुनते रहें बॉलीवुड ट्रेल्स आकाशवाणी रेनबो पर।

अगर आपने इस गाने की शूटिंग देखी है, यानी अगर आपने गाना देखा है, सिर्फ सुना नहीं है, तो ये दिल्ली में ही शूट हुआ है। लोधी गार्डन के इसमें सीन्स हैं। कभी आप वहाँ जाएं तो गाना वहाँ चला के देखें और लुत्फ लें वहाँ के नज़ारों का, एंड यू लाइक इट इवन मोर। मैं बात कर रहा था पीछे, मैं आपको बताने वाला था कि शम्मी कपूर साहब जो हैं वो एल्विस प्रेस्ली की तरह डांस करते थे। वो एक दौर था, वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। वो समय कुछ और था, ये समय कुछ और है। हमारा आज का सवाल है बॉलीवुड सरताज का कि कृति सेनन को तो आप जानते हैं, जिनकी अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की है। उनकी एक फिल्म आई थी 2024 में, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। इस फिल्म के अंदर उन्होंने जो कैरेक्टर प्ले किया था उसका नाम क्या, हमें बता दीजिए। 9868107070 पर आपने व्हाट्सएप करना है, 9868107070। और हो सकता है कि आज आप बन जाएं बॉलीवुड सरताज। बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम हम किसी को बनाएंगे बॉलीवुड सरताज। तो फिर जुड़े रहें हमारे साथ और सुनते रहें आकाशवाणी का बॉलीवुड ट्रेल्स। 90 वर्षों का ये सफर निरंतर जारी है। आपका प्यार, आपके मैसेजेस इस बात की गवाही देते हैं। है जवानी तो इश्क होना है फिल्म जो आज रिलीज हुई है। ये गाना जो है वैसे बीवी नंबर 1 से है। इसके ऊपर क्या कंट्रोवर्सी है वो भी बताऊंगा, बट आफ्टर अ लिल वाइल।

0: देखिए, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ आज वो ये है कि जब कोई एक प्रोड्यूसर एक फिल्म बनाता है तो उस फिल्म के म्यूजिकल राइट्स, लिरिक्स या जो भी उसके अंदर कंटेंट है, स्टोरी से लेके जो भी चीज़ है, वो सब प्रोड्यूसर की होती है और बाकायदा जो आर्टिस्ट होते हैं उनको पे कर दिया जाता है। मैं ये क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ एक कंट्रोवर्सी छिड़ी है इस मूवी के ऊपर जो आज रिलीज़ हुई है, जवानी तो इश्क होना है। इसके अंदर ये गाना इस्तेमाल किया गया, ये टाइटल को लिया गया और कौन है जो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं ये सब बताऊँगा बट आफ्टर लिल वाइल। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लौट के आते हैं। आप यूँ ही जुड़े रहें आकाशवाणी के संग और सुनते रहें बॉलीवुड ट्रेल्स।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
5: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
6: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
5: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
6: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
7: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

ये गाना आपने सुना फ्रॉम द मूवी वेलकम, ऊंचा लंबा कद। इसमें आपने देखा होगा कि अक्षय कुमार एंड कैटरीना कैफ बोथ आर डांसिंग टू दिस नंबर, एंड क्या गजब का ये नंबर रहा है। और इसी को रिक्रिएट किया है वेलकम टू द जंगल में, अब जो आएगी फिल्म, और इसमें भी अक्षय ही हैं, लेकिन कैटरीना को नया लेके उन्होंने दिशा पटानी को लिया है। और ये गाना जो है, मैं अगर दोनों कंपेयर करूँ, गाना रिलीज हो चुका है, अगर आप चाहें तो इसे आप सुन और देख सकते हैं। यार वो बात नहीं है जो ओरिजिनल में है, यू नो, तो मतलब, और एंड में अक्षय कह भी रहे हैं सॉन्ग के अंदर ही कि दैट वी मिस यू कैटरीना, सीरियसली वी ऑल मिस दैट नंबर। और जाहिर सी बात है, आप क्यों बार बार एक गाने को बजाना चाहते हैं। और ऐसी कुछ कंट्रोवर्सी की बात मैं करने जा रहा हूँ कि वाशु बगनानी की फिल्म से लिए गए दो गाने हैं जो आज रिलीज हो रही फिल्म है जवानी तो इश्क होना है में यूज किए गए हैं, जिसको फिल्म की रिलीज को रोकने के लिए वाशु कोर्ट भी गए। उन्होंने 400 करोड़ का, यू नो, इस पे दावा ठोका कि भाई मेरे गाने मेरी इजाज़त के बिना डेविड कैसे यूज़ कर सकते हैं। और उन्होंने कुछ और टिप्स के ऊपर भी बाकायदा, ये सब कोर्ट में चल रहा है, लेकिन फिलहाल उनको ये रिलीफ नहीं मिला। आने वाले दिनों में हो सकता है, बिकॉज फिल्म रिलीज हो गई है, दैट्स फॉर श्योर, और आने वाले दिनों में ये बात चलेगी और निरंतर रहेगी कि भाई जब प्रोड्यूसर सबको पैसे दे देता है, और जब सिंगर भी गाने की रॉयल्टी तक मांगता है, और जब यू नो, तो आप बिना इजाजत के किसी का गाना कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। खैर, एक सवाल और है, टू बी और नॉट टू बी।

शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये आम जिंदगी के आम लोग नहीं सोचते हैं, ये बॉलीवुड के खास लोग भी सोचते हैं। और अब कौन इस बारे में सोच रहा है बताएंगे इन जस्ट अ लिटिल व्हाइल। सुनते रहे बॉलीवुड ट्रेल्स, आकाशवाणी रेनबो के संग 90 सालों का स्वर्णिम

जी हाँ, कुछ ऐसा ही कह रहे हैं आमिर खान। 25 साल की जान पहचान और अब जाके उन्हें पता चला कि वो लड़की है यहाँ, एंड इट्स नन अदर देन गौरी। वेल, देखिए, दो सिमिलैरिटी तो है हमारे सुपरस्टार्स में। शाहरुख खान साहब की वाइफ का नाम गौरी और अब आमिर साहब की होने वाली दुल्हनिया का नाम भी होगा गौरी, गौरी स्प्रेट। एंड 61 साल की उम्र में तीसरी शादी करने जा रहे हैं।

हैं आमिर खान, एंड वी विश हिम ऑल द बेस्ट। तो आप भी, जो डेट है वो कंफर्म हो गई है, 5 जुलाई की तारीख को नोट कर लीजिए। उस दिन आप अच्छे से पकवान बनाइए, और अगर आप भी मेरी तरह इनवाइटेड हो गए तो हो सकता है मैं आपको ले चलूं आमिर साहब की शादी में। नहीं, ऐसा सोचने में क्या जाता है,

वैसे कितना अच्छा लगेगा ना, आमिर खान की भारत में सलमान नाच रहे हैं, शाहरुख नाच रहे हैं, मैं नाच रहा हूँ, आप सब नाच रहे हैं, सब माहौल अच्छा हो रहा है, लेकिन इसी बहाने सलमान भी लगे हाथ। नहीं मतलब अच्छा सोचने में क्या जाता है। खैर, हमारा सवाल फिर से पूछने का वक्त आ गया है। मैं आप मुझे बातों में मत बहकाइए और अपने साथ मत ले जाइए। हमारा जो सवाल है बॉलीवुड सरताज का, एक बार फिर से बता दूं, कृति सेनन की फिल्म आई थी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, और उसके अंदर उन्होंने जो कैरेक्टर प्ले किया है उसका आपने नाम बताना है। इट्स वेरी सिंपल, बहुत से लोगों ने हमें सही आंसर दिया, लेकिन देखते हैं आज कौन बनता है हमारा बॉलीवुड सरताज। नंबर रहेगा व्हाट्सएप करने के लिए 9868107070, दैट्स 9868107070। आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स, मैं हूं आपके साथ रंजन, आकाशवाणी रेनबो पर। 90 सालों का ये स्वर्णिम सफर जारी है।

0: जी हाँ, टाइम लगा इकाई को, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं है। एक बार आखिरी बार पूछने जा रहे हैं बॉलीवुड सरताज के लिए, कृति सनन का जो कैरेक्टर था तेरी बातों में ऐसा उलझे जिया में, उस कैरेक्टर का नाम बताइए जो कृति ने प्ले किया था इस मूवी में, और आप बन सकते हैं आज बॉलीवुड सरताज। 9868107070 पर कीजिए हमें व्हाट्सएप और जुड़ जाइए आकाशवाणी के संग। छोटा सा ब्रेक, लौट के आते हैं।
1: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
2: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
1: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
2: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
2: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रूपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रूपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रूपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रूपए।
1: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.delhitalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग।

0: आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स और बॉलीवुड सरताज बनाने का समय आ गया है। लेट्स सी हमारे साथ कौन जुड़े हैं इस समय। हेलो
1: हेलो
0: जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अपना नाम बताइए।
1: गुड मॉर्निंग, नमस्ते, मेरा नाम अर्चना राजपाल है जी।
0: अर्चना जी, आप क्या करती हैं?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: आप होम मेकर हैं, ये तो बहुत बहुत हैवी ड्यूटी है, कैसे कर पाती हैं आप ये?
1: FM रेनबो के सहारे, रेडियो के सहारे।
0: अच्छा, मतलब इसमें भी आपने हमें जोड़ दिया।
1: बिल्कुल, मैं वापस से ही अपने पैशन के साथ जुड़ी हूँ और मेरी आउटपुट बड़ी अच्छी हो गई है काम की। पहले मैं टीवी से स्टिक हो गई थी, अब मैं बड़ी खुश हूँ कि मैं वापस रेडियो पे आई हूँ।
0: हाँ हाँ हाँ, मतलब रेडियो जो है, देखिए हम 90 साल मनाने जा रहे हैं 8 तारीख को, 8 जून को, और हमारे यहाँ आकाशवाणी रंग भवन के अंदर सभी लोग इनवाइटेड भी हैं। दोपहर 4 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा और उससे पहले आना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो आप बीच में टीवी की तरफ ड्रिफ्ट हो गई थी, वापस रेडियो पे आ गई, क्योंकि इसमें आज़ादी होती है ना काम करने की साथ में। मतलब आप सिर्फ, आपके कान रहते हैं इधर, आप अपने बाकी काम साथ में कर सकते हैं, खाना बनाना। तो खाना आप बनाते हैं, आपके पति बनाते हैं?
1: बिल्कुल जी, मैं बनाती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ।
0: और बर्तन बर्तन बर्तन और सफाई तो पति करते
1: हैं, मेन है।
0: तो वो क्या करते हैं फिर?
1: वो काम करते हैं।
0: मैं मजाक कर रहा था, मैं जानना चाह रहा था, बट आपने बिल्कुल ये राज रखा है, अच्छी बात है। चल ये बताइए, हमारे सवाल का जवाब दीजिए। हमारा जो सवाल है वो ये है कि कृति सेनन ने तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, उस फिल्म में जो कैरेक्टर का नाम है वो क्या है जो प्ले किया था?
1: सिफरा।
0: सिफरा, सिफरा,
1: सिफरा।
0: इसका फुल फॉर्म पता है?
1: SIFRA।
0: अच्छा, नहीं, फुल फॉर्म मैं बताता हूँ, सुपर इंटेलिजेंट फीमेल रोबोट ऑटोमेशन।
1: रोबोट ऑटोमेशन।
0: हाँ हाँ, आपने फिल्म देखी है बाय द वे?
1: थोड़ी सी बस ऐसी।
0: हाँ कोई बात नहीं, मतलब चलते फिरते थोड़ी सी देख ली। ये हकीकत है आज के जीवन की, है ना, AI।

0: इंटेलिजेंस और रोबोट्स और मशीन युग के अंदर जो ये फिल्म में दिखाया गया, ये आने वाली समय के अंदर वास्तविक हो सकती है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: आज आप बनती हैं बॉलीवुड सरताज हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू सो मच
0: और बहुत बहुत बहुत शुभकामनाएं, बाय।
1: थैंक यू जी, बाय बाय।
0: आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स, मैं हूं आपके साथ रंजन। अगला कार्यक्रम रहेगा प्ले इट कूल, और इसको लेके आई हैं शालू जो अभी सीधा स्टूडियो में हाजिर हो रही हैं। लेकिन 12:05 से फिलहाल आप सुनिए वेक अप सिड। एक खबर है रणबीर कपूर की, बताएंगे आफ्टर दिस सॉन्ग, जुड़े रहें यूं ही आकाशवाणी के संग।

जी हाँ, वेक अप सिड, ये फिल्म आई थी रणबीर कपूर की, और इन्हीं की एक फिल्म आई थी जो इम्तियाज अली ने डायरेक्ट की थी, रॉक स्टार। और इम्तियाज ने अभी एक इंटरव्यू में बात बताई कि एआर रहमान ने कहा कि क्या ना अच्छा लगे अगर ये ऐसा हो कि रणबीर कपूर रॉक स्टार के सारे गाने गाएं। तो इम्तियाज ने रहमान साहब से कहा कि भाई इस बात को आप भूल ही जाएं, ही कैन प्रोजेक्ट, ही कैन पोर्ट्रे अ रॉक स्टार, लेकिन वो गा नहीं पाएंगे। तो ये सुनने के बाद रणबीर भी थोड़े पसोपेश में आ गए थे, एंड ही वाज रियली कंफ्यूज कि मैं गा सकता हूँ। खैर, आज फिल्में जो रिलीज हो रही हैं, कल एक फिल्म रिलीज हुई है जो पेडी करके है उसका नाम, और आज दो फिल्में रिलीज हो रही हैं, आप चाहें तो वो देखने जा सकते हैं। फिलहाल रंजन को यहाँ दीजिए इजाजत, आपसे मिलूंगा 1:05 पे। टिल दैट टाइम वी मीट अगेन, टेक केयर, बाय बाय, सुनते रहें आकाशवाणी रेनबो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत रुख तटस्थ रखा गया है।
1: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
0: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री लगभग 2,970 करोड़ रुपए के विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
2: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4-लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 2400 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 जून को नागरिक अलंकरण समारोह में इस वर्ष के 65% व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इससे पहले पिछले महीने श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 66% व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। इस वर्ष राष्ट्रपति ने 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों सहित कुल 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज जम्मू में एक नए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना के औपचारिक घोषणा करेंगे। ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में मौसम पूर्वानुमान और आपदा तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बेंगलुरु विकास मंत्रालय देने का

अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। घरेलू शेयर बाजार में संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज वृद्धि का रुख रहा। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 121 अंक के उछाल के साथ 74,461 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्ते, गुड आफ्टरनून लवली लिसनर्स। यस, इट्स एन आफ्टरनून, इट्स 5 मिनट्स पास्ट 12 इनटू द नून, सो इट्स डेफिनेटली आफ्टरनून एंड इट्स अ गुड आफ्टरनून बिकॉज हियर वी आर ऑल ऑफ अस ट्यून्ड इन टू द एयरवेव्स ऑफ 102.6 आकाशवाणी रेनबो together to tell ourselves and to everyone who cares to listen that we don't really care. It's music time and we'll just play it cool. You and us and Akashvani Rainbow. Shalu says, thank you so much for joining. Welcome, welcome, welcome.

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
4: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
3: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
4: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
3: और विनर्स को क्या मिलेगा?
4: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
3: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
5: www.delhitalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
7: Back to the show that's all about playing it cool on 102.6 Akashwani Rainbow. Let me now kind of try and change things. Let me look at the other console where your messages are. Well, your messages have come in. A lot of them are repeats because you're saying that you're liking the show and you're taking it forward. Oh, you're relaxing. Thank you so much. Your appreciation is always appreciated. And it's always nice to be nice to each other. Exactly what the next track tells us.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
1: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
0: बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। उद्योग संगठन एसोचैम ने RBI के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक विशाल जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे।
2: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4-लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 24 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयर ट्रंक ने भारत में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ये देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुरा के अगरतला में BSF के जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की हर सीमा की भौगोलिक और सुरक्षात्मक चुनौतियां अलग अलग हैं, इसलिए सभी सीमाओं पर एक जैसी रणनीति के बजाय स्मार्ट मॉडल अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पर्यावरण को लेकर कई कदम उठाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अनामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अनामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बेंगलुरु विकास मंत्रालय देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें जल संसाधन मंत्रालय दिया गया। उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इससे झलकती है। नागालैंड सरकार ने राज्य में तंबाकू या निकोटीन युक्त सभी खाद्य उत्पादों के निर्माण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध पान मसाला, सुगंधित और स्वादयुक्त चबाने योग्य उत्पादों के साथ साथ तंबाकू या

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: इंडियन कैंसर सोसाइटी कहने आए हैं ये बात, कैंसर को हराना है हमारे साथ, कैसे इससे लड़ना है सुनो हमारी बात, क्योंकि कैंसर नहीं है लाइलाज, दुख में सुख में हम हैं आपके साथ, इंडियन कैंसर सोसाइटी।
2: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल इंडिया रेडियो के इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं इंडियन कैंसर सोसाइटी की तरफ से आपकी होस्ट कृति मेहता। आज हम बात करेंगे कैंसर के बारे में, एक बीमारी जो हर साल हजारों लोगों को प्रभावित करती है, लेकिन जिसे समझकर, पहचानकर और समय पर इलाज कराकर हम बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप कंफर्टेबल हो जाइए, नोटबुक और पेन रेडी रखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने के लिए। और हाँ, ये इंटरैक्टिव है, सोचिए जैसे हम घर में बैठकर बात कर रहे हैं। अगर कोई सवाल हो तो बाद में इंडियन कैंसर सोसाइटी के हेल्पलाइन नंबर पर जरूर कॉल कीजिए। नंबर है 9910516562। दोबारा नोट करिए 9910516562। आज के टॉक में हम समझेंगे कि कैंसर क्या है, ज्यादातर किन कारणों से होता है, क्या जनरल सिम्टम्स हैं और किन फैक्टर्स का रोल रहता है कैंसर कॉज करने में। पहले समझते हैं कैंसर क्या होता है और उसके जनरल सिम्टम्स क्या हैं। तो हमारे बॉडी में कई मिलियन सेल्स होते हैं जो बढ़ते हैं और मरते हैं। कैंसर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे बॉडी के सेल्स जो नॉर्मल तौर पर कंट्रोल्ड तरीके से बढ़ते और मरते हैं, कंट्रोल से बाहर बढ़ने लगते हैं। ये एबनॉर्मल सेल्स ट्यूमर बना सकते हैं या फिर ब्लड और लिम्फ सिस्टम के थ्रू बॉडी के दूसरे हिस्सों में स्प्रेड हो सकते हैं, जिसे मेटास्टेसिस कहते हैं। सिंपल इंग्लिश में, जैसे गार्डन में घास फूस अनवांटेड तरीके से बढ़ जाती है और दूसरे प्लांट्स को नुकसान पहुंचाती है, वैसे ही कैंसर सेल्स बॉडी के नॉर्मल सेल्स को डैमेज करते हैं। डीएनए या जेनेटिक सिस्टम में खराबी के कारण ट्यूमर हो सकता है। ट्यूमर बेसिकली बॉडी के सेल्स का एबनॉर्मल ग्रोथ है, एक्स्ट्रा मास या गांठ। ट्यूमर्स दो तरह के होते हैं, बिनाइन या मलाइनेंट। बिनाइन ट्यूमर कैंसरस नहीं होते, ये बहुत स्लोली ग्रो करते हैं और एक ही जगह पर रहते हैं, ये दूसरे टिश्यूज या ऑर्गन्स में स्प्रेड नहीं होते। इनके आसपास एक स्मूथ बॉर्डर या कैप्सूल होता है। ये जनरली जानलेवा नहीं होते, लेकिन ये किसी जरूरी ऑर्गन जैसे ब्रेन पर प्रेशर डालें तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर चर्बी की गांठ या फाइब्रॉइड्स। अब दूसरा है मलाइनेंट ट्यूमर, ये कैंसर होता है। ये सेल्स अनकंट्रोलेबली मल्टीप्लाई होते हैं और बहुत तेजी से बढ़ते हैं और आसपास के हेल्थी टिश्यूज में घुस जाते हैं। ये ब्लड या लिम्फ सिस्टम के जरिए बॉडी के दूसरे अंगों में फैल सकते हैं। इस प्रोसेस को ही मेटास्टेसिस कहते हैं। ये काफी अग्रेसिव होते हैं और अगर ट्रीटमेंट ना मिले तो जान के लिए खतरा बन सकते हैं। कुछ जनरल सिम्टम्स हैं जो आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, अब इनकी बात करते हैं। इसे आप कॉशन वर्ड से याद रख सकते हैं। कॉशन, सी से चेंज इन बाउल और ब्लैडर हैबिट्स, मतलब कब्ज या लूज मोशन जो ठीक ना हो। ए से अ सोर दैट डज नॉट हील, मतलब छाला जो 3 हफ्ते से ज्यादा ना भरे।

0: यू से अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज, इसे ऐसे समझिए। हमारे बॉडी में होल्स या सुराख होते हैं, जैसे नाक, कान, मुंह आदि। केवल महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नॉर्मल होता है, और किसी जगह से खून आए तो वो नॉर्मल नहीं होता है। जैसे खून निकलना मुंह से, जैसे कफ में, स्टूल में, यूरिन में ब्लीडिंग, ये नॉर्मल नहीं है। अब टी से थिकनिंग और लंप इन ब्रेस्ट और एल्सवेयर, मतलब स्तन में गांठ या बॉडी के किसी भी हिस्से में स्वेलिंग। आई से इनडाइजेशन और डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग, पेट की गैस या निगलने में दिक्कत। ओ से ऑब्वियस चेंज इन वॉट और मोल, मतलब तिल या मस्से का रंग साइज बदलना। एन से नैगिंग कॉफ और होर्सनेस, लंबे टाइम तक खांसी या आवाज में फर्क। और कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं, जैसे अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, मतलब बिना किसी कारण वेट गिरना, कॉन्स्टेंट थकान, फटीग, दर्द जो ना जाए, बुखार जो ठीक ना हो। दोस्तों, ये सिम्टम्स कई नॉर्मल बीमारियों में भी हो सकते हैं, लेकिन अगर 2 से 3 हफ्ते से ज़्यादा चलें तो डॉक्टर से ज़रूर चेकअप करवाइए। अर्ली डिटेक्शन से ट्रीटमेंट में सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इंडियन कैंसर सोसाइटी के कैंप्स में फ्री स्क्रीनिंग भी होती है, इसके बारे में आगे बताएंगे। क्या आपने कभी ऐसा कोई सिम्टम इग्नोर तो नहीं किया है? सोचिए। अब हम कैंसर के रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल। पहले बात करते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की, यानी वो जो हम अपने लाइफस्टाइल बदल कर कंट्रोल कर सकते हैं। ये 30 से 50% कैंसर्स को बचा सकता है। साथ साथ ये भी समझते हैं कि बचाव कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले है टोबैको या तंबाकू का यूज, सबसे बड़ा कल्प्रिट है। स्मोकिंग, गुटखा, पान, बीड़ी, धूम्रपान, ये लंग, माउथ, थ्रोट कैंसर का खतरा बढ़ाता है। इंडिया में बहुत कॉमन है। छोड़ने से रिस्क कम हो जाता है, तो बचने के लिए स्मोकिंग, तंबाकू छोड़ दें। अगला मॉडिफाइबल फैक्टर है अल्कोहल। ज्यादा शराब से लिवर, ब्रेस्ट, कोलोरेक्टल कैंसर का रिस्क कैसे बचा सकते हैं? मॉडरेशन में लीजिए, या बेहतर है कि अवॉइड ही करिए। फिर एक फैक्टर है अनहेल्थी लाइफस्टाइल और डाइट। प्रोसेस्ड फूड, रेड मीट ज़्यादा, फल सब्जी कम। कैसे ठीक कर सकते हैं आप? फाइबर रिच डाइट लीजिए, एंटीऑक्सीडेंट्स वाले खाना पदार्थ खाएं। और फिर फिजिकल इनएक्टिविटी और ओबेसिटी, इससे कैसे कर सकते हैं आप? करेक्ट, रोज एक्सरसाइज करिए, वेट कंट्रोल में रखिए, वॉकिंग, योगा, ये सब सिंपल चीज़ें हैं जो आप एक सबको करनी चाहिए। और इन्फेक्शंस, जैसे HPV, ये सर्वाइकल कैंसर करता है, हेपेटाइटिस बी या सी जो लिवर कैंसर कर सकता है। वैक्सीन्स अवेलेबल है 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए, HPV वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। तो अब ये बताओ कि क्या आप आज से एक मॉडिफाइबल फैक्टर छोड़ने का संकल्प लेंगे, जैसे सिगरेट छोड़ना या रोज 30 मिनट वॉक करना? बल्कि फैमिली को भी मोटिवेट करिए। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की, यानी वो फैक्टर्स जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जिनके बारे में जानकर अलर्ट रह सकते हैं। ये कैसे हैं? एयर पोल्यूशन एक कैंसर कारक है। गाड़ियों का धुआं या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के पोल्यूशन से लंग कैंसर हो सकता है। कंट्रोल करना इंडिविजुअल लेवल पर मुश्किल है, पर हाँ, हम अपना योगदान दे सकते हैं। फिर एक फैक्टर है केमिकल एक्सपोजर, ये भी नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर है. जो लोग केमिकल फैक्ट्रीज जैसे सीमेंट, रबड़, पेंट या रासायनिक पदार्थों की फैक्ट्रीज में काम करते हैं, उन्हें अनहेल्थी एक्सपोजर रहता है. तो मास्क पहन के बचाव करना इन लोगों के लिए ज़रूरी है. फिर रेडिएशन एक्सपोजर्स भी एक नॉन मॉडिफाइबल कैंसर फैक्टर है. जैसे यूवी एक्सपोजर यानी सूरज से कैंसर हो सकता है. सन का ज़्यादा एक्सपोजर भी एक फैक्टर है. इसलिए शरीर को पूरी तरह ढकने वाले कपड़े पहने और सनस्क्रीन लगाइए. फिर एक फैक्टर जो नॉन मॉडिफाइबल है वो है एज. बढ़ती उम्र के साथ रिस्क बढ़ता है. ज़्यादातर कैंसर 50 से ज़्यादा एज में कॉमन है, पर ये ज़रूरी नहीं है. और फिर फैक्टर है जेंडर. कुछ कैंसर्स महिलाओं में होते हैं जैसे ब्रेस्ट, सर्वाइकल, कुछ पुरुषों में जैसे प्रोस्टेट. फिर एक नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर होता है जेनेटिक्स या हेरिडिटरी कंडीशंस. कुछ सिम्टम्स जो पहले से होते हैं, अगर फैमिली में किसी को कैंसर हुआ है तो रेगुलर स्क्रीनिंग ज़रूरी है. ब्रेका जीन्स ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर से लिंक्ड है. और कुछ ऐसे भी कैंसर्स होते हैं जो फैमिली हिस्ट्री में होते हैं पर जेनेटिक नहीं होते. फिर एक नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर रेस और एथनिसिटी भी है. कुछ कम्युनिटीज में कुछ कैंसर्स ज़्यादा हैं. ये जानने से डरना नहीं है बल्कि प्रोएक्टिव होना है. फैमिली हिस्ट्री हो तो डॉक्टर से जेनेटिक काउंसलिंग के बारे में पूछिए. अर्ली स्टेज डिटेक्शन में सर्वाइवल रेट 80-90% तक हो सकता है. इसलिए रेगुलर स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है. दोस्तों, तो ये था आज का ओवरव्यू. कैंसर से डरना नहीं है, उससे लड़ना है. इंडियन कैंसर सोसाइटी आपके साथ है. अवेयरनेस, स्क्रीनिंग, सपोर्ट, रिहैबिलिटेशन सब में. आप ICS डिटेक्शन सेंटर जो कि 42 नंबर बाबा रोड दिल्ली में स्थित है, या अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में चेकअप कराइए. हेल्पलाइन नंबर्स नोट कीजिए. नंबर है 9910516562. दोबारा नोट करिए 9910516562. और वर्ल्ड कैंसर डे या नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे पर इवेंट्स ज्वाइन करिए. हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करिए और फैमिली को एनकरेज करिए. क्या आप रेडी हैं कैंसर के अगेंस्ट लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए? स्वस्थ रहें, सेफ रहें. मिलते हैं अगले प्रोग्राम में.
1: इंडियन कैंसर सोसाइटी कहने आए हैं ये बात, कैंसर को हराना है हमारे साथ. कैसे इससे लड़ना है सुनो हमारी बात, क्योंकि कैंसर नहीं है लाइलाज, दुख में सुख में हम हैं आपके साथ. इंडियन कैंसर सोसाइटी.

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आकाशवाणी पर आप सुनने जा रहे हैं आपकी पसंद का कार्यक्रम जिसे आप प्यार से कहते हैं मेरा वाला सॉन्ग। तो लीजिए दोपहर का वो समय जब आप अपनी पसंद का खाना खाते हैं, तो साथ में चाहते तो होंगे कि आपकी पसंद का गाना भी कोई प्ले करते। और इसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, आपने हमें व्हाट्सएप करना है 9868107070 पर, फिल्म का नाम, गाने के बोल और अपने नाम के साथ भेज दीजिए। हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों की रिक्वेस्ट, उनकी डिमांड,

दबंग टू से आप ये गाना सुन रहे हैं। आपके मैसेजेस लगातार पूरे जोर शोर के साथ हम तक पहुंच रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे बादल गरजे थे कल शाम दिल्ली में। और जिस तरह से मौसम ने करवट बदली और मौसम थोड़ा सुहाना हो गया, बहुत से इलाकों में बहुत अच्छी बारिश हुई है। बारिश से मुझे याद आया, देखिए बारिश में क्या होता है, कौवा जो होता है अगर जब अपना घोंसला बनाता है उसमें वो अपने अंडे देता है तो उसकी रक्षा के लिए इर्द गिर्द पेड़ पर मंडराता है और आप अगर वहां से गुजरते हैं तो सर पे वो चोंच मारता है और लोग कहते हैं कि भाई झूठ बोले तो कौवा काटे, ऐसा कहा जाता है। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ की पसंद, बॉबी फिल्म का गाना झूठ बोले कौवा काटे। वैसे अंग्रेजी में इसके अनुरूप एक और बात कही जाती है, लायर लायर पेंस ऑन फायर।

ये गाना आपने सुना बॉबी मूवी से। 28 सितंबर 1973 को ये फिल्म रिलीज हुई थी। महान शोमैन राज कपूर साहब ने इसे डायरेक्ट किया था, अपने बेटे को डेब्यू कराया था ऋषि कपूर साहब, और क्या ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। खैर आप बिल्कुल मत घबराइए, ना काले कौवे से ना सफेद कौवे से। जी आपने बिल्कुल सही सुना, कुछ सफेद कौवे भी होते हैं। नहीं देखे आपने? मैंने देखे भाई। सो आप भी लकी होंगे, देयर टाइम्स यू नो होते हैं भाई, नेचर में बहुत कुछ होता है। अमरावती महाराष्ट्र से पंकज हमारे पास मैसेज लिख के भेज रहे हैं, गुड आफ्टरनून मेरा वाला सॉन्ग। और इन्होंने तीन चॉइस दी हैं, और खुश हो जाइए, आपकी पहली चॉइस ही मेरे पास मिल गई है, वो हम प्ले करने जा रहे हैं। द सॉन्ग दैट यू हैव रिक्वेस्टेड इज वादा रहा सनम, खिलाड़ी मूवी से, अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज में। आपने तो नाम जो है गायक और गायिका के दोनों ही सही लिख के भेजे हैं। तो पंकज जी आपकी रिक्वेस्ट मेरा वाला सॉन्ग पर, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, एंजॉय कीजिए।

जी हाँ, आपकी यही चाहत है जो आपके और हमारे इस परस्पर प्रेम को बनाए रखी है। इट्स बिन मोर देन 90 ईयर्स, मतलब ऑलमोस्ट 90 ईयर्स। तो हम ये कहना चाह रहे हैं आपको को बस आप इसी तरह से रिक्वेस्ट करते रहें, हम यूं ही गाने बजाते रहें। अब देखिए, इसके अंदर मुझे बड़ी अच्छी कुछ बातें लगती हैं। कुछ लोग मैसेज लिख के भेज रहे हैं कि भाई मेरा कोई रिक्वेस्ट नहीं है, बस मैं तो आपके प्रोग्राम्स को एन्जॉय करता हूँ, कोई भी गाना बजाइए, मैं आपके प्रोग्राम को सुन रहा हूँ। सौरभ अनेजा ने लिखा कुछ। सौरभ, आपने अपने मैसेज के अंदर वो डिलीट वाला फंक्शन हटा दो ना, देखने के बाद जो खुद से उड़ जाता है, क्योंकि देखिए हम आपका मैसेज देखते हैं, उसके बाद हम दूसरे मैसेज पे जाते हैं, फिर गाना बजाते हैं, फिर कुछ और बात करते हैं, फिर वापस आते हैं, देखते हैं कहाँ गए। अरे ये तो गायब हो गया। खैर, ऐसी बात लिख के भेजी है गुड्डू धाकड़ ने, कह रहे हमारा बस नाम ले लीजिएगा। और कोई बात नहीं, नाम तो हम लेते ही रहते हैं। हम ये चाह रहे थे कि थोड़ी मेहनत आप भी करें और कोई गाना एंजॉय करने के लिए बोले भाई आए दोस्त, दोस्त हैं दोस्त है। सुना आपने, शशि कपूर साहब आ गए थे थोड़ी देर के। तो वो बिंदास अंदाज में फिल्म का नाम लिखिए, गाने के बोल लिखिए, मेरे लिए आसानी हो जाती है, और आखिर में अपना नाम लिखिए। और कोई अगर याद जुड़ी है तो वो भी लिख के भेजिए। जैसे इन्होंने अभी तो नहीं भेजी है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा। ये जो सॉन्ग मैं बजाने जा रहा हूँ, ये हमें रिक्वेस्ट किया है शालीमार बाग दिल्ली से सुनीता शर्मा जी ने, और ये गाना सुनना चाहती हैं कभी खुशी कभी गम से सूरज हुआ मध्यम। वैसे तो सूरज देखिए मध्यम ही हो रहा है दिल्ली में, ऐसे लग रहा है किसी ने रिमोट से उसको थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर दी हो। तो ये गाना आपकी पसंद का मेरे वाला सॉन्ग पर। और अगर आप अभी अभी जुड़े हैं तो हमारा नंबर है 9868107070, 9868107070, 9868107070। इस पर कीजिए व्हाट्सएप और भेजिए अपनी पसंद का सॉन्ग मेरा वाला सॉन्ग में।

होली चौक उत्तम नगर से हमारे पास मैसेज आया है जयराम खोरवाल, सचिन, अमन एंड दीपांशु खोरवाल का, और इन्होंने दो तीन रिक्वेस्ट लिखी हैं। देखिए, मैं जो आपकी पहली रिक्वेस्ट का जो गाना है मिल गया है और वो हमने क्यू भी कर दिया है, फिल्म संगम से हर दिल जो प्यार करेगा। और एक मैसेज हमारे पास आया है फरहान का, दानिश का, आकिब का, मोहम्मद रागिब रजा का, कह रहे हैं कि आपको मैसेज बहुत बार किया, हमारा गाना सुनवा दीजिए। आपकी पसंद का जो गाना आपने अभी तक रिक्वेस्ट किया था वो तो मुझे नहीं मिल रहा, कोई और आप रिक्वेस्ट भेजें तो हम ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। एक शायद आपने रिक्वेस्ट अभी बदली है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपने नहीं नहीं सेम मैसेज आपने 8-10 बार भेज दिया है। कोई बात नहीं, एक आपके नाम से मिलते जुलते एक और नाम का भी मेरे पास मैसेज आया था, मैं उनका नाम अभी मैसेज सामने नहीं आ पा रहा है। फैज़ान और जैनब कुछ लिख रहे हैं, अभी हेलो लिखा है, आगे कुछ वो इस समय इस दौरान लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, तो जल्दी कीजिए। घबरा गए, उन्होंने लिखना बंद कर दिया। एक साथ लिख के भेजा करें। देखिए, अब आपका मैसेज मेरी नज़रों के सामने था, लेकिन उसमें क्या रिक्वेस्ट है हमें नहीं पता, हमको सचमुच नहीं पता।

0: वो खाने से प्यार करेगा, वो खाना खाएगा। वाह वाह, खाने का समय है भाई, थोड़ा बहुत ब्रेक तो बनता है। आप भी 2-3 मिनट के लिए अगर जाना चाहें, रसोई से खाना परोस लीजिए, उठा लाइए, बैठ जाइए रेडियो के पास और खाइए। हम छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौट के आएंगे। बस यूं गए और यूं आए।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 1000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल 0 आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
3: पता का चाय, गजब का स्वाद।
4: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
5: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
6: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
7: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
8: आज की रात मजा,
7: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
6: म्यूजिक मस्ती।
9: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
10: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
6: म्यूजिक मस्ती।
11: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती,

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

लो जी, हम तो वापस आ गए. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. और मैं सोच रहा हूँ कि आपको मैंने पूरा समय दिया था, अगर आप खाना परोस लाए हैं तो आप खाना शुरू कीजिए. आपके पसंद का गाना हम आपके लिए लेके आ रहे हैं. बस यूं गए और यूं आए. मुझे भी थोड़ा दूर जाना पड़ता ना, कंप्यूटर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, वो सर्वर तक जाता है, सर्वर रूम से वो रिक्वेस्ट को ढूंढ के लाता है. मतलब इतना समय नहीं लगता लेकिन ले आता है. और आपकी पसंद हम बजाने जा रहे हैं भाई. मोहम्मद राकिब रजा, फ़खर जमान, दानिश खान एंड आकिब रज़ा. आपके पसंद का गाना हम ऑलरेडी बजा रहे हैं, सुनिए. आपने पसंद किया कुछ कुछ होता से साजन जी घर आए. और कुछ लोग यहाँ पे नाम ज़रूर लेना चाहूँगा, क्योंकि देखिए सीमित समय में बहुत ज़्यादा गाने तो हम नहीं बजा सकते, लेकिन जितने ज़्यादा रिक्वेस्ट हम आपकी प्ले कर पाएँ उतनी हमारी कोशिश रहती है. कल भोपाल में भी बारिश हुई थी, ऐसा लिख के भेजा है हमारे पास राम बाबू मालवीय और मनीषा मालवीय ने. इन्होंने तीन चार रिक्वेस्ट, यहाँ पर दो ही रिक्वेस्ट नहीं, एक ही गाने को दो बार पूछा है. मैं कोशिश करता हूँ आपकी पसंद का गाना हम प्ले कर पाएं.

और आपके मैसेजेस हमारे तक पहुंच रहे हैं। जैसे पुणे से हमारे पास एक मैसेज लिख के भेजा गया है और वो कह रहे हैं कि आई एम थॉरली एंजॉयिंग योर शो, थैंक यू सो वेरी मच। आपका नाम है रोहित, पुणे से आप हमें सुन रहे हैं, थैंक यू सो वेरी मच, डबल थैंक यू जी। और साथ ही साथ बहुत सारे हमारे पास मैसेजेस आए हैं। एक गाना हमारे पास रिक्वेस्ट करके भेजा है, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही पापा कहते हैं मूवी से, और ये गाना हमने ऑलरेडी प्ले कर दिया है। बस मेरी दुविधा ये है कि जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है, आपका मैसेज भीड़ में कहीं खो गया है? तो मैं वो जैसे ही मैसेज ढूंढ पाऊंगा। हाँ मिल गया जी, मिल गया। सुशील यादव एंड रेणु यादव उदयपुर राजस्थान से, हिरन मगरी सेक्टर 4 से। मुझे लगा हिरन नगरी लिखते हैं भाई, आपने सही लिखा कि नहीं, हिरन मगरी? मुझे कंफर्म कीजिएगा क्योंकि राजस्थान में हिरण बहुत है, कहीं हिरन नगरी तो नहीं लिख रहे थे, मतलब आज क्लियर हो ही जाए, है ना। बाकी आपकी पसंद का गाना, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, रास्ते में है जंगल, जंगल में है शेर और कुछ हिरण।

0: मेरे वाला सॉन्ग और मेरे वाला सॉन्ग लेकर मैं आज हाजिर हूँ आपके साथ रंजन। आज है फ्राइडे और फ्राइडे में माहौल थोड़ा सा बदल जाता है। फ्राइडे हाफ डे हो जाता है कुछ लोगों का, सोचते हैं बस अब आधा दिन काम कर लिया जल्दी घर जाते हैं और वीकेंड की शुरुआत करते हैं। अब घर की सफाई भी तो करनी है ना या फिर आपको इन्जॉय करना है, कोई फिल्म देखनी है और गाने सुनने, तो उसके लिए तो हम आपके साथ हैं। ये छोटा सा ब्रेक लेंगे, लौट के आते हैं। बस यूं गए और यूं आए। और हाँ, अगला जो गाना हम बजाने जा रहे हैं, बड़ी देर से इन्होंने रिक्वेस्ट की थी। नाम है इनका पूजा खन्ना, सुभाष नगर से लिखती हैं कि इनके घर एक प्यारी सी बिटिया आई है। तो इनका जो गाना है वो मैं आफ्टर द ब्रेक ज़रूर बजाऊंगा और मैंने क्यों कर लिया है, तो बस हमारे साथ जुड़े रहें।
1: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
2: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
1: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
2: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
2: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रूपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रूपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रूपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रूपए।
1: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: मंगल भवन मंगल हारी,
4: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
5: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
6: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
5: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और बस ज्यादा समय नहीं रह गया है और हमने जो जैसा रिक्वेस्ट आपने भेजी थी वो हम प्ले करने जा रहे हैं। पूजा खन्ना सुभाष नगर से आपके लिए और आपके परिवार के लिए, स्पेशली नन्ही परी के लिए।

मैं चाहता हूं कि और भी बहुत देर तक आपके साथ जुड़ा रहूं, आपके गाने बस यूं ही मैं चलाता रहूं, लेकिन क्या करूं। ज्योतिका सिंह आ गई हैं स्टूडियो में आशियाना अगला कार्यक्रम लेके, और अब ये इशारा है कि मुझे यहां से जाना है, जाते जाते आपके कुछ एक नाम ज़रूर ले लूँगा, बस समय की दिक्कत है। और आपने मेरी बात बिल्कुल, मेरा ज्ञान बढ़ाया। आप कह रहे हैं कि मगरी का मतलब होता है पहाड़ियों के ढलान के बीच बसा एरिया, और हिरन मगरी ही सही जगह है। थैंक यू सो वेरी मच, मैं आगे के लिए ध्यान रखूंगा। राजा और रंग का गाना सुना दीजिए बस, अब और समय नहीं है। वरुण वाज ने अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से आपने लिखा, फिलहाल रंजन को दीजिए इजाजत, मैं यहां से हो रहा हूं, क्या हो रहा हूं, मैं यहां से हो रहा हूं लापता, और फिर मिलूंगा इन्हीं एयरवेव्स पर। टिल द टाइम वी मीट अगेन, अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, खुश रखिए, सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो। टेक केयर, बाय बाय।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मैं हूं ज्योतिका और आप सुन रहे हैं आशियाना रेनबो डेस्टिनेशंस एफएम रेनबो पर। देखिए, गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं और हर घर में वेकेशन प्लानिंग भी। कोई हिल स्टेशन देख रहा है तो कोई बीच डेस्टिनेशन, लेकिन आज रेनबो डेस्टिनेशन में हम आपको ले चलेंगे भारत के दिल में।

यानी कि मध्य प्रदेश, एक ऐसा राज्य जहां हिस्ट्री भी है, वाइल्ड लाइफ भी, स्पिरिचुअलिटी भी और एडवेंचर भी, और हाँ सबसे ज्यादा यमी यमी अमेजिंग फूड भी। सबसे खास बात, ये डेस्टिनेशन फैमिली वेकेशंस के लिए एकदम परफेक्ट है। बच्चों के लिए यहाँ पर बहुत कुछ है सीखने के लिए, जानने के लिए, यंगस्टर्स के लिए फोटोग्राफी और एडवेंचर, और बड़े बुजुर्गों के लिए इतिहास और शांति। तो चलिए निकलते हैं एक खूबसूरत से सफर पर, मध्य प्रदेश।

मोनाली ठाकुर फ्रॉम द मूवी दम लगा के हाइशा, एक ऐसी मूवी जिसने हमें बताया कि आपकी बॉडी शेप से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपका दिल साफ है तो आपका रिश्ता हमेशा साफ रहेगा, प्यार उसमें बना रहेगा। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेनबो डेस्टिनेशन विद मी ज्योतिका। गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं और आज मैं आपको लेकर चल रही हूं कहां? मध्य प्रदेश की तरफ। जी हाँ, अगर आप मध्य प्रदेश एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा गेटअवे है भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी जिसे सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है। अपर लेक और लोअर लेक के किनारे बसा हुआ ये शहर मॉडर्न भी है और हेरिटेज से जुड़ा हुआ। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और भी कई बड़े शहरों से यहाँ डायरेक्ट फ्लाइट्स तक आपको मिल सकती हैं। भोपाल का रेलवे जंक्शन भी, जी हाँ, हर तरफ से जुड़ा हुआ है, तो आप यहाँ बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं। यहीं से आप सांची भी जा सकते हैं, भीमबेटका और पंचमढ़ी जैसी डेस्टिनेशंस की तरफ आसानी से जा सकते हैं। और फैमिली वेकेशंस में एक और प्लस पॉइंट पता है क्या है? भोपाल का जो पेस है ना, बहुत रिलैक्स्ड है, यहाँ ट्रैवल भी सुकून से होता है। वहीं अगर मैं आपको जून के मौसम की यहाँ जानकारी दे दूँ तो गर्मी तो आपको मिलेगी, देखिए मैं झूठ नहीं कहूँगी, लेकिन यहाँ पर आपको सुकून मिलेगा। और वैसे कहा जाता ना कि अगर घर से आप कहीं भी जाएं तो ब्रेक तो मिलता ही है, सो व्हाई नॉट भोपाल। यहाँ पर आपको टेम्परेचर दिन में 36 से 38 डिग्रीज तक मिल सकता है, रात को थोड़ी सी ठंडक हो जाती है 26-27 डिग्रीज। और अगर आप लेट जून में प्लान करेंगे तो आपको हल्की हल्की बारिश भी वहाँ मिल सकती है। तो गर्मियों की छुट्टियाँ हैं जनाब, प्लानिंग छोड़िएगा मत।

कई गाने सुनकर ऐसा नहीं लगता कि हाय बस ट्रैवल करते ही रहो। जी हाँ, रेनबो डेस्टिनेशन सुन रहे हैं आप और मैं हूँ ज्योतिका आपके साथ। और आज हमारी डेस्टिनेशन है मध्य प्रदेश, जहाँ मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रही थी भोपाल की। तो अब आगे बढ़ते हैं। भोपाल से लगभग 45-46 किलोमीटर दूर है सांची, एक छोटा सा शांत सा टाउन लेकिन दुनिया भर में मशहूर। यहीं स्थित है सांची स्तूपा, जो एम्परर अशोका ने 3rd century BCE में बनवाया था और जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। जी हाँ, बच्चों को अगर आप यहाँ ले जाना चाहें वो बहुत कुछ सीखेंगे, समर वेकेशंस के बाद स्कूल में इस टॉपिक पर बात भी कर पाएंगे। तो जब आप यहाँ पहुँचते हैं ना, तो सबसे पहले जो चीज़ आपको यहाँ महसूस होती है वो है सबसे इम्पोर्टेंट, शांति। आज के फास्ट पेस्ड जमाने में ऐसी जगहें बहुत कम होती हैं जहां आपको वो सुकून मिल सके, तो ये उनमें से एक है। फैमिली के साथ अगर आप हिस्ट्री और स्पिरिचुअलिटी दोनों एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो सांची जरूर लिस्ट में होना चाहिए। ये बच्चों को भी बताता है कि भारत की विरासत कितनी समृद्ध है। जी हाँ, अभी मैंने आपको बताया आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। भोपाल से आप खुद भी ड्राइव करना चाहें, अगर आप अपनी गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं तो वो भी पॉसिबल है। टैक्सीज और बसेस भी अवेलेबल रहती हैं। 46 किलोमीटर्स है तो आप लगा लीजिए 1.25 घंटे की ड्राइव होगी। टिकट्स यहाँ पर फ्री एंट्री है, लेकिन अगर आपके साथ कोई बाहर से आया है, कोई फॉरेन से आया है, तो उनकी टिकट आपको वहीं काउंटर पर पता चलेगी। तो मैंने आपको एक बहुत ही सुंदर सी डेस्टिनेशन के बारे में बताया है, तो व्हाई नॉट प्लान अबाउट इट।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
4: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
5: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज

वेलकम बैक आफ्टर दिस स्मॉल एड ब्रेक. मैं हूं ज्योतिका और आप सुन रहे हैं रेनबो डेस्टिनेशन, जहां आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की. हमने अभी थोड़ी देर पहले भोपाल की बात करी, शांति की बात करी, और अब भोपाल से थोड़ा सा और आगे चलते हैं. ये भी पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन 45 किलोमीटर्स दूर है भीमबेटका. जी हाँ, भीमबेटका रॉक शेल्टर्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यहाँ हजारों साल पुरानी रॉक पेंटिंग्स देखी जा सकती हैं. सोचिए, आज हम मोबाइल फोन्स और एआई की दुनिया में जी रहे हैं और भीमबेटका में हमें उन लोगों की कहानी मिलती है जो हजारों साल पहले पत्थरों पर अपनी जिंदगी के दृश्य बना रहे थे. एनिमल्स, हंटिंग सीन्स और डेली लाइफ के चित्र आज भी यहाँ मौजूद हैं. ये डेस्टिनेशन सिर्फ साइटसीइंग नहीं, एक टाइम मशीन जैसा एक्सपीरियंस है. जी हाँ, मैं अब दोबारा आपको कह रही हूँ, हर कोई प्लान करता है हिल स्टेशन चलते हैं या कोई बीच वेकेशन चलते हैं, लेकिन अगर आप सच्ची में कुछ देखना चाहते हैं तो यहाँ ज़रूर विजिट कीजिएगा. आई एम श्योर समर वेकेशन चाहे बच्चों के हो, लेकिन अगर आप उनके साथ वहाँ जाएंगे ना, यू विल नॉट रिग्रेट योर डिसीजन कि ओह कहाँ आ गए, लेकिन आप ये ज़रूर लेकर वापस जाएंगे कि वाह मज़ा ही आ गया.

रेनबो डेस्टिनेशन में अब हम आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश के हिल स्टेशन की तरफ, पंचमढ़ी। जी हाँ, पंचमढ़ी नर्मदापुरम रीजन की सतपुरा रेंजेस में स्थित है और इसे सतपुरा की रानी कहा जाता है। भोपाल से रोड ट्रिप करते हुए यहाँ पहुँचने में लगभग आपको 4 से 5 घंटे लग सकते हैं और आप बहुत आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। अगर मैं आपको ट्रैवल बताना चाहूँ तो बाय रोड मैं आपको बता चुकी हूँ, बाय ट्रेन और टैक्सी भी आप यहाँ पहुँच सकते हैं। वैसे कोई डायरेक्ट ट्रेन पंचमढ़ी तक यहाँ नहीं है, लेकिन आप वंदे भारत एक्सप्रेस या जबलपुर शताब्दी है जिससे आप भोपाल पहुँच सकते हैं और वहाँ से आप एक प्राइवेट टैक्सी ले सकते हैं। अगर आप खुद भी ड्राइव करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, आप यहाँ लगभग 3.5-4 घंटे तक पहुँच सकते हैं। अपनी ड्राइविंग के ऊपर आपका डिपेंड करता है। अगर आप चाहें तो आप ट्रेन और टैक्सी का कॉम्बिनेशन बनाकर एक प्रॉपर प्लान करके पहुंच सकते हैं। बसेस भी अवेलेबल रहती हैं और यहाँ पर आपको वाटरफॉल्स, केव्स, फॉरेस्ट और ब्रेथ टेकिंग व्यू पॉइंट्स सब कुछ यहाँ मिल सकता है। धूपगढ़ जो मध्य प्रदेश का हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ आपको मिलेगा और सनसेट देखने के लिए तो बहुत ज़्यादा मशहूर है। बी फॉल्स हो गए, पांडव केव्स और हांडी को जैसे जो स्पॉट्स हैं पूरी फैमिली को इम्प्रेस कर देते हैं। ये वो जगह है जहां आप फोन से ज्यादा नेचर को देखना शुरू कर देंगे और अपने डिसीजन पर गर्व करेंगे कि वाह किस खूबसूरत जगह हम आए हैं इन गर्मियों की छुट्टियों में। जून का महीना चल रहा है, मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप अर्ली जून में वहां ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको थोड़ी सी धूप जरूर मिलेगी, सनी रहेगा, ब्रीजी रहेगा, लेकिन आपको मजा बहुत आएगा वो वाटरफॉल्स देखने में, केव्स घूमने में। लेकिन अगर आप लेट जून ट्रैवल करेंगे तो हल्का हल्का मानसून आपको नॉक नॉक करेगा वहां पर और हिल स्टेशन पे थोड़ी सी मिस्ट और फॉग रहेगी। सो अगर आप वहां ट्रैवल करना चाहते हैं तो कॉटन क्लोथिंग काम आएगी आपके, सनग्लासेस, सनस्क्रीन और जैसे मैंने कहा अम्ब्रेला और पतली सी कोई लाइट रेन जैकेट होती है ना वो जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि मौसम का तो कुछ भरोसा नहीं होता ना भाई।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेनबो डेस्टिनेशन और आज हम बात कर रहे हैं कहाँ की, मध्य प्रदेश की। जी हाँ, मैं आपको लेकर चल रही हूँ मध्य प्रदेश। हमने अभी बहुत सारी बातें करी हैं, समर वेकेशन अभी ख़त्म नहीं हुई हैं। लेट मी टेल यू, अभी भी वक्त है प्लान करने का। अगर फैमिली में वाइल्ड लाइफ लवर्स हैं तो मध्य प्रदेश उनके लिए स्वर्ग से कम नहीं। कान्हा नेशनल पार्क मंडला डिस्ट्रिक्ट में है, बांधवगढ़ उमारिया डिस्ट्रिक्ट में और पेंच सिओनी रीजन में है। जी हाँ, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है और यहाँ टाइगर साइटिंग्स के लिए लोग दुनिया भर से आते हैं, तो हम क्यों नहीं जा सकते, है ना। सफारी के दौरान जब जंगल में अचानक डियर नजर आए या किसी टाइगर के फुटप्रिंट्स दिखे ना, तो

के चेहरों पर जो एक्साइटमेंट देखने को मिलता है, आई एम श्योर यू डू नॉट वॉन्ट टू मिस दैट, क्योंकि ये सिर्फ वेकेशन नहीं होती है, ये नेचर से रिकनेक्ट करने का मौका होता है। जी हाँ, अब मैंने आपको बता तो दिया है कान्हा नेशनल पार्क के बारे में, लेकिन अगर आप यहाँ जाना चाहें तो बहुत सारे तरीकों से आप यहाँ पहुँच सकते हैं। अगर आप एयरपोर्ट बाय एयर जाना चाहें तो जबलपुर एयरपोर्ट आपको यहाँ से कम 160 किलोमीटर्स दूर रहेगा। 3.5-4 घंटों की ड्राइव करके आप यहाँ पहुँच सकते हैं। आगे रायपुर एयरपोर्ट कम से कम 250 किलोमीटर रहेगा कान्हा से दूर। नागपुर एयरपोर्ट 300 किलोमीटर, मतलब आप किसी भी डायरेक्शन से यहाँ पहुँचना चाहें बाय एयर तो आप यहाँ पहुँच सकते हैं। और यहाँ पर रेलवे स्टेशन भी हैं, अगर आप आना चाहें तो आप जबलपुर जंक्शन भी उतर सकते हैं, मध्य प्रदेश गोंडिया जंक्शन है महाराष्ट्र में, आप बहुत आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं और अपने आप को इस नेचर से जुड़े रीजन में डाल सकते हैं, टाइगर साइट सींग में। ओहो क्या मज़ा आता है, आई एम श्योर यू डू नॉट वॉन्ट टू मिस। तो बस फटाफट गूगल करिए हाउ टू रीच हेयर एंड अपना ट्रैवल प्लान कीजिए, समर वेकेशंस आर स्टिल ऑन।

आप खुद से भी प्यार करने लगेंगे और मध्य प्रदेश से भी। जी हाँ दोस्तों, आज हम किसी ट्रेन, फ्लाइट या बस में नहीं है, बल्कि रेडियो की जादुई लहरों पर सवार होकर पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के दिल के बहुत ही खूबसूरत शहर इंदौर में। जैसे ही हम इंदौर की सर जमीन पर उतरते हैं, सबसे पहले महसूस होती है इस शहर की सफाई और तहजीब। इंदौर को लगातार भारत के सबसे साफ शहरों में शुमार किया गया है। अब जरा मेरे साथ चलिए ना पुराने इंदौर की शान, राजवाड़ा पैलेस के सामने 7 मंजिला ये ऐतिहासिक इमारत जो है, होलकर राजवंश की कहानी सुनाती है। शाम की रोशनी में राजवाड़ा और भी खूबसूरत लगता है। और दोस्तों, इंदौर की बात हो और खाने का जिक्र ना हो ये तो नामुमकिन है। सुबह सुबह गरम गरम पोहा और मीठी जलेबी की खुशबू, ओहो, हवा में घुल सी जाती है। ये शहर अपने स्ट्रीट फूड के लिए पूरे देश में मशहूर है, फिर वो भुट्टे की महक हो या फिर शाम का वो बाजार। जी हाँ, जैसे जैसे रात गहरी होती है, इंदौर का एक और रंग सामने आता है, सराफा बाजार। दिन में सोना चांदी का बाजार और रात में खाने पीने वालों का स्वर्ग। यहाँ की रौनक और स्वाद दोनों याद रह जाते हैं। तो दोस्तों, रेडियो की इन लहरों पर इंदौर आप तक अगर पहुंचा हो तो यहाँ जरूर पहुंचिएगा, क्योंकि वेकेशंस की यादों में टेस्ट भी तो होना चाहिए। और जब टेस्ट आपकी जुबान पर रहता है तो जगह हमेशा हमेशा दिल में रहती है।

दोस्तों जब ट्रैवलिंग की बात होती है ना तो मेरा तो रुकने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। जी हाँ, अब मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलती हूँ, इंदौर से थोड़ा सा आगे चलेंगे। और अब जब घर लौटते वक्त कुछ खास लेकर आपको जाना हो तो मध्य प्रदेश की हैंडलूम्स को हम कैसे मिस कर सकते हैं, है ना। इंदौर से लगभग 90 किलोमीटर दूर लगा लीजिए है महेश्वर, और अशोकानगर रीजन में है चंदेरी। महेश्वरी और चंदेरी साड़ियाँ पूरे देश में अपनी एलिगेंस के लिए मशहूर हैं। ये भी यहाँ एक कई परिवार ट्रेडिशनल हैंडलूम्स पर वीविंग का काम करते हैं आज भी। जी हाँ, अगर आप वहाँ विजिट करेंगे तो यू कैन सी सच फैमिलीज जो आज भी ये काम कर रही हैं। शॉपिंग सिर्फ खरीदारी थोड़ी होती है ना, कभी कभी वो एक शहर की याद को अपने साथ घर ले जाने जैसा होता है। अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो बाय एयर यहाँ पर आप पहुँच सकते हैं। देवी अहिल्या बाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो इंदौर में है, और आगे चंदेरी और महेश्वर यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर आपको ढाई घंटे दूर रहेगा। तो आप यहाँ ड्राइव कर सकते हैं, प्राइवेट टैक्सी ले सकते हैं, और इंटरस्टेट बसेस भी यहाँ चलती हैं। ट्रेन से जाना चाहें तो इंदौर जंक्शन ज़्यादा दूर नहीं पड़ेगा। तो ट्रैवल कीजिए ना और करते ही रहिए।

0: पार्टी शुरू हो रही है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
5: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
6: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
5: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

देखिए, अगर आप मध्य प्रदेश के हेरिटेज सर्किट पर हैं तो ओरछा और खजुराहो ज़रूर देखिएगा। खजुराहो आपका छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और अपनी वर्ल्ड फेमस टेंपल आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। यहाँ एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन दोनों उपलब्ध हैं। आप सर्च करिएगा तो आपको अपनी जिस भी तरफ से आप आ रहे होंगे आप वहाँ पहुँच सकते हैं। वहीं ओरछा बेटवा रिवर के किनारे बसा एक हेरिटेज टाउन है जहाँ के महल और छतरियाँ किसी फिल्म सेट से कम नहीं लगते। ये दोनों डेस्टिनेशंस बताते हैं कि भारत की कला और आर्किटेक्चर कितनी अद्भुत रही है। यहाँ आकर सिर्फ फोटोज नहीं मिलते हैं, कहानियाँ मिलती हैं। जी हाँ, कहानियाँ।

तो दोस्तों, आज रेनबो डेस्टिनेशन में हमने घूमा मध्य प्रदेश, भोपाल की झीलों से लेकर सांची की शांति तक, भीमबेटका की प्री हिस्टोरिक पेंटिंग से पंचमढ़ी के वाटरफॉल्स तक। जी हाँ, एक ही राज्य में इतनी डाइवर्सिटी, शायद इसीलिए मध्य प्रदेश को द हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया कहा जाता है। अगर इस गर्मियों में आप एक ऐसा वेकेशन ढूंढ रहे हैं जो सिर्फ ट्रैवल नहीं बल्कि लर्निंग, एडवेंचर, फूड और फैमिली बॉन्डिंग भी दे, तो मध्य प्रदेश आपका इंतजार कर रहा है। मैं हूं ज्योतिका और आप सुन रहे थे आशियाना रेनबो डेस्टिनेशन FM रेनबो पर। थोड़ी देर में फिर से मुलाकात होगी 4 बजे अल्फा जेन में। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं अनुराधा और एक बार फिर लेकर हाजिर हूं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। श्रोताओं, बदलते वक्त के साथ बहुत कुछ बदला और बदलता रहेगा, लेकिन ये सच्चाई कभी नहीं बदलेगी कि स्वस्थ जीवन के लिए स्वस्थ जलवायु की जरूरत होती है, और वो तभी होगा जब पर्यावरण में संतुलन बना रहेगा। जी हाँ, आज का विषय अब तक आप समझ चुके होंगे, आज है विश्व पर्यावरण दिवस। इस उपलक्ष्य में आज पर्यावरण की अहम भूमिका पर चर्चा होगी। यदि आपका भी है कोई सवाल तो हम तक आप पहुंचा सकते हैं। स्टूडियो का नंबर है 0112342108। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, उसके लिए नंबर है 9868107070। आपके सवालों का समाधान करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जी सी खिलनानी, चेयरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन, PSRI हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब का हम स्वागत कर रहे हैं कार्यक्रम में। जी, स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे?
2: हाँ बिल्कुल, धन्यवाद बहुत आपका, वेरी हैप्पी टू बी हियर।
1: तो डॉक्टर साहब, सवालों का सिलसिला शुरू करें, उसके पहले श्रोताओं को ये बता दें कि वर्ष 2026 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर, जिसका आधिकारिक ग्लोबल स्लोगन है नाउ फॉर क्लाइमेट, अब जलवायु के लिए कदम उठाएं। तो डॉक्टर साहब, पहला सवाल यही है कि इस समय जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है लगातार, उसका क्या कारण है?
2: अनुराधा, ऐसा है कि जो एनवायरनमेंट है, जो नेचर है, उसकी हमें ज्यादा जरूरत है, जब बल्कि एनवायरनमेंट को हमारी जरूरत नहीं है। तो जो एनवायरनमेंट है वो सिर्फ वायु प्रदूषण नहीं होता है
1: जी।
2: उसमें पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, पानी होता है, पौधे होते हैं, बर्ड्स होते हैं, एक ये सब मिला के एक इको सिस्टम बनता है जिसमें जो हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। और जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, हर आदमी प्लास्टिक की बोतल में पानी पीता है सेफ्टी के लिए
1: जी।
2: लेकिन मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ प्लास्टिक जो यूज होता है वो आखिर कहाँ जाता है? आखिर वो पानी में जाता है, आखिर वो हवा में जाता है। दिल्ली में एक शोध हुआ था जिसमें कि माइक्रो प्लास्टिक हवा में पाए गए थे
1: जी।
2: और जिससे बहुत सारी बीमारियां होती है। इसी तरह से हमारी जो एक्टिविटीज है, एक तो वायु प्रदूषण तो है ही, जो डीजल से और पेट्रोल से और कोयले से, उससे हमारी जो एक्टिविटीज है उनकी वजह से जो हम एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं, उस वजह से ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है बहुत ज्यादा। और आपने देखा होगा कि पहले जो आपने शायद नहीं देखा, मेरी उम्र के हिसाब से जब मैं छोटा था तो सर्दियों में सर्दी होती थी, गर्मियों में गर्मी होती थी
1: जी।
2: लेकिन अब जो है वो मौसम में इतना परिवर्तन आ गया है, बहुत एक्सट्रीम हीट आती है, 47-48-50 डिग्री पे भी जा रहा है। इस वजह से जो बाढ़ का आना और साइक्लोन्स का आना, नेचुरल कैलमिटीज भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि हमें अपने पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को बचा के रखना है। और इसी संदर्भ में 1972 में यूनाइटेड नेशंस ने 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे डिक्लेयर किया था, जिसको कि आज हम कमेमोरेट कर रहे हैं। इसके बाद में आपके जो प्रश्न होंगे उनका मैं
1: जरूर, डॉक्टर साहब जो बातचीत है उससे तो हमारे श्रोताओं तक संदेश पहुंचेगा ही। यहाँ एक म्यूजिकल ब्रेक ले रहे हैं, उससे भी संदेश लोगों तक पहुंचेगा। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: तो श्रोताओं, आज पर्यावरण दिवस पर हम विशेष चर्चा कर रहे हैं। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर जी सी खिल्लानी जी। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे अभी जलवायु परिवर्तन की, ये किस तरह से हानिकारक होता है स्वास्थ्य के लिए?
1: देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो बात करूं मैं
0: जी
1: वायु प्रदूषण की, जो कि मेरा रिसर्च एरिया रहा है।
0: जी
1: और आप दिल्ली में रहते हैं तो जैसे दिवाली आती है तो प्रदूषण बढ़ता है और आपका गला खराब होने लगता है, आपको आवाज भारी हो जाती है, नाक बहने लगती है, आंखें जलने लगती हैं और कभी बार स्किन में भी इरिटेशन और इचिंग होनी शुरू हो जाती है। शाम को आपको थकावट होती है, नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है कई बार
0: जी।
1: तो ये तो, और हम डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर के पास अटेंडेंस बढ़ जाती है, खांसी पेशेंट आते हैं और हम उनको देखते हैं तो न उनको बुखार होता है, दवाइयां देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, कुछ असर ही नहीं करते। ये तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट है क्योंकि जो वायु प्रदूषण हमारे लंग्स में जाते हैं
0: जी।
1: लेकिन इससे भी ज्यादा जो अहम है वो है हमारे सिस्टम पे क्या इफेक्ट करता है। जो वायु प्रदूषण जो होता है वो एक तो पार्टिकुलेट मैटर होता है जिसको हम PM 2.5 कहते हैं।

0: जो आजकल सब जानते हैं।
1: जी
0: उसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, लेड होता है। इन सबको मिला के जो एक नंबर हम देते हैं वो कहते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स, AQI। तो ये जो AQI जो होता है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कि मैं एक सदस्य हूँ एक्सपर्ट कमिटी का,
1: जी
0: 99% वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है ना वो वर्ल्ड एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड के अंदर नहीं रहती है, और उसमें इंडिया तो बहुत ही आगे है। अब
1: जी
0: इसका असर ये हुआ है कि एक शिकागो की स्टडी आई थी 2 साल पहले कि भारतीयों का जो जीवन काल है वो 5.3 साल कम हो रहा है सिर्फ वायु प्रदूषण की वजह से। वो इसलिए कि वायु प्रदूषण न सिर्फ खांसी करता है, बट एक COPD बीमारी होती है, ये अस्थमा करता है, ये लंग कैंसर भी करता है,
1: जी
0: हार्ट अटैक्स भी करता है, और तरह तरह के कैंसर्स भी करता है। तो
1: जी
0: ये सब
1: तो श्रोताओं, हम चर्चा कर रहे हैं आज पर्यावरण के बारे में कि किस तरह से बहुत मुश्किल हमारे लिए हो सकती है कि अगर हम समय पर जागरूक नहीं हो जाएंगे, क्योंकि जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है कहीं ना कहीं हम खुद जिम्मेदार हैं इस बात के। अगर पॉल्यूशन को नियंत्रण करें तो हो सकता है कि स्थितियाँ कुछ सुधर जाएँ, क्योंकि हम आजकल ये देखते हैं कि जो लगातार हम कहीं आना जाना होता है तो गाड़ियों से जाते हैं, घर में तमाम ईंधन के साधन वो प्रयोग होते हैं, जितने भी साधन ईंधन के हो सकते हैं हम सबका समुचित उपयोग करते हैं, ये समझे बिना कि अगर थोड़ा सा नियंत्रण करेंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है और स्थितियां दिन ब दिन किस तरह से बिगड़ रही हैं ये हम सब देख पा रहे हैं। और डॉक्टर साहब लगातार हमें जागरूक कर रहे हैं कि यदि हम संभल जाएंगे तो हमारी स्थिति किस तरह से बदलती जो जा रही है वो संभल सकती है, क्योंकि अभी अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि वायु प्रदूषण की वजह से फेफड़ों की बीमारी बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे?
0: हाँ, तो मैं जो बात कर रहा था वो कि जब अगर इंडिया की बात करें तो वायु प्रदूषण जो है ना ये मोटर व्हीकल से सबसे ज्यादा आता है,
1: जी
0: लकड़ी कोयला जलने से बहुत है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो
1: जी डॉक्टर
0: होता
1: साहब, एक एक घर में तीन तीन चार चार गाड़ियां हैं, कहीं ये लोगों को ये सोच नहीं बन पा रही है कि किस तरह से इस बात को समझें कि ये जो दुरुपयोग हो रहा है चीजों का, ये कहीं ना कहीं हमें मुश्किल में डाल सकता है।
0: है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही है। या अगर घर में 4 जने हैं तो 4 की जगह 5 गाड़ियां भी होती है, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं।
1: जी
0: कोई भी ये नहीं सोचता कि 3 जने साथ मिलके जाएं, एक ही जगह जाना हो तो सब लोग अलग अलग, और गाड़ियों का वो बढ़ता जा रहा है, साइज बढ़ता जा रहा है।
1: जी
0: 40-50 साल पहले एक मारुति 800 गाड़ी होती थी, वही एक सबसे पॉपुलर कार थी, आज SUV इतनी। और दूसरा डीजल का जो उपयोग हो रहा है
1: जी
0: उससे भी वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा
1: तो
0: हो रहा
1: ये
0: है एज
1: फेफड़ों के
0: कम्पेयर
1: लिए
0: टू।
1: डॉक्टर साहब किस तरह से हानिकारक है, कुछ विस्तार से बताएं, क्योंकि लोग समझते तो हैं लेकिन जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, और आज के दिन हमारा विशेष प्रयास यही है कि समझें कि जिम्मेदारी हमारी अपनी है।
0: हाँ, तो जहां तक फेफड़ों का प्रश्न है कि जो जैसे हम बच्चों से शुरू करते हैं, जो जैसे दिल्ली NCR के जो बच्चे हैं,
1: जी
0: हर तीसरे बच्चे को आज अस्थमा है, हर जिस घर में 2 बच्चे हैं अमूमन सबके पास नेबुलाइजेशन मशीन है, क्योंकि बच्चों को खांसी होती रहती है और दमा होता रहता है। और एक रिसर्च हुई थी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में,
1: जी
0: जिसमें देखा गया कि जो दिल्ली के जो स्कूल के बच्चे हैं प्राइमरी स्कूल के, उनके लंग फंक्शन साउथ इंडिया के बच्चों के बनिस्पत कमजोर है। तो
1: जी
0: ये दर्शाता है कि जो वायु प्रदूषण का जो इफेक्ट है वो बचपन से ही शुरू हो जाता है। और एक तो एस्थमा बहुत कॉमन होता है, और दूसरा एक ब्रोंकाइटिस होती है जिसको हम COPD कहते हैं, वो अंग्रेजी में कहूँ तो थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है पूरी दुनिया में।
1: जी
0: तो पहले हम जब पढ़ा करते थे तो 90% ब्रोंकाइटिस स्मोकिंग की वजह से होती थी, लेकिन अब जो है 50% ब्रोंकाइटिस जो है वो वायु प्रदूषण की वजह से होती है। और एक बहुत बड़ा कारण है न सिर्फ डेथ का, लेकिन एक बार जिसको COPD हो जाती है उसका हमारे पास कोई पक्का पुख्ता इलाज नहीं होता, फिर
1: जी
0: वो आदमी खांसता ही रहता है, फिर ऑक्सीजन पे चला जाता है। इसके अलावा लंग कैंसर की बात करें तो पहले हम जब पढ़ा करते थे कि 90% तो लंग कैंसर सिर्फ स्मोकर्स में ही पाया

0: जाता है, लेकिन आज जो है 40% लंग कैंसर जो है वो नॉन स्मोकर में होता है, वो भी प्रदूषण की वजह से।
1: जी
0: और इस लंग के जो कैंसर जो है की डेथ्स होती है, लंग कैंसर उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, नंबर वन कॉज
1: जी
0: है मोर्टेलिटी का। तो ये लंग कैंसर, एस्थमा और ब्रोंकाइटिस और निमोनिया,
1: जी
0: ये चार चीजें हैं जो वायु प्रदूषण से होती हैं। तो इसलिए हमें समझना है आज के दिन कि हमें जो एक्टिविटीज हैं, चाहे वो हम गाड़ियां चलाते हैं या कोयला जलाते हैं या घर में लकड़ी जलाते हैं, जब जब सर्दियां आ जाती हैं तो बाहर बैठ के कागज टायर कुछ जलाते हैं। उसके अलावा जो अनुराधा जी, जो आज दिल्ली में देखूं तो हर चौथा घर कंस्ट्रक्शन चल रही है,
1: जी जी
0: उससे बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है,
1: हाँ
0: उससे भी बचाव होना चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब हमारे साथ एक कॉलर लाइन पर हैं, जान लेते हैं कि उनका क्या सवाल है। जी आपका स्वागत है कार्यक्रम में, बताएं सर क्या जानना चाहते हैं।
2: हाँ, मैं उत्तराखंड से रघुवीर जी बोल रहा हूँ। तो
1: जी रघुवीर जी बताएं क्या सवाल है आपका।
2: मुझे तो थोड़ा अपना ये पर्यावरण से संबंधित आपसे ही कुछ बात करना है ना।
1: जरूर,
2: तो
1: आज का विषय वही है और डॉक्टर साहब सुन रहे
2: हाँ
1: हैं आपको।
2: हाँ तो मेरा थोड़ा सा सुझाव है। तो जहाँ तक ये जो स्वास्थ्य के बारे में, जो जहाँ तक ये प्लास्टिक की जो खाली बोतल हम फेंक देते हैं, या मतलब
1: जी
2: तो उसके लिए कुछ सरकार को या कुछ मेडिकल जो वो हैं, जो मेडिकल संस्थाएं हैं, उनको एक प्रयास ये रहना चाहिए कि जो प्लास्टिक की बोतल लाएं और उन इनाम पाएं। तो कुछ मतलब जैसे कुछ ऐसे होना चाहिए
1: जी
2: मेरे ख्याल से,
1: जी
2: मैं आपसे ही बात करना चाह रहा।
1: जी बहुत अच्छा सुझाव है आपका, और ऐसे सुझाव ज़रूर हमारे श्रोता सुने और अपनाए भी, सिर्फ सुझाव ही ना दें हम उसे अपनाए भी। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे।
0: नहीं बिल्कुल, इन्होंने अच्छा बोला। अब आजकल क्या हुआ है कि जो बड़े बड़े होटल्स हैं, जहाँ पर वहाँ पर प्लास्टिक बॉटल्स अब नहीं रखी जाती, ग्लास बॉटल में ही पानी सर्व किया जाता है। लेकिन जो अमूमन जगह पे है, सड़क पे जो बोतलें होती हैं, आप सोचें जो प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं वो जब ट्रकों में जाती होंगी तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो चलती होंगी,
1: जी
0: तो वो पानी में भी माइक्रो प्लास्टिक चले जाते हैं उनमें। और तो ये जरूरी है कि न सिर्फ प्लास्टिक, बल्कि जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं, जो डिस्पोजेबल बैग्स होते हैं, वो बहुत बड़ा एक कारण है। वो अल्टीमेटली पानी में जाते हैं,
1: जी
0: नदी नालों में जाते हैं, वो पानी फिर सो कॉल्ड प्यूरिफाई करके आता है, लेकिन उसमें उसके जो माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं वो रहते हैं। तो जरूरी है कि आदमी सब्जी लेने जाता है, सामान लेके जाता है, तो अपना कपड़े का बैग लेके जाए
1: जी
0: और ये प्लास्टिक की बॉटल्स यूज नहीं करे, और पॉलिथीन के जो बैग्स होते हैं उनको यूज नहीं करना चाहिए। और बहुत तरह से प्लास्टिक यूज होता है
1: जी
0: जो कि फेंका जाता है, और हम जो डिस्पोज करते हैं वो सेग्रीगेट तो नहीं करते। आप अगर विदेशों में जाएंगे तो हर घर में तीन तरह के डब्बे होते हैं। आपको कागज अलग से फेंकना होता है, जो पेरिशेबल होता है वो अलग से फेंकना होता है, लेकिन हमारे यहाँ सब मिक्स होके जाता है,
1: जी
0: और ये बहुत बड़ा। और वो क्या करता है, जैसे दिल्ली की बात करें तो भी जो भी हमारा वेस्ट होता है उसको जलाया जाता है, वो एक बहुत बड़ा कारण होता है पॉल्यूशन का। और मैंने जैसे शुरू में बोला, जिन्होंने ये बात नहीं सुनी हो, कि दिल्ली की हवा में माइक्रो प्लास्टिक्स जो होते हैं, जो कि बहुत हार्मफुल होते हैं, कैंसर करते हैं, ब्रोंकाइटिस करते हैं, तरह तरह की बीमारियां करते हैं, वो बहुत मात्रा में पाया गया है। ये एक रिसर्च हुई थी, तो मैं रघुवीर जी के सजेशन से बिल्कुल इत्तफाक रखता हूँ और मानता हूँ कि ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है।
1: जी
0: ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है कि सरकार ही इसको इम्प्लीमेंट करे, ये हर सिटीजन का,
1: दायित्व
0: हर
1: है जी
0: नागरिक का एक कर्तव्य है कि वो प्लास्टिक को यूज ना करे, पेड़ पौधे लगाए, और अननेसरली सर्दियों में जो है ना लकड़ी वगैरह बाहर बैठ के जो बोन फायर करते हैं और जलाते हैं उसको ना करें। अगर आपके गार्ड है, वो गार्ड बेचारे जब सर्दी में बाहर बैठते हैं तो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, फिर वो फिर कुछ भी

0: लाते हैं, कागज लकड़ी जो उनको मिल जाता है।
1: जी
0: तो ये हम सब की जिम्मेदारी है कि अपने पर्यावरण को स्वस्थ रखें, सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है।
1: जी बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने। आगे की चर्चा हम जरूर करेंगे, पहले एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: जी हाँ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आज इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ अनुराधा, और मेरे साथ डॉक्टर जी से खिलनानी जी हैं आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। यदि आप भी आज के विषय से जुड़ा कोई भी सवाल जानना चाहते हैं, उसका समाधान चाहते हैं, तो हमें कॉल कर सकते हैं। स्टूडियो का नंबर है 0112342108 और आप हमें व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं, उसके लिए नंबर है 9868107070। डॉक्टर साहब, हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस भी आ चुके हैं, जिनमें से पहला मैसेज मैं ले रही हूँ, ये है पूजा खन्ना जी का, सुभाष नगर दिल्ली से। लिख रही हैं कि दिल्ली में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक आम नागरिक के तौर पर हम अपने घरों को बिना एसी के ठंडा रखने और अर्बन हीट आइलैंड के असर को कम करने के लिए क्या छोटे बदलाव कर सकते हैं?
2: ये पूजा जी, बहुत एप्रोप्रिएट, सही वक्त पे आपने सवाल पूछा है। पहले टेम्परेचर 43-44 तक नॉर्मली जाता था दिल्ली में, अब 46-47 पे भी जा रहा है। तो हर आदमी तो एसी अफोर्ड नहीं कर सकता, और हर जगह एसी चल भी नहीं सकते हैं। स्कूलों में और एसी चलाना भी बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसलिए गर्मी से बिल्कुल बचने के लिए पहले तो गर्मी के इफेक्ट क्या होते हैं ये समझना है हेल्थ के ऊपर। जब आपको गर्मी लगेगी, एक तो गर्मी लगती है, एक वो एहसास होता है कि अनकंफर्टेबल हो जाता है, लेकिन गर्मी लगने से डेथ भी हो जाती है, जिसको हम हीट स्ट्रोक कहते हैं। लेकिन हीट स्ट्रोक होने से पहले आपको हीट एग्जॉशन होता है, मतलब आपको भूख लगना बंद हो जाती है, नौजिया होता है, वॉमिटिंग हो जाती है, फीवर हो जाता है, खाने को कुछ मन नहीं करता। ये सब होने के बाद धीरे धीरे ऐसे होता है, फिर बेहोशी आने लग जाती है, और उसके बाद कन्वर्जेंस भी आने लग जाते हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन उससे बचने के लिए जरूरी है कि जब दोपहर का समय हो, उस समय आप बाहर जाएं तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आप छतरी ले सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इस समय आप कपड़े रंगीन ना पहने, कॉटन के लाइट कलर के कपड़े पहनेंगे तो आपका हीट इफेक्ट, क्योंकि जो रंगीन काले कपड़े होते हैं वो हीट को बहुत एब्जॉर्ब करते हैं। उसके अलावा रेगुलरली आपको पानी पीना है। पानी का मतलब ये नहीं है कि आप आइस कोल्ड पानी सिर्फ पिए, नॉर्मल पानी जो है, हाइड्रेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और दूसरा ये होता है कि जब आपको ये जो सिम्टम्स हो जो मैंने आपको बताया, उस समय आपको बिल्कुल रेस्ट करना है। और उस समय तो जरूरी होता है कि आदमी ठंडे एनवायरमेंट में, एयर कंडीशन एनवायरमेंट में ठंडे पानी से नहा ले, तो आप हीट के इफेक्ट से बच सकते हैं। और कुछ लोग ये भी करते हैं कि एसी जो अफोर्ड कर सकते हैं वो 19 डिग्री पे जो है ना एसी चला के खूब सोचते हैं, उसका मजा लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब एकदम वो जब बाहर आते हैं तो वो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर की वजह से भी बहुत सारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है, अस्थमा हो जाता, अटैक हो सकता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा जो फ्लक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर है वो भी नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ लिक्विड इनटेक जो है ना वो एडिक्वेट होना
1: चाहिए जी। डॉक्टर साहब, आपसे बहुत कुछ जानेंगे। अभी एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर है, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताएं सर।
3: हेलो, मैं नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार जी, मैं विशेष बेदी बोल रही हूँ पंचकूला से।
1: बताएं क्या सवाल है आपका।
3: मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब कि जब ये जैसे प्लास्टिक की बॉटल्स आप समझा रहे थे, तो ये जब शुरू ही होती है तो क्यों नहीं इनका बनना बंद किया जाता। दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओवर पॉपुलेशन, और ये जो स्लम्स हैं ये सब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, वो भी हमारी पोल्यूशन को बहुत बढ़ावा दे रही है। और एक मैं ये जानना चाहती हूँ, लोग कहते हैं ना कि ग्रीन हाउसेस बहुत बड़ी पोल्यूशन दे रहे हैं, मेरे को ये समझना है आपसे कि ग्रीन हाउसेस क्या होते हैं।
2: तो आपने बहुत सारे सवाल पूछे, मैं एक एक करके जवाब देते हैं। एक दो, पहली बात, जो प्लास्टिक बॉटल बनना बंद होना चाहिए तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, और बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि प्लास्टिक एक यूजफुल चीज भी होती है, किसी किसी चीज में जरूरी भी होती है, लेकिन इसका जो डिस्पोजल होता है ना,
3: हाँ जी
2: वो इम्पोर्टेंट है। आप जैसे कभी ट्रेन में जाते होंगे तो वहाँ लिखा होता है कि अपनी उसको डिस्ट्रॉय कर दें ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन करता कोई नहीं है। दूसरा ये है कि प्लास्टिक जो होता है वो उसका जो मिसयूज जो हो रहा है, जो ओवर यूज हो रहा है, हर चीज का यूटिलिटी होती है और एक मिसयूज होता है। कार का यूज होता है आप चलाओ, जरूरी हो चलाओ, लेकिन उसको खामखा चलाना, या कार आपकी धुआं मार रही है फिर भी आप उसको चलाए जा रहे हैं बिना चेक कराए, वो उसका मिसयूज होता है। तो प्लास्टिक का मिसयूज नहीं होना चाहिए। जहां तक आपने पॉपुलेशन की बात करी, मैं मानता हूँ इंडिया इस समय नंबर वन पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड का, वो तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जो और जो आप कह रहे हो कि स्लम्स में ओवर क्राउडिंग होती है, डेफिनेटली उससे हमारा पॉल्यूशन भी बढ़ता है, गंदगी भी बढ़ती है, लेकिन ये तो उसके लिए कोई मेरे पास कोई उसका कोई उपाय नहीं है। जो

0: हाउस है वो वहां पे भी गैसेस निकलती है, लेकिन एक रिलेटिव टर्म्स में वो माइनर इशू है हमारे लिए। हमारे लिए जो मेजर इशू है वो है वायु प्रदूषण, प्लास्टिक, और जो पेड़ पौधे जो कम हो रहे हैं एनवायरनमेंट में, और जो जंगल काटे जा रहे हैं और उनसे लकड़ी बनती है, कागज बनती है, और जो बिजली का ओवर यूज, स्पेशली गर्मियों में हम बिजली यूज करते हैं, लेकिन आप ये सोचें कि बिजली बनती कैसे है। बिजली 90% से ज्यादा कोयले से बनती है,
1: जी
0: और वो जब कोयला जलता है उससे जो गैसेस निकलती हैं वो बहुत बड़ा हिस्सा होता है वायु प्रदूषण का। तो
1: बिल्कुल
0: इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि अपने आप को संयम रखें, कार पूलिंग कर लें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, जब आप कुछ सामान खरीदने जाएं तो रियूजेबल कपड़े के या जो भी बैग आपके पास हैं उसको लेके जाएं, प्लास्टिक को इधर उधर ना फेंके, अपने कचरे को सेग्रीगेट करके दें सो दैट वो मिक्स ना हो,
1: जी
0: क्योंकि उन ये सब छोटी छोटी चीज करने से हम अपने जो दुनिया के जो बेहतरीन देश है जहाँ वायु प्रदूषण कंट्रोल में है, वो सब इन चीजों का पालन करते हैं। जैसे आप सिंगापुर की बात करें, बहुत एक्सपेंसिव है, आप कार वहां रख ही नहीं सकते क्योंकि उसके टैक्सेस बहुत ज्यादा है, तो इसलिए लोग वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा यूज करते हैं। तो सिंगापुर की जो एयर क्वालिटी है वो वन ऑफ द बेस्ट है।
1: जी
0: ऐसा नहीं है कि वहाँ पॉपुलेशन नहीं है, पॉपुलेशन इंडिया जैसी नहीं है, पर है पॉपुलेशन, लेकिन कार बहुत कम लोगों के पास है, और कार की जो क्वालिटी है, फ्यूल क्वालिटी और इंजन क्वालिटी, उसका स्ट्रिक्ट उसका एक्शन होता है, स्ट्रिक्ट उसका पालन होता है। तो ये बहुत सारी बातें हैं,
1: जी
0: ये हम लोग मैन मेड प्रॉब्लम है हमारी।
1: डॉक्टर साहब, एक बात और देखने को सामने आती है कि बढ़ते तापमान की वजह से त्वचा की बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। ये किस वजह से है और कैसे इस पर नियंत्रण हो?
0: नहीं, त्वचा की बीमारियां स्पेशली हीट से नहीं होती है, हीट से थोड़ी उसमें बर्निंग होती है, लेकिन त्वचा की बीमारियां भी, एक तो एलर्जिक कंडीशन ज्यादा होती है उससे, और दूसरा वायु प्रदूषण से भी उसमें इचिंग होती है। लेकिन मैं डर्मेटोलॉजिस्ट तो हूँ नहीं, लेकिन स्किन की इचिंग का कारण होता है वायु प्रदूषण,
1: जी
0: अदरवाइज इसका कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता है। डायरेक्ट इफेक्ट लंग पे, हार्ट पे, ब्रेन पे, हमारी जो धमनियां होती हैं, ब्लड वेसल्स पे, किडनी पे, इंटेस्टाइन पे, इन पे ज्यादा होता है।
1: जी डॉक्टर साहब, एक मैसेज हमारे पास आया हुआ है नरदेव सिंह चौहान जी का, कोटद्वार उत्तराखंड से। लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री का एक पेड़ माता के नाम कितना उपयोगी है। दूसरा, अत्यधिक शहरीकरण प्रदूषण का मेन कारण है, व्यक्तिगत क्या प्रयास किए जाने चाहिए?
0: नहीं, दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। डिफॉरेस्टेशन जिसको कहते हैं जो हो रहा है वो एक बहुत बड़ा कारण है हमारा पॉल्यूशन का। तो हर हम सब कहते हैं कि आप पेड़ लगाओ। दूसरी बात क्या बोली, सॉरी।
1: उनका ये कहना है कि शहरीकरण जो हो रहा है
0: हाँ,
1: उसकी वजह
0: डेफिनेटली
1: से कितना नुकसान है आज?
0: शहरीकरण, तो जो अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसका तो बहुत ही, अब जैसे अब ऐसे भी शहर हैं जहाँ पीतल की इंडस्ट्री बहुत का प्रचलन है, वहाँ पीतल को गलाया जाता है और उसके सुंदर सुंदर चीजें बनाई जाती हैं। तो उस शहर में न सिर्फ लंग की कंडीशन ज्यादा होती है, ट्यूबरक्लोसिस भी ज्यादा होती है,
1: जी
0: इन्फेक्शन भी ज्यादा होते हैं। तो जो शहरीकरण है उससे ये सब जो आर्टिफिशियल चीजें हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती है, जब गाड़ी होगी तो गाड़ी धुलने की भी सर्विस स्टेशन भी होते हैं, तो इस तरह से वर्कशॉप्स भी होती हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा एमिशन होता है। तो शहरीकरण से तो फर्क पड़ता ही है, जितना आप शहर से दूर रहेंगे
1: जी
0: उतना आप वायु प्रदूषण से बचे रहेंगे। मतलब अगर आप उत्तराखंड में चले जाएं, पहाड़ों पे चले जाएं, पिथौरागढ़ चले जाएं,
1: जी
0: तो डेफिनेटली वहाँ वायु प्रदूषण कम होता है,
1: जी
0: इसमें तो कोई शक
1: गांवों
0: नहीं।
1: की
0: तो
1: जो
0: मैं
1: आबोहवा है
0: सॉरी,
1: आज भी शुद्ध है, डॉक्टर साहब ऐसा कहना चाहेंगे? मैंने कहा आज भी जो गांवों की आबोहवा है वो शुद्ध है वनस्पत शहरों के।
0: गांव की नहीं, जो जो पहाड़ी एरिया है ना,
1: जी
0: जहाँ

0: पॉपुलेशन डेंसिटी कम है और पेड़ ज्यादा है
1: जी
0: गांव में, तो फिर और दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। वहां भी जो फॉसिल फ्यूल जो कहते हैं लकड़ी वगैरह कोयला खूब जलता है, और आपको पता ही है क्रॉप
1: जी
0: बर्निंग होती है, तो वहाँ कितना बुरा हाल होता है। तो वो डिपेंड करता है कि उसमें डेंसिटी कितनी है और वहाँ का लाइफस्टाइल क्या है।
1: जी
0: लेकिन डेफिनेटली आप अगर अब दिल्ली तो कैपिटल है एयर पोल्यूशन का, सब जानते हैं, तो पर हर शहर दिल्ली नहीं है।
1: जी
0: कुछ शहर अच्छे भी ऐसे भी है जहाँ, जैसे इंदौर को सबसे क्लीनेस्ट सिटी माना जाता है, तो वहां के लोगों में बहुत जागरूकता है। वहां अगर आप कागज फेंकेंगे सड़क पे तो कोई आपको टोकेगा जरूर। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है, इसको हमें पालन करना चाहिए।
1: जी पेड़ लगाएं, ये तो हम संदेश दे ही रहे हैं, साथ साथ छोटी छोटी बातें हैं श्रोताओं जिनको ध्यान में रखना चाहिए। डॉक्टर साहब लगातार हमें जागरूक कर रहे हैं। और अब सुन लेते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत जिसमें पूरा पर्यावरण का जिक्र आपको मिलेगा।

0: जब ऐसे पेड़ झूमते रहेंगे तो आपका जीवन भी झूमता रहेगा, क्योंकि ज़रूरी इसलिए है पर्यावरण को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमारा जो वायुमंडल है वो भी स्वस्थ रहे और हम भी स्वस्थ रहें। जी हाँ, आज हम विशेष चर्चा कर रहे हैं पर्यावरण दिवस पर। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर जी सी खिलनानी जी। यदि आपका भी इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हम तक पहुँचा सकते हैं। स्टूडियो का नंबर है 01123421080 और आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, उसके लिए भी नंबर आपको बता देते हैं। नंबर है 9868107070। तो डॉक्टर साहब, अब जो समस्या इस समय बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है वो है नॉइस पॉल्यूशन, इसकी वजह से क्या मानसिक बीमारियां बढ़ रही हैं?
1: तो नॉइस पॉल्यूशन जो है ना, वो भी एक समस्या है जिसको कि बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। नॉइस पॉल्यूशन की वजह से एक तो आदमी की नींद डिस्टर्ब होती है, और नींद बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जो हियरिंग प्रॉब्लम्स होती है वो भी ज्यादा उससे होती है, और कॉन्सेंट्रेशन आदमी की जो होती है किसी भी काम में वो भी अफेक्ट करती है। लेकिन कोई भी इसको मेजर नहीं करता, कोई भी इसका ध्यान नहीं देता
0: जी।
1: क्योंकि लाइफ में इसका लोगों को ज्ञान भी नहीं है, और इसकी इम्पोर्टेंस को समझना भी बहुत जरूरी है। तो आपने बहुत अच्छा, ये भी एक पर्यावरण का हिस्सा है जो नॉइस है, एयर के अलावा, वाटर के अलावा
0: जी।
1: तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए, और हमें जो एक्टिविटीज जो है ना बहुत ज्यादा नॉइस प्रोड्यूस करते हैं, कई लोगों को शौक होता है कि अपनी मोटरसाइकिल का साइलेंसर निकाल के जो है ना गाड़ियां चलाते हैं, या कई जगह, कई शहरों में अभी भी इंडस्ट्रीज जो है ना वो शहर के बीचों बीच होती है, तो उसकी बड़ी आवाजें होती है, तो वो सब और जो व्हीकल्स होती हैं उसकी आवाज तो होती ही है, तो ये नॉइस का भी जो है ना इम्पोर्टेंट है
0: जी। इस विषय पर आगे और चर्चा करेंगे। अभी एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर है। जी, आपका स्वागत है, अपना नाम बताएं सर।
2: हाँ मैडम, मैंने पहले बात किया रघुवीर जी, फिर मैं दोबारा डॉक्टर साहब से एक थोड़ा क्वेश्चन का
0: बताएं।
2: जो उसको मैं पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से ना
0: जी।
2: डॉक्टर साहब नमस्कार।
0: डॉक्टर साहब सुन रहे हैं, सवाल करें।
1: मैं सुन रहा हूँ।
2: हाँ, मैं जो वो आपने कहा कि जो ये प्लास्टिक की बोतल के बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला ना, तो थोड़ा सा मैं पहाड़ में रहता हूँ, इधर उत्तराखंड का हूँ मैं, तो जैसे मतलब मैं किताबी बातें नहीं कर रहा हूँ, अब जैसे मतलब ये है कि जैसे पन्नी है, जैसे ये बोतल है, या प्लास्टिक के जो कोई और जैसे मतलब जो यूज नहीं होते हैं, तो ये क्या होते हैं कि बरसात में नदी में चल बह जाते हैं, तो वो कहाँ चले जाते हैं? समुद्र में। जब ये समुद्र में जाएंगे तो जीव जो वहाँ के जो उसमें जीव हैं उनको भी नुकसान हो सकता है। अब दूसरी बात, आपने बोला डॉक्टर साहब कि ये जो प्लास्टिक को जो कलेक्ट करने का काम, या इसको, ये तो आम सब लोगों का काम है, हम सब लोगों का। अब जब मैं अपने ऊपर की बात करता हूँ कि मैं जो प्लास्टिक इकट्ठा करूंगा तो उसको जलाने से नुकसान है, तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ?
1: तो दो, आपने दो बातें कही। एक तो ये है कि जो जो भी चीज जैसे प्लास्टिक पानी में जाता है, या पेस्टिसाइड्स पानी में जाते हैं, या एक्सक्रीटा पानी में जाते हैं, एक तो पानी का प्रदूषण होता है, वही पानी कल्टिवेशन के लिए भी यूज होता है, वही पानी जो फिश होती है, जो मछली वगैरह जो है वो भी उसको यूज करती है, तो फिर आज जो लोग फिश खाते हैं तो वो प्रदूषित फिश खाते हैं। तो इसका फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस होते हैं। तो जरूरी है कि ये जो अभी जो यमुना और नदियां हमारी प्रदूषित हो गई हैं, इसका सिर्फ विजुअल वो नहीं है कि वो गंदी लगती है, उसका बहुत सारा इम्पैक्ट है, क्योंकि वही पानी पिया जाता है, चाहे वो प्यूरीफाई करते हैं, लेकिन उसके प्यूरीफायर में ये सब माइक्रोप्लास्टिक्स वगैरह प्यूरीफाई नहीं हो पाते हैं, इसलिए उसका जो है ना वो पूरा ध्यान रखना चाहिए
0: जी। बताएं डॉक्टर साहब जी। डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी इन्होंने जिक्र किया, तो इन्होंने नदी का भी जिक्र किया, तो जो नदियों में पॉल्यूशन हो रहा है उसका कितना असर पड़ सकता है लोगों पर?
1: नहीं, बहुत असर पड़ता है, वही मैंने बोला, जो नदियां बहती हैं उसके उसमें लोग जो इंडस्ट्रियल वेस्ट जिसको कहते हैं, जो इंडस्ट्रीज होती है वो उसका वेस्ट जो है ना वो सेव उनके लिए बहुत सस्ता होता है कि उसमें बहा देते हैं, और सब लोग उसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा भी होता है, सब कुछ होता है, यूरिन भी पास करते हैं उसमें, क्या क्या नहीं करते। तो ये सब जो है ना नदियों का प्रदूषण, ये पानी कहाँ जाता है, ये मछलियां इस्तेमाल करती हैं, ये ही पानी कल्टीवेशन के लिए भी यूज होता है, जिससे सब्जियां उगाते हैं लोग, फल उगाते हैं, और फिर यही पानी जो है वो सो कॉल्ड प्यूरिफाई करके वो पीने के लिए जो हमारे नलों में आता है
0: जी।
1: तो प्यूरिफिकेशन में कुछ चीजें तो साफ हो जाती है, जैसे माइक्रोप्लास्टिक्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, ये पूरी साफ नहीं हो पाती है। हालांकि वो बैक्टीरिया फ्री हो जाते हैं, इन्फेक्शन फ्री हो जाते हैं, पैरासाइट फ्री हो जाते हैं
0: जी।
1: तो वो हर चीज उस जो हमारे प्रेजेंट इक्विपमेंट है वो प्यूरिफाइड नहीं होते, तो इसलिए ये पानी हर जगह जाता है, खाने में जाता है, हमारे पीने के लिए जाता है। तो नदियों को साफ रखना,
0: बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी,
1: बनाए रखना। तो बात वहीं पे आ जाती है अनुराधा जी के पर्यावरण को स्वच्छ रखने का जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है
0: जी।
1: हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम हर चीज ऐसी करें जिससे कि पर्यावरण पे, हमें व्यक्ति विशेष पे असर पड़े वो एक अलग बात है, लेकिन अगर पर्यावरण खराब होगा तो नुकसान तो सबको होता है,
0: सबको होता है जी, क्योंकि हम हाँ। कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है और कहीं ना कहीं वो कड़ी आके वापस हमसे जुड़ जाती है।
1: ये जनरेशनल होता है
0: जी, बिल्कुल।
1: जेनेटिक चेंजेस भी आते हैं, फर्टिलिटी पे भी इफेक्ट पड़ता है, स्पर्म की क्वालिटी पे असर पड़ता है, फीमेल की जो आज आप देख रहे हो IVF हर जगह दुकानें खुली हुई है, नेचुरल वो ये फर्टिलिटी पे भी पर्यावरण का इफेक्ट पड़ता है
0: जी। डॉक्टर साहब, हमारे एक श्रोता है वो मैसेज कर रहे हैं गैंगटोक सिक्किम से, इन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा लेकिन हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, फिर भी ये जानना चाहते हैं कि लोगों की कम से कम 5 कुछ ऐसा बताएं जो लोगों की जिम्मेदारी बने पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए।
1: ये तो रिपीटेशन होगा अनुराधा जी, जो सबसे पहली बात तो ये है कि
0: जी, अगर संक्षेप में कहना चाहे इनकी बात को
1: संक्षेप में, जैसे आप स्कूटर की जगह साइकिल चलाएं या कार पूलिंग कर लें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट करें, ये सबसे एक तो इम्पोर्टेंट है फ्रॉम द एयर पोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू। सब आदमी अपने घर पे जिसको सुविधा हो वो पेड़ उगाए। तीसरी बात ये है कि आप जो है ना जो
0: सर इंडोर प्लांट्स भी कितना असर करते हैं, आजकल देखा जाता है कि किचन गार्डनिंग होती है और इंडोर प्लांट्स लगाते हैं, क्या उसका भी स्वास्थ्य पर अच्छा असर होता है?
1: इंडोर प्लांट्स का जो है मिनिमल इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि कुछ प्लांट्स ऐसे देखे गए हैं कि जो कि एयर को थोड़ा प्यूरिफाई करते हैं, लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण बहुत ज्यादा हमारे पास नहीं है। तो कोई ये ना सोचे कि दो प्लांट आपने अपने लिविंग रूम में या जिसको ड्राइंग रूम में लगा दिए तो आपकी हवा स्वस्थ हो जाएगी,
0: जी ऐसा नहीं
1: वो
0: है।
1: बिल्कुल नहीं है
0: जी।
1: उसके अलावा जो है आप जब सामान खरीदने जाते हैं तो रीयूजेबल बैग जो है ना हमेशा यूज करें, और उसके अलावा जो है आप जो बाहर जो बेकार की चीजों को जला देते हैं उसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, चाहे कितनी भी सर्दी हो। तो आदमी कुछ लकड़ी वकड़ी जला के, कागज जला के हाथ सेकते हैं, वो टायर भी जला देते हैं, कुछ भी तो वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कागज का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, बिजली को बचाना चाहिए अपने घर में। अगर ऐसे नहीं कि बिल, बिजली का बिल ठीक है आता है, लेकिन बिजली वो जैसे मैंने कहा कि तो बिजली आती कहाँ से है, वो कोयले से आती है, तो इसलिए बिजली का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, मैं 5 की जगह 10 बता सकता हूँ
0: जी, लेकिन ध्यान हमें खुद को रखना है।

0: ये बात लगातार हम लोगों को बता रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर है, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार सर, शुभ नाम बताएं अपना।
1: डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। मैं रघुवीर सिंह ठाकुर बोल रहा हूँ, उत्तराखंड से।
0: जी बताएं।
1: मैं ये पूछा था डॉक्टर साहब से कि जैसे कि पर्यावरण में, जैसे कि हमें कोई ऐसे इक्विपमेंट मिलते हैं कि हम जैसे हवा की शुद्धता नाप सके। जैसे हम तो सांस ले ही रहे, पर हमें क्या पता कि हवा दूषित है या प्रदूषित है।
0: जी
2: तो ठाकुर साहब, नापने के तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, लेकिन अब जो हमारी जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है, वो पहले जब मैंने ये रिसर्च शुरू करी थी 1991 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में, तो बहुत थोड़े मॉनिटरिंग स्टेशन होते थे। कुछ ही शहरों में जो है ना, जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से मॉनिटरिंग होती है, PM2.5 भी बहुत कम मॉनिटर होता था। लेकिन अब तो हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है और वो वेबसाइट पे मौजूद भी होता है। जो छोटे छोटे जो मशीनें होती हैं जो कि बाजार में मिलती हैं AQI नापने की, वो इतनी रिलायबल नहीं होती है, उस पर आपको नहीं जाना चाहिए। और जो जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो वेबसाइट पे या पब्लिकली जाता है, वो ज्यादा रिलायबल होती है एयर पॉल्यूशन मेजर करने के लिए।
0: जी डॉक्टर साहब, आज का जो जीवन है उसमें बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, सभी की अपनी अपनी व्यस्तताएं हैं। ऐसे में पर्यावरण से जुड़ाव कैसे हो और कितना लाभकारी होगा उनके लिए?
2: नहीं, सबके लिए लाभकारी होगा। जो पिछले एक घंटे में हमने जो बातें करी हैं वो बहुत अहम है। और दूसरा, लास्ट में मैं ये बताना चाहूंगा कि कोई ये ना सोचे कि वायु प्रदूषण सिर्फ दिल्ली NCR की प्रॉब्लम है, क्योंकि वो ही ज्यादा हाईलाइट होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। अगर आप पूरे भारत के मैप को देखेंगे, इवन जो जहाँ पर समुन्द्र है, जैसे मुंबई है जिसको कहते थे समुन्द्र की वजह से एयर पोल्यूशन, वहाँ भी AQI 200-300 तक पहुँचता है। और उत्तर प्रदेश की तो क्या ही बात करें। तो ये सारा कंट्री में जो वायु प्रदूषण जो नहीं भी इतना हाईलाइट होता, ये सब जगह है। तो कोई ये इम्प्रेशन ना ले कि ये दिल्ली की या नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम है, ये सबकी प्रॉब्लम है। इसलिए सबको ही इसी तरफ ध्यान देना चाहिए और सबको उस तरफ कदम, जो हमने थोड़ी थोड़ी बातें बताई हैं, उसको ध्यान देंगे तो ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: ठीक, आपका कहना है कि हम सब जिम्मेदार हैं पर्यावरण को स्वस्थ बनाने के लिए या अस्वस्थ बनाने के लिए। तो हम जागरूक होंगे तभी पर्यावरण स्वस्थ रहेगा। तो डॉक्टर साहब, बहुत ही यहाँ पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। उम्मीद है कि हमारे जो श्रोता हैं उनको ज़रूर पसंद आई होगी। श्रोताओं, हमारा आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा या किस विषय पर आप रेडियो डॉक्टर में डॉक्टरों से परामर्श चाहते हैं, इसके बारे में आप अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया हम तक भेज सकते हैं। उसके लिए ईमेल आईडी है healthairdelhi@gmail.com। तो बहुत सारी आज हमने चर्चा की है डॉक्टर साहब, और चलते चलते अगर कोई संदेश आप हमारे श्रोताओं को देना चाहें।
2: नहीं, चलते चलते यही संदेश है कि नेचर को हमारी जरूरत नहीं है, हमें नेचर की जरूरत है।
0: जी,
2: हमें नेचर की जरूरत है, इसलिए उसको संभाल के रखना हमारी जिम्मेदारी है।
0: जी,
2: और हम अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे तो ये ठीक रहेगी, नहीं तो अगर हम ये सोचेंगे कि कोई और इसको ठीक करेगा तो ये नहीं हो पाएगी। धन्यवाद।
0: बहुत ही सुंदर संदेश डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में हमारे साथ।
2: जी,
0: हमारे श्रोताओं तक इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, पहुंचाने के लिए और उनको जागरूक करने के लिए। श्रोताओं, आपको बता दें कि आज हमारे विशेषज्ञ थे डॉक्टर GC खिलनानी, चेयरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन PSRI हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, जिनसे आज हमने चर्चा की विश्व पर्यावरण दिवस पर विशेष रूप से। उम्मीद है कि कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। तो अब चलते चलते बस इतना ही कहेंगे कि अपनी जिम्मेदारियों का बोध जरूर करिए, क्योंकि हम सिर्फ दोहन करते हैं प्रकृति का, लेकिन उसको हम देते कुछ नहीं है। देने का प्रयास करें, सिर्फ लेने का प्रयास ना करें, और यही वजह रहेगी कि पर्यावरण स्वस्थ रह पाएगा और हम सब स्वस्थ

0: स्वस्थ रह पाएंगे। तो उम्मीद है कि आज आप संकल्प जरूर ले लेंगे पर्यावरण को स्वस्थ रखने का। तो अब अनुराधा को दीजिए आज का रेडियो डॉक्टर समाप्त करने की इजाजत। नमस्कार।
1: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरत पहुंच गए हैं। श्री मोदी आज 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इनमें सड़क, बिजली और उद्योग सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने आज हजीरा का दौरा किया और औद्योगिक तथा अवसंरचना कार्यों की समीक्षा की। वे आज एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री आज दमण भी जाएंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दमण में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन और आधुनिक नमो अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आज दमण कन्वेंशन सेंटर, निफ्ट परिसर और एक प्रतिष्ठित ब्रिज समेत कई ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री आज केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए भी 885 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
0: भारत के यात्री वाहन बाजार में मई में लगभग 44 लाख वाहनों की बिक्री की दर्ज की गई है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग दर्शाती है। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज आय पर पूरी तरह से कर छूट दे दी है। यह छूट इस वर्ष

0: अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह की आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट को भी दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया।
1: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
0: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। श्री खनाल विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के निमंत्रण पर भारत आए हैं। इस दौरान श्री खनाल विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जनसंबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग के आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंग रेड्डी ने आज मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बेंगलुरु में उन्होंने कहा कि उन्हें बेंगलुरु विकास मंत्रालय देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें जल संसाधन मंत्रालय दिया गया। उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में कार्य करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। अन्नामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद शिकायत निवारण के लिए 70,000 से अधिक विद्यार्थियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें अंकों की सत्यापन के लिए 7,314 आवेदन और पुनर्मूल्यांकन के लिए 63,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। एशिया कप अंडर-18 हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान में भारतीय समय के अनुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। भारत का पूल ए में 9 अंक के साथ दूसरा स्थान है। टीम ने ग्रुप चरण में मेजबान जापान के खिलाफ एकमात्र हार के बाद चीनी ताइपे पर 13-1 की शानदार जीत दर्ज की थी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार दोस्तों, लम्हे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट, दोस्त और आरजे चेतन। और आज हम एक ऐसे विषय की खोज कर रहे हैं जो हमारे सामाजिक जीवन के लगभग हर पहलू को छूता है, मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया का प्रभाव। तो अपना पसंदीदा चाय का कप ले, एक आरामदायक जगह ढूंढे और आइए साथ मिलकर इस महत्वपूर्ण बातचीत को जारी रखें। हम जानते हैं कि सोशल मीडिया ने खुद को हमारे रोजमर्रा के जीवन के ताने बाने में बुना है, हमें उन तरीकों से जोड़ा है जिनके बारे में हम कुछ समय पहले सपने में भी नहीं सोच सकते थे। लेकिन आइए वास्तविक बने, विस्तार से जानते हैं कि सोशल मीडिया हमें कैसे प्रभावित करता है। हमारे द्वारा की जाने वाली

0: से खिलवाड़ करता है।
1: अब दोस्तों ये एक बहुत ही सामान्य बात है, हम हमेशा सोशल मीडिया पर दूसरों के मुकाबले अपने जीवन को आकार दे रहे हैं और ईमानदारी से कहे तो यह हमारे दिमाग के साथ खिलवाड़ है। लेकिन ये कोई चिंता नहीं है, हम यह केवल समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नहीं है, हम कुछ समाधान भी खोज रहे हैं। दोस्तों हम निश्चित रूप से इस कंपैरिजन गेम में फंसे हुए हैं, इस गेम से हमें बाहर निकलना है। अब आपके चमकने का समय आ गया है, टाइम टू राइज एंड शाइन। हम यह जानने के लिए उत्सुक है कि इसका आप पर क्या प्रभाव पड़ता है, सोशल मीडिया रोलर स्केटर ने आपके मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित किया है। अपने विचार और अनुभव हमें कॉल या हमें एक ईमेल भेजें। आपके शब्द किसी ऐसे व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं जो ऐसे ही महसूस कर रहा है, तो आइए मिलकर इस डिजिटल भूल भुलैये से पार पाए। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं या कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा एड्रेस है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। अब माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा गियर बदलते हुए आइए वास्तव में सोशल मीडिया पर संपूर्ण सत्यापन दृश्य को समझें। क्या आप जानते हैं लाइक कमेंट और शेयर की लगातार तलाश यह पीठ पर बाहरी थपथपाहट जैसे है जैसे हम सभी चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ वास्तव में कठिन क्षण है। क्या होता है जब उन पसंदों की आपूर्ति कम हो जाती है या जब बहुत ही अच्छी नहीं टिप्पणियां सकारात्मक टिप्पणियों से अधिक होने लगती है। खैर सावधान रहे क्योंकि हमारे आत्मसम्मान और मानसिक स्थिति पर इसका असर काफी गहरा हो सकता है। आइए इस सत्यापन पहेली को खोलें और देखें कि ये हमारे मानसिक कल्याण की बड़ी तस्वीर में कैसी भूमिका निभाती है। दोस्तों ये स्वाभाविक है, मान्यता की चाहत पूरी तरह से मानवीय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन यहाँ एक बात है, उस गर्म धुंधले एहसास के लिए केवल बाहरी श्रोताओं पर निर्भर न रहना अति महत्वपूर्ण है। हम सोशल मीडिया के साथ एक स्वस्थ माहौल बनाने के तरीकों की खोज कर रहे हैं और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने भीतर से उस मान्यता को कैसे प्राप्त करें, ये एक मजबूती नींव तैयार करने जैसे है। दोस्तों यहाँ सोचने के लिए पहेली का एक और टुकड़ा है, सोशल मीडिया सामग्री की सावधानी पूर्वक बनाई गई दुनिया। वहाँ बहुत से लोग डिजिटल कलाकारों की तरह हैं, जो अपने जीवन के लगभग पूर्ण संस्करण को प्रस्तुत करने के लिए अपने पोस्ट को सावधानी पूर्वक चुनते हैं और फिल्टर करते हैं। ऐसे लगता है मानो वो इस आदर्श चित्र को चित्रित कर रहे हैं। शिकार, ये पॉलिश की गई वास्तविकता हमारे दिमाग में गड़बड़ कर सकती है, जो सामान्य या प्राप्त करने योग्य मानी जाती है उसके बारे में एक प्रकार की विकृत दृष्टिकोण बन सकती है। ये एक डोमिनोस इफेक्ट की तरह है, ये अवास्तविक उम्मीद सेटिंग गेम वास्तव में हमारे मानसिक कल्याण में बाउंसर फेंक सकता है। आइए इस निर्मित वास्तविकता को उजागर करें और देखें कि ये दुनिया के बारे में हमारी धारणा को कैसे प्रभावित करती है। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं या कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा एड्रेस है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। फ्रेंड्स आइए गियर चेंज करें और गेम चेंजिंग रणनीतियों पर जूम करें। हम यह बताने जा रहे हैं कि सोशल मीडिया के साथ अपने रिश्ते में चीजों को कैसे सकारात्मक और संतुलित रखा जा सकता है, तो ये कुछ व्यावहारिक सुझाव आपके लिए आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स आइए एक महत्वपूर्ण कदम से शुरुआत करें, सीमाएं निर्धारित करना। ये डिजिटल रेत में एक रेखा खींचने जैसा है, अपने सोशल मीडिया रोमांच के लिए विशिष्ट समय निर्धारित करें और अपने घर के कुछ तकनीकी मुक्त क्षेत्र घोषित करके एक गेम प्लान बनाएं। जब आप जानबूझकर यह स्थान और समय बनाते हैं तो यह आपके सोशल मीडिया के उपयोग पर लगभग वापस लाने जैसा है। इस तरह आप 24/7 इसकी दया पर निर्भर नहीं है। और ये मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव को नियंत्रण में रखने के लिए चमत्कार

कर सकता है। आइए अपने डिजिटल जीवन को संतुलित करने की कला में महारत हासिल करें। तो दोस्तों, यहाँ एक विचार है, क्या आपने कभी अपनी सोशल मीडिया की आदत को थोड़ी राहत देना, विराम देने पर विचार किया, इसके बारे में सोचा? एक साप्ताहिक सोशल मीडिया डिटॉक्स दिवस और एक क्षण के लिए अंतहीन स्क्रॉल पर विराम जैसे, जो आपको यहाँ और अभी में पूरी तरह से उपस्थित होने की अनुमति देता है। दैट मीन्स यू विल बी हियर एंड नाउ इन द मोमेंट। ये रणनीति अद्भुत काम करती है। डिजिटल चर्चा से अलग होने के लिए एक दिन समर्पित करना एक मानसिक रीसेट बटन की तरह हो सकता है। ये आपके लिए मानसिक ताजगी का टिकट है और स्क्रीन से परे की दुनिया का आनंद लेने का मौका है। तो मेंटल रिलैक्सेशन के लिए डिजिटल डिटॉक्स के अपने स्वयं के दिन को निर्धारित करने के बारे में क्या ख्याल है? चीजों को संतुलित रखने की ये एक शानदार रणनीति है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया का प्रभाव के माध्यम से इस यात्रा में हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे ध्यान में रखें, सोशल मीडिया एक उपकरण है और किसी भी उपकरण की तरह इसका प्रभाव भी हमारे हाथों में है, चाहे वो उन महत्वपूर्ण सीमाओं को निर्धारित करना हो, एक सकारात्मक ऑनलाइन आश्रय बनना हो, या उन वास्तविक दुनिया कनेक्शन का निर्माण करना हो। हमारे पास लचीलेपन और भलाई के साथ इस डिजिटल जंगल को नेविगेट करने के लिए उपकरण है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक नमस्कार। आप एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर द्वारा निर्मित और प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे सुन रहे हैं। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं या कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं हूं ज्योतिका और आप सुन रहे हैं अल्फा जेन FM रेनबो 102.6 पर। अभी आपने हमारा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम लम्हे सुना और अब बारी है मेरी यानी ज्योतिका की। और हम सुनेंगे आज क्या? अरे आज हम बात करेंगे अल्फा जेन की, क्योंकि आज का क्या डे है आप मुझे बताएंगे? 5th of June, लेकिन डे क्या है? ऑफ कोर्स इट्स अ फ्राइडे। बस नाम सुनते ही मूड थोड़ा चेंज सा नहीं हो जाता? चाहे आप स्टूडेंट हो, वर्किंग हो, प्रोफेशनल हो या फ्रीलांसर हो या फिर आपका खुद का कोई काम हो, फ्राइडे का एक अलग ही वाइब होता है। मंडे को हम गोल्स बनाते हैं, ट्यूसडे को उन्हें चेज करते हैं, वेडनेसडे को मोटिवेशन ढूंढते हैं, थर्सडे को तो काउंट डाउन शुरू हो जाता है और फिर फाइनली आता है फ्राइडे, वो दिन जो कहता है यू मेड इट थ्रू द वीक। तो आज अल्फा जेन में बात करेंगे इसी फ्राइडे फीलिंग की, क्यों हम फ्राइडे को इतना सेलिब्रेट करते हैं और कैसे एक अच्छा फ्राइडे पूरे वीकेंड का मूड सेट कर देता है। स्टे हियर विद मी राइट हियर।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
4: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
3: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
4: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
3: और विनर्स को क्या मिलेगा?
4: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
5: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
6: www.delhitalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
7: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: 90.
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं अल्फा जैन विद मी ज्योतिका। फ्राइडे का सबसे अच्छा पार्ट पता है क्या होता है? मेरे हिसाब से ये फीलिंग कि यस आई मेड इट। हो सकता है इस वीक एग्जैक्टली वैसा ना गया हो जैसा आपने प्लान किया हो, हो सकता है कुछ डेडलाइंस मिस हो गई हो, कुछ टारगेट्स पूरे ना हुए हो, या कुछ अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस आ गए हो, लेकिन फिर भी आप यहाँ हैं। कई बार हम अपनी अचीवमेंट्स को तभी सेलिब्रेट करते हैं जब कुछ बहुत बड़ा हो, प्रमोशन मिल जाए, या जैसे कहें एग्जाम क्लियर हो जाए, या कोई मेजर माइलस्टोन अचीव हो जाए। लेकिन सच पता है क्या है? सच ये है कि लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट विक्ट्रीज अक्सर छोटी होती हैं। सुबह उठकर फिर से कोशिश करना, एक डिफिकल्ट डे के बाद फिर से पॉजिटिव रहना, और हार मानने के बजाय आगे बढ़ते रहना। फ्राइडे हमें याद दिलाता है कि प्रोग्रेस को भी सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि हर सक्सेसफुल जर्नी एक सक्सेसफुल वीक से ही शुरू होती है। क्योंकि आज है फ्राइडे, से वंस अगेन विद मी, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे।

फ्राइडे फील के साथ शो को आगे बढ़ाते हैं। आप सुन रहे हैं अल्फा जन विद मी ज्योतिका, ओनली ऑन एफएम रेनबो। देखो, एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम सबके पास कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसका हम पूरे वीक इंतजार करते हैं। किसी को फ्राइडे नाइट मूवी का इंतजार होता है, किसी को वीकेंड की वो आरामदायक नींद का, किसी को घर जाने का, और किसी को तो बस इस बात का कि दो दिन अलार्म नहीं लगाया। लेकिन यहां एक और लेसन छुपा हुआ है। लाइफ में एक्साइटमेंट सिर्फ बड़े ओकेजन से थोड़ी होती है। कभी एक कॉफी डेट, एक क्रिकेट का मैच, एक फैमिली डिनर या एक छोटा सा आउटिंग प्लान भी हमें पूरा वीक

मोटिवेटेड रख सकता है। इसीलिए लाइफ जितनी बिजी हो जाए, आपका कितना भी बिजी शेड्यूल हो, उसके बीच हमेशा कुछ ऐसा रखिए जिसका आप इंतजार कर रहे हो, क्योंकि एंटिसिपेशन भी हैप्पीनेस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और फ्राइडे उस एंटिसिपेशन का सेलिब्रेशन है।

आज की जनरेशन का एक फनी कॉन्ट्रडिक्शन है। हम सब सेल्फ केयर के बारे में इतनी बातें करते हैं लेकिन प्रैक्टिकलिटी उसमें अपनाते ही नहीं है, है ना? क्योंकि जब खुद ब्रेक लेने की बारी होती है तो गिल्ट फील करने लगते हैं। अगर हम 2 घंटे सीरीज देख लें तो लगता है प्रोडक्टिव नहीं थे। अगर थोड़ा ज़्यादा सो जाएं, रेस्ट कर लें तो लगता है उफ ये तो टाइम वेस्ट हो गया। लेकिन सोचिए, अगर आप पूरे हफ्ते कंटिन्यूसली काम करते रहेंगे और कभी रिचार्ज ही नहीं होंगे तो परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव होगी? रेस्ट करना वीकनेस नहीं होती है, रेस्ट एक स्ट्रैटेजी है। बेस्ट एथलेटिक्स भी रेस्ट करते हैं, बेस्ट परफॉर्मर्स भी रेस्ट करते हैं। और पता है क्या, बेस्ट आइडियाज भी अक्सर तब आते हैं जब हम थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाते हैं। तो इस फ्राइडे खुद को परमिशन दीजिए थोड़ा सा पॉज करने की, थोड़ा सा ब्रीद करने की और थोड़ा सा लाइफ एंजॉय करने की।

पूरे वीक हम इतने सारे रोल्स निभाते हैं, स्टूडेंट या आप एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, पेरेंट, फ्रेंड, टीम मेंबर, है ना, थक नहीं जाते हो आप? अरे आज फ्राइडे है तो मैं आज इसीलिए ये सारी बातें कर रही हूँ ताकि आपको ये रियलाइज हो सके कि स्ट्रेस के आगे भी तो अपनी जिंदगी है। इन सब रोल्स के बीच कभी कभी हम खुद को ही भूल जाते हैं। फ्राइडे और वीकेंड एक रिमाइंडर है कि आप सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते मत रहो, थोड़ा सा खुद के लिए भी समय निकालो, आपकी अपनी इंटरेस्ट के लिए, अपनी हॉबीज के लिए, अपने सपनों के लिए। कब आपने आखिरी बार कुछ ऐसा किया जो सिर्फ आपको खुशी देता हो? सोचो, कभी पेंटिंग की हो अपने लिए, राइटिंग, म्यूजिक, फोटोग्राफी, या यूं ही सिर्फ एक लंबी वॉक पर निकल गए हो। कभी कभी प्रोडक्टिविटी से ज्यादा जरूरी होता है क्रिएटिविटी, और वीकेंड उस क्रिएटिविटी को फिर से जगाने का मौका है। सो प्लीज, अगर आप कुछ सोच रहे हैं करने का, सो द राइट टाइम इज राइट नाउ।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार

0: का अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: कोयल सी तेरी बोली तेरी ची नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: गया है बबल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
3: वेलकम बैक आफ्टर दिस स्मॉल एड ब्रेक। मैं हूं ज्योतिका और आप सुन रहे हैं क्या अल्फा जैन। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं फ्राइडे की, क्योंकि थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। जी हाँ, फ्राइडे शाम का एक और परमानेंट कैरेक्टर होता है और वो होते हैं दोस्त, फ्रेंड्स। चाहे स्कूल के दोस्त हों, कॉलेज या ऑफिस के, एक सिंपल सा मैसेज, क्या प्लान है, और पूरे दिन की थकान आधी हो जाती है। दोस्ती की सबसे खूबसूरत बात यह है कि उसमें परफेक्शन की जरूरत नहीं होती है, है ना। दोस्त हमेशा आपको इम्परफेक्टली अपना लेते हैं। आप हफ्तों तक बात ना करें, फिर भी कनेक्शन वही रहता है। और जब लाइफ बहुत सीरियस लगने लगे तो दोस्त ही होते हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि थोड़ा हंसना भी जरूरी है। इस वीकेंड अगर पॉसिबल हो तो दोस्त, प्लीज अपने दोस्त को कॉल कीजिए ना, थोड़ा हैंग आउट कीजिए ना। हो सकता है उन्हें भी बस आपके उस कॉल की जरूरत हो।

लगता कि दिल सच्ची में चाहता है कि हर बार हम अपने दोस्तों के साथ यूं ही मिलते रहें, और खासकर अपने जो स्कूल के दोस्त होते हैं, कॉलेज के दोस्त होते हैं, उनकी तो बात ही कुछ अलग होती है। जितनी लंबी यारी उतना प्यारा दोस्ताना। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं अल्फा जैन और मैं हूं ज्योतिका। अब हम वीकेंड की बात कर रहे हैं, फ्राइडे की बात कर रहे हैं, बिकॉज थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। थोड़ा सा एक डिफरेंट थॉट आपके साथ शेयर करूं। हम सब फ्राइडे का वेट तो करते हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कि कहीं हम पूरी जिंदगी वीकेंड का वेट करते करते ही तो नहीं गुजार देंगे। मतलब मंडे से थर्सडे तक बस सरवाइव करना है जैसे तैसे, और फ्राइडे को आहा फिर जिएंगे। लेकिन शायद बैलेंस थोड़ा उल्टा नहीं होना चाहिए। मतलब वीकेंड स्पेशल है, लेकिन लाइफ उसके बीच के 5 दिनों में भी तो है। हर दिन में कुछ ऐसा जरूर होना चाहिए जो आपको जेन्युइनली खुशी दे। फिर आपका फेवरेट सॉन्ग हो सकता है, एक अच्छी चाय, एक मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन, एक प्यारा सा सनसेट, या फिर एक जबरदस्त वर्कआउट। खुशी को सिर्फ सैटरडे और संडे तक लिमिट मत कीजिए। ये लाइफ है जनाब, रोज जिया कीजिए।

दोस्तों, इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज के अल्फा जेन से मुझे दीजिए इजाजत। आज हमने फ्राइडे के बाद ऑफ कोर्स फ्राइडे के बारे में बात करी है, लेकिन शायद असल में हमने जिंदगी के बैलेंस के बारे में बात की है। काम जरूरी है, गोल्स जरूरी है, एम्बिशंस भी उतने ही जरूरी है, लेकिन पता है क्या, उन सब के साथ साथ जरूरी है खुद के लिए वक्त निकालना, अपने लोगों के साथ वक्त बिताना और उन छोटी खुशियों को अप्रिशिएट करना जो रोज हमारे आसपास होती हैं। तो इस वीकेंड एक काम जरूर कीजिएगा, कुछ ऐसा कीजिए जो आपको जेन्युइनली खुश करे, कुछ ऐसा जो मंडे तक आपको फ्रेश और इंस्पायर्ड महसूस कराए। मैं हूं ज्योतिका, आप सुन रहे थे अल्फा जेन एफएम रेनबो पर। मिलेंगे वेरी वेरी सून, तब तक के लिए थैंक गॉड इट्स फ्राइडे एंड टेक केयर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें सड़क, बिजली और उद्योग सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आज हजीरा का दौरा किया और औद्योगिक तथा अवसंरचना कार्यों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री आज दमन भी जाएंगे। असम मंत्रिमंडल का आज विस्तार किया गया। गुवाहाटी में आयोजित समारोह में 12 नए कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा और अन्य गणमान्य लोगों की मौजूदगी में नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस विस्तार के बाद असम मंत्री परिषद में कुल मंत्रियों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने आज घोषणा की है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम 3 में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। भारत के यात्री वाहन बाजार में मई में लगभग 44 लाख वाहनों की बिक्री दर्ज की गई। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज आय पर पूरी तरह से कर छूट दे दी है। ये छूट इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह की आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट को भी दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक

0: मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है।
1: After a detailed assessment,
2: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय सूरत में विकास परियोजनाओं से जुड़े एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
3: जनप्रतिनिधिगण और यहां उपस्थित सूरत के मेरे प्यारे भाई और बहनों, केम छो बदा अने आपणो सूरत मजामां ने? तू शू लई आव्यो छो भाई? धन्यवाद दोस्त, सरस मजानू चित्र बनावी देते हैं। जरा SP जना लोको आ भाई के भेट आपवा मांगे छे।
0: अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 में भी अपनी मजबूत गति बनाए रखी है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद शिकायत निवारण के लिए 70,000 से अधिक विद्यार्थियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें अंकों के सत्यापन के लिए 7,314 आवेदन और पुनर्मूल्यांकन के लिए 63,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। जापान में पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट का सेमीफाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 4-1 की बढ़त बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: वेलकम टू सिटी लाइट्स, गुड इवनिंग। सांझ के शो में शहर की बातों का सिलसिला एक बार फिर। मेरा नाम है शैली भाषांजलि।

गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू सिटी लाइट्स। 5:09 हमारे स्टूडियो की घड़ी में सांझ का शो है सिटी लाइट्स। और जून का महीना आते ही बारिश का इंतजार होने तो लगा था, लेकिन बारिश ने आकर अपनी कुछ हवा, अपनी कुछ शीतलता से ये अनुभव तो करा ही दिया अबाउट द मानसून। लेकिन ऑफिशियली ना मानसून का एक कैलेंडर होता है जिसमें 1 जून को वो केरला में आता है और आ गया अकॉर्डिंग टू IMD, एंड देन डिफरेंट स्टेट्स एंड सिटीज और मोहल्ला होते हुए दिल्ली NCR पहुंचे जाएगा लेट जून तक। पहले हो जाए तो मेहरबानी, बाद में हो तो इंतज़ार। पर अच्छे गाने सुनने के लिए हम इंतज़ार नहीं करवाते। जिस गाने में जय है जिंदगी की और एनर्जी है सुखविंदर सिंह की, आइए वो सुनते हैं सैटेलाइट्स में। मेरा नाम है शैली भाषांजलि।

नमस्कार श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि 8 जून 2026 को आकाशवाणी के 9 दशकों की यात्रा पूरी होने जा रही है। इसी अवसर पर हम इस यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ावों को आपके साथ साझा करेंगे, तो जुड़ जाइए हमारे साथ स्मृतियों के सफर की विशेष श्रृंखला आकाशवाणी एट 90 में मेरे यानी निशा भारद्वाज के साथ। वर्ष 2000 में भारत सरकार ने 12 नवंबर को आधिकारिक रूप से लोक सेवा प्रसारण दिवस यानी पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे घोषित किया। ये दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 12 नवंबर 1947 को आकाशवाणी दिल्ली के ब्रॉडकास्टिंग हाउस में हुए पहले और एकमात्र आगमन की स्मृति को समर्पित है। उस ऐतिहासिक दिन बापू ने विभाजन की पीड़ा झेल रहे और कुरुक्षेत्र में शरण लिए विस्थापित लोगों को संबोधित किया था। उनके इस पावन संदेश की याद में उस स्टूडियो को आज बापू स्टूडियो के नाम से जाना जाता है। इस विशेष अवसर पर आकाशवाणी द्वारा कई कार्यक्रमों के आयोजन के साथ साथ महात्मा गांधी के प्रिय भजनों की प्रस्तुतियां भी दी जाती हैं। तो श्रोताओं, रेडियो की इस यात्रा को और अधिक जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी एट 90 में। तो फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए निशा भारद्वाज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रूपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रूपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रूपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रूपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
3: www.dellytalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

आज बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, विश्व पर्यावरण दिवस है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे दिस इज, बट ये एक कैलेंडर में तारीख नहीं बल्कि धरती माँ की आवाज़ है जो हमसे कह रही है कि रक्षा कर दो, हमारी जिम्मेदारी है ना तुम्हारी। और थीम है इस वर्ष की क्लाइमेट एक्शन। केवल वैज्ञानिक, सरकार या बड़े बड़े सम्मेलन की बात नहीं है, आपकी बात है, मेरी बात है। बेवजह हम बिजली जलती छोड़ देते हैं, एक एक बूंद पानी का व्यर्थ बहा देते हैं, तभी तो हम जलवायु परिवर्तन की समस्या को बढ़ा देते हैं। और जब पौधा लगता है, हम से एक पानी बचाते हैं, कपड़े के थैला इस्तेमाल करते हैं, या छोटी सी या बड़ी सी दूरी जो है ना साइकिल से तय करते हैं, तब हम बन जाते हैं हिस्सा जलवायु कार्रवाई की। धरती हमें बहुत कुछ देती है, हर दिन, हर पल, हर सांस में। अगर कोई पेड़ हमसे पूछे ना, अगर पूछ सकता तो बहुत सवाल होते उसके पास, तो हम क्या जवाब देते? लेकिन ये भी कि विश्व पर्यावरण दिवस हमें दोष नहीं देने के लिए बल्कि समाधान का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करता है। इट इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। जस्ट रिफ्लेक्ट, थिंक, प्रॉब्ली एक्ट।

बातों का गानों का सिलसिला लगातार होता है आकाशवाणी पर. कंटिन्यूअस एंड सीमलेस इज द फ्लो ऑन आकाशवाणी. आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स, सांझ का शो है.

गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू सैटेलाइट्स। 5:37 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, एंड जून मंथ की बात अगर जहन में आती है तो कुछ बातें उभर करके आती हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मंथ, लॉट्स हैपनिंग। एक ऐसा महीना जो अपने साथ शायद एक नई ऊर्जा लेके आता है, व्हाई डू यू कॉल इट दैट, क्योंकि उम्मीद नई, नए अवसर होते हैं, क्योंकि छुट्टियों का मौसम तो होता ही है कई लोगों के लिए, बट अ लॉट ऑफ पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट लीप इन लाइफ। नए कॉलेज, नए कोर्स, अपने लक्ष्य, कहते हैं कि अपने आंखों में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। और इसी महीने धरती के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को याद दिलाता है आज का दिन, और इसी महीने पूरी दुनिया एक साथ योगमय हो जाती है। भारत की दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 तारीख को, एंड यस फीफा वर्ल्ड कप, उसकी तैयारियां, उसके रोमांच, एंड टू एड जून हमें यह सिखाता है कि साल का आधा सफर चाहे पूरा हो गया हो लेकिन मंजिलें अभी बाकी हैं। शायद जिंदगी का, साल का या जिंदगी का अध्याय अभी लिखना बाकी है। आप सुन रहे हैं सैटेलाइट्स, मेरा नाम है शैली भाषांजलि, जुड़े रहिए हमारे साथ।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: जब भी कोई उद्घोषक कहता है ना कि ये आकाशवाणी है, तो लगता है जैसे इतिहास, संस्कृति, स्मृतियां अपनी आंखों के सामने जैसे पूरी दुनिया आ गई हो। 90 वर्ष बाद उसकी गूंज उतनी ही आत्मीय, उतनी ही विश्वसनीय, उतनी ही अपनी लगती है। एक सिर्फ एक संस्था, एक प्रसारण संस्था का उत्सव नहीं है, वर्षगांठ नहीं है, बल्कि आवाज का सम्मान जिसने 9 दशकों से भारत की सारी जो धड़कते दिल हैं उनको शब्द दिए। आप सुन रहे हैं सैटेलाइट्स, मेरा नाम है शैली भाषांजलि और आकाशवाणी सेलिब्रेट कर रहा है 90 वर्ष पूरे होने जो जा रहे हैं उसको।

आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स। मेरा नाम है शैली भाषांजलि। शहर के बारे में बातें हम करते हैं शो में। और दिल्ली एक ऐसा शहर है जो कभी स्थिर नहीं रहता, फैलता है, बदलता है, आगे बढ़ता है। और इसीलिए ये वजह है कि जब भी मेट्रो का विस्तार होता है तो किसी किसी प्रोजेक्ट या परियोजना से अधिक यू नो एक शहर के विकास की स्वाभाविक कहानी लगती है ये। और इस साल भी मेट्रो विस्तार के तहत ना नए कॉरिडोर्स और बेहतर कनेक्टिविटी पर काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। बाय द एंड ऑफ द ईयर बहुत सारी सुविधाएं हमें मिल जाएंगी, और सुविधा इसलिए भी ज़्यादा भाएंगी क्योंकि आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे याद दिलाने की कोशिश कर रही हूँ कि यूज़ मेट्रो एज मच एज पॉसिबल। और मेट्रो की तो ये कहानी है कि कभी भी किसी नए इलाके का परिचय कुछ यूँ देते हैं लोग कि वहाँ मेट्रो पहुँच गई है, और इतना सुनते ही वो इलाका मानचित्र पर थोड़ा और महत्वपूर्ण हो जाता है, एक्चुअली कमर्शियली एंड वायबल हो जाता है लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट वाइज। ऑल राइट, आप सुनते रहिए सिटी लाइट्स। शहर से जुड़ी कुछ और हम बातें करेंगे।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। अच्छा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

यस इंडीड, यू आर ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी रेनबो. आप सुन रहे हैं सैटेलाइट्स. सैटेलाइट्स में सिटी की न्यूज़ तो देना बहुत आवश्यक होती है. दिल्ली में ना बहुत सारी मल्टी स्टोरीड पार्किंग है, बहुमंजिला पार्किंग सुविधाएं उपलब्ध हैं, ताकि जो इधर उधर की पार्किंग है उससे मुक्त हो सके हमारा शहर. लेकिन इसके बावजूद ना बहुत सारे

वाहन चालक होते हैं जो पार्किंग का उपयोग करने की बजाय सड़कों पे, फुटपाथ पे अपने वाहन खड़ा कर देते हैं. प्लीज़ नोट दिस, क्योंकि मूवमेंट है ना, मूवमेंट का जो फ्लो एक होता है ना, वो बिगड़ जाता है, अवरोध हो जाता है. इस समस्या पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और एमसीडी ने एक जॉइंट, जिसको कहते हैं, कैंपेन चलाया है, शुरू किया है उन लोगों पे जो ये काम करते हैं, साइड में इधर उधर फुटपाथ पे अपनी पार्किंग कर देते हैं 5 मिनट 10 मिनट का हवाला देकर के. दैट इज़ नॉट डन. जो मल्टी लेवल पार्किंग के आसपास के जो इलाके हैं, स्पेशली वहाँ पे नज़र रखी जा रही है. उद्देश्य सिर्फ चालान काटना नहीं, बल्कि एक अवेयरनेस, एक जागरूकता, एक प्रेरणा, इस तरह की बात ये कह रहे हैं ये जो अथॉरिटीज़ हैं कि इसी तहत हम ये काम करेंगे. और इस अभियान के पहले चरण में जो 6 मेन जो क्षेत्र हैं उस पर विशेष निगरानी रखी जाएगी. सो लेट्स बी वेरी वेरी केयरफुल. ये है कमला नगर का स्पार्क मॉल क्षेत्र, ग्रेटर कैलाश 1 का एम ब्लॉक मार्केट, हौसखास, कुतुब रोड, निज़ामुद्दीन बस्ती और परेड ग्राउंड क्षेत्र, ये सब शामिल है जहाँ पे दे आर डूइंग अ जॉइंट एक्सरसाइज वेर इन यू कैन नॉट इलीगली पार्क योर कार्स. और इतने आत्मविश्वासी मत बनिए कि मेरा शहर है तो मेरी गाड़ी जहाँ खड़ी होगी वहीं से पार्किंग शुरू होगी. दिस इज प्रॉबली सम काइंड ऑफ एन इल्यूजन और अ डिल्यूजन. सो अच्छे सिटीजन बनिए. ये गाना सुनिए, वापस आते हैं.

मेरा नाम है शैली भाषांजलि सिटेलाइट्स में आज बस इतना ही, लेकिन कहानी यहाँ नहीं रुकती, बस किरदार बदल जाते हैं, आकाशवाणी का रंग तो बिखरता रहेगा। जिंदगी की कुछ कहानी ऐसी ही है ना, चरैवेती चरैवेती चलते ही चले जाते हैं। यू टेक केयर, बाय बाय।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं राज्य के विकास को गति देंगी और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में सहायक होंगी। श्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल सूरत की प्रशंसा की।
1: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया हरित और स्वच्छ भविष्य की ओर बढ़ रही है तथा भारत भी इसमें सक्रिय योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर आगे बढ़ रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: इससे पहले सूरत में प्रधानमंत्री ने हजीरा में वर्तमान औद्योगिक तथा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री आज दमण भी जाएंगे, जहां वे लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामुरा सीमा चौकी पर प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि ये परियोजना अंतिम चरण में है और अगले वर्ष सीमा सुरक्षा बल तथा सशस्त्र सीमा बल की तैनाती वाले 7 से 8 संवेदनशील क्षेत्रों में इसका प्रायोगिक चरण शुरू किया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल

घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज जम्मू में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस नए केंद्र से जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के लिए मौसम पूर्वानुमान सेवाओं को मजबूती मिलेगी। श्री सिंह ने कहा कि सटीक और समय पर मौसम पूर्वानुमान से कृषि, विमानन, पर्यटन और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों को लाभ होगा। असम मंत्रिपरिषद का आज विस्तार किया गया। गुवाहाटी में आयोजित समारोह में 12 नए मंत्रियों ने शपथ ली। राज्यपाल रक्षम प्रसाद आचार्य ने इस अवसर पर नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस विस्तार के बाद असम मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन 31 जुलाई तक किए जा सकेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और अनुशंसाएं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी। भारत एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से पराजित हो गई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, हेलो, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों आप सुन रहे हैं म्यूजिकल योर्स, आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6, दिल से दिल तक। दिल्ली और एनसीआर के अलावा आप हमें अलग अलग जगहों पर मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज पर सुन रहे हैं। और अब वक्त हो गया आपके अपने मनपसंद प्रोग्राम का, जिसका नाम है मैसेज मसाला मिक्स। और दोस्तों आज मैसेज मसाला मिक्स में आपके साथ है आपका दोस्त रोज प्रवीण शर्मा। और आज का जो सवाल वो ये है दोस्तों कि आपको हमें ये बताना है कि आप अपने दिल की बात किससे शेयर करते हैं या किससे करना पसंद करते हैं। दूसरे लफ्जों में अगर कहा जाए तो आप अपने दिल के राज से किसको वाकिफ कराते हैं, आप अपने दिल के राज किसको बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपना उत्तर हमें व्हाट्सएप जरूर करें। हमारा नंबर है 9868107070। जी हाँ, 9868107070। और सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो पर अपना मनपसंद प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
3: हिमालय की गोद से लेकर
4: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
3: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
4: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
3: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
4: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
3: तो सुनना ना भूलें
4: रेनबो डेस्टिनेशंस
3: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
5: आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6, दिल से दिल तक।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मैसेज मसाला में आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। मोहल्ला हलवाई जान शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी कह रहे हैं कि चुपके चुपके से रहते हैं, सारे आराम नहीं होते, कुछ रिश्ते एहसास के होते हैं, उनके नाम नहीं होते, जैसे आपका और हमारा रिश्ता, यानी एफएम रेनबो के साथ हमारा रिश्ता। क्या बात है, बहुत खूब।

अगला संदेश हमें मिला है हीरामणि वर्मा का दवरेंगी भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से। कह रहे हैं कि मैं अपने दिल की बात अपने लाइफ पार्टनर से यानी अपने हम सफर को बताता हूँ, उसे शेयर करता हूँ। बहुत खूब हीरामणि जी, धन्यवाद संदेश भेजने के लिए और अपने मन की बात हमसे जाहिर करने के लिए।

निरंकारी कॉलोनी दिल्ली से संजीव जुड़ गए हमारे साथ, कह रहे हैं कि मैं अपनी मम्मी से अपने दिल की बात शेयर करता हूं और अपनी फैमिली मेंबर्स से भी शेयर करता हूं, और ये हैं मुस्कान और सपना। इनके साथ मुस्कान और सपना भी हैं। संजीव जी, आपका धन्यवाद अपने दिल की बात बताने के लिए। प्रवीण चौहान जुड़ गए हमारे साथ। प्रवीण जी कह रहे हैं खरगोन मध्य प्रदेश से, कह रहे हैं हमें कि दिल की बात घर वालों से, रिश्तेदारों और दोस्तों से शेयर करता हूं मैं। सवालों के जवाब भी मिल जाते हैं और मन भी हल्का हो जाता है। वैसे मंदिर में भगवान से भी बोलता हूं, क्या बात है जी। बिल्कुल, कहते हैं कि जब हमारा कोई अपना नहीं होता तो भगवान तो हमारे होते हैं, ईश्वर हमारे होते हैं, ऊपर वाला हमारा होता है। जब अपने दिल की बात उनसे शेयर करते हैं ना, तो यकीन मानिए वो हमारी बात ज़रूर सुनता है, अगर हम दिल से उसके अपनी गुहार लगाएं तभी।

किशन वजनानी, नीलम स्वाति और केशु रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से कह रहे हैं कि गुड इवनिंग, शो बहुत अच्छा लग रहा है हमें, गाने बहुत सुंदर लग रहे हैं भैया, भी तो पहला गाना है ये, इन्हें बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद। और कह रहे हैं बहुत अच्छी शुरुआत है कार्यक्रम की, हम जुड़े हुए हैं बेसब्री से, इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल आप यूं ही जुड़े रहिएगा और आप अपने संदेश भी हमें भेजते रहिएगा, जो हमने आपसे पूछा है अपने दिल की बात आप किससे शेयर करना पसंद करते हैं।

गांव शोभापुर बाईपास मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़ जुड़ गए हैं। ये कह रहे हैं कि प्रवीण शर्मा जी शुभ संध्या, आपको भी शुभ संध्या। ये कह रहे हैं कि ऐसा है कि हम अपने दिल की बात शेयर करने से पहले हमें सोचना पड़ता है कि, और सोचना भी चाहिए कि हम किस फील्ड के व्यक्ति से कौन सी बात शेयर कर रहे हैं। जैसे कि मैं अपने बारे में बताता हूँ कि यदि कोई बात धार्मिक हो या ध्यान योग से संबंधित है तो मैं वो बातें उन्हीं क्षेत्र के व्यक्तियों से शेयर करता हूँ। ऐसी बातें मैं अपनी पत्नी या बच्चों से शेयर नहीं कर सकता। और कोई भी बात जो सामाजिक होती है उस बात को भी मैं उसी क्षेत्र के व्यक्ति से शेयर करता हूँ। दिग्दर्शन जी, कविता जी, संदेश आपका अच्छा लगा पढ़ा। ये बात अलग है कि ये आपके अपने विचार हैं और बिल्कुल आपको इससे अगर लगता है कि आपके आपके दिल की बात वहाँ तक पहुँचती है और आपको सही सुझाव मिलते हैं तो इससे बेहतर कोई बात हो नहीं सकती। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हम उसी क्षेत्र के व्यक्तियों से बात करें, कभी कभी हमारे घर के बड़े बुजुर्ग भी हमें सही राह और सच्ची सलाह दे देते हैं, है कि नहीं। कहीं में जाइए, हम सुनते रहिए, क्योंकि हम हाजिर होने से प्यारे से गीत के बाद।

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, अपन आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आप इस वक्त मैसेज मसाला मिक्स के खूबसूरत महफिल में मेरे दोस्त प्रवीण शर्मा के साथ और सुन रहे हैं बेहतरीन गीत और साथ ही अपने संदेश भी। अगला संदेश में मिला है मोहम्मद शहजाद का, सूरत गुजरात से। शहजाद कह रहे हैं कि मैं अपने दिल की बात अपने दोस्त से शेयर करना पसंद करता हूं और मुझे इससे बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है। बहुत खूब शहजाद जी। वैसे भी हम अपनी बात अगर वहां शेयर करते हैं जहां हमें समझा जाता है, हमारे दिल की बात को यकीनन उसका एहतराम किया जाता है, तो इससे ज्यादा खुशी की बात कोई और हो ही नहीं सकती। और कभी कभी ऐसी बातें भी होती हैं जो हम चाहते हैं कि वो अपने तक ही सीमित रखे, अपने तक ही पोशीदा रखे, तो ऐसा भी होता है। कुछ लोग हमारे खास अपने होते हैं, दोस्त होते हैं, जो जाहिर है वो बातें हम किसी और से शेयर नहीं करते जो हम उनसे करते हैं। धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। दिनेश

कुमार भंडारी जुड़ गए हैं तुलसीपुर नेपाल से। दिनेश कुमार जी कह रहे हैं कि प्रियजनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आपको भी नमस्कार। ये कह रहे हैं मैं नेपाल से अपने दिल की बात कर रहा हूँ, और ये कह रहे हैं कि मैं अपने दिल की जो मन की बात है वो अपने दोस्त के साथ शेयर करता हूँ, और इससे मुझे बड़ा अच्छा राय मिलती है, जो मैं चाहता हूँ वो मेरा काम पूरा हो जाता है। क्या बात है, आपने बड़ी अच्छी बात कही दिनेश जी। यकीन मानिए, जब आप अपने दोस्त से ये बात कहते होंगे तो यकीनन आपके दिल को भी सुकून मिलता होगा और आपकी समस्या का हल भी हो जाता होगा। धन्यवाद।

सोनू बिजनौर से जुड़ गए हैं। सोनू कह रहे हैं कि मैं अपने दिल के बाद खुद ही अपने मन के सामने रख देता हूँ, यानी दिल में ही ये कहते हैं, मैं बात रख देता हूँ, क्योंकि दिल में ये कहते हैं कि ईश्वर का वास होता है और मुझे अपने दिल की बात जो है वहीं से मालूम चल जाती है और मुझे सलाह मिल जाती है। यानी कि इनका कहने का अर्थ है शायद अंतर्मन जो है, अंतर्मन की आवाज़ सुन लेते हैं। बिल्कुल सही कहा। कभी कभी कुछ लोग होते हैं ना जो चाहते हैं कि हम किसी से ना कहें अपने दिल की बात, तो वो ध्यान अवस्था में बैठ जाते हैं या वो सोचने लग जाते हैं, अंतर्मुखी हो जाते हैं वो, और वो जब अंतर्मन से बातें करते हैं तो जाहिर है उन्हें अच्छी सलाह भी मिलती है। इसमें कोई शक की बात नहीं कि हमारे दिल में प्रभु का वास है। आपका संदेश बड़ा अच्छा लगा, धन्यवाद सोनू जी। यूं ही जुड़े रहेगा हमारे साथ, चलते देखते हैं अगला संदेश किसका है। मोहम्मद सरफराज आलम जो कि यार दर्शना बाजार अररिया बिहार से कह रहे हैं, विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। इन्होंने कुछ पंक्तियां लेकर भेजी हैं। अर्ज करते हैं, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, धरती माँ का मान बढ़ाओ, स्वच्छ हवा का लो उपहार, हरियाली से बने संसार, जल है जीवन इसे बचाएं, बूंद बूंद का मोल समझाएं, नदियां स्वच्छ और निर्मल हों तभी हमारे सपने पूरे हों। क्या बात है सरफराज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी खूबसूरत कविता हमसे शेयर करने के लिए, धन्यवाद। यूं ही बने रहेगा हमारे साथ। रंजीत कुमार मंडल सिकटी अररिया बिहार से कह रहे हैं कि मैं अपने दिल की बात अपनी पत्नी से शेयर करता हूं, कुछ बातें मैं अपने दोस्तों से भी शेयर करता हूं। क्या बात है रंजीत जी, बहुत धन्यवाद। दोस्तों से पहले कि हम आगे बढ़े, क्यों ना हो जाए एक प्यारा सा गीत, उसके बाद लेंगे आपके संदेश।

दोस्तों समय हो गया है 6:30 और 25 सेकेंड। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मैसेज मसाला में, एक आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। दोस्तों कमी जाइए, हम हाजिर हो रहे हैं छोटे से अंतराल के बाद।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
4: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
3: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
5: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
6: ठीक है,
5: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो, जो HR कटा ना इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
4: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
3: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
7: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
3: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
4: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
3: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
4: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
3: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
4: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
3: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
4: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
8: आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6, दिल से दिल तक।

दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मैसी मसाला मिक्स आकाशवाणी FM रेनबो पर। चलिए देखते हैं कि किसका संदेश हमें मिला है।

ये अगला संदेश हमें भेजा है पूर्णिया बिहार से मोनम कुमारी ने। मोनम कुमारी जी कह रही हैं कि मेरे दिल के राज राज ही रहते हैं, यानी मैं अपने दिल की बात अपने दिल में ही रखती हूँ, महफूज रखती हूँ, सिर्फ मेरे ही पास ये महफूज रहते हैं, मुझे उन्हें किसी के साथ बांटना नहीं है, क्योंकि दिल की बात कहने के लिए सिर्फ जुबान नहीं, एक सच्चे राजदार की ज़रूरत भी होती है। क्या बात है, जो शायद मुझे अभी तक मिला ही नहीं। बहुत खूब आपने कहा मोनम कुमारी जी, आपके जज्बात की हम कद्र करते हैं, यकीनन हम उम्मीद करते हैं, हम ऐसा मानते हैं और चाहते भी हैं कि आपको ऐसा राजदार ज़रूर मिले और बहुत जल्द मिले, जिससे कि आप अपने दिल के बात शेयर कर सकें। कुछ पंक्तियाँ किसी ने क्या खूब कही हैं कि मैं अक्सर सोचता हूँ क्या कभी वो दिन भी आएगा, शिकस्ता सास भी जब प्यार के नगमे सुनाएगा, जहन्नुम खेज रातें खिलखिलाकर मुस्कुराएंगी, मोहब्बत करने वालों का जहां भी जगमगाएगा।

रवि जोशी मेरठ से कह रहे हैं कि मैं अपने दिल की बात मैसेज करके अपने दोस्तों से शेयर करता हूं और उनसे राय ले लेता हूं। क्या बात है। उन्हें कह रहे हैं कि मैं कुछ भी बात अपने दोस्तों से नहीं छुपाता। बिल्कुल सही बात है भाई, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो हमारे खास होते हैं, हमारे दिल के बेहद करीब होते हैं, जिन्हें हम अपने दिल की बात खुल कर कह सकते हैं।

अगला सन्देश मिला है मोहम्मद इम्तियाज और सलमा बेगम का, जवाहर कैंप कीर्तिनगर नई दिल्ली से। कह रहे हैं कि आजकल तो सोशल मीडिया पर ज़्यादातर लोग अपने दिल की बात शेयर करते रहते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि मैं समझता हूं कि अगर शादी नहीं हुई हो तो अपने दिल की बात अपने पेरेंट्स से शेयर करनी चाहिए, और अगर शादी हो चुकी हो तो अपने जीवन साथी के साथ अपने दिल की बात शेयर करनी चाहिए। मैं तो अपने वाइफ से अपने दिल की बात शेयर करता हूं, और मगर आजकल कुछ नाराज़ हैं, आप बोल दीजिए प्लीज़, नाराज़गी दूर हो जाए। बिल्कुल भाई बिल्कुल, देखिए ऐसा है ना, ये कहते हैं ना जीवन साथी जो है पति पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, और अगर दोनों पहिए साथ साथ सही चलते रहे ना तो जीवन की गाड़ी बड़ी अच्छी तरह चलती है। तो आप हम आपसे गुजारिश करते हैं भाई सलमा बेगम जी कि अपनी नाराज़गी दूर कीजिए और मोहम्मद इम्तियाज़ जी को माफ़ कर दीजिए अगर गलती भी हो गई हो तो, और इसी तरह से प्यार से जीवन बिताइए। शुक्रिया संदेश भेजने के लिए।

अगला संदेश हमें मिला है जम्मू और कश्मीर से, ये राजौरी से मिला है, जम्मू कश्मीर से। ये कह रही हैं, ये हैं माहिदा सुल्ताना। माहिदा जी कह रही हैं, कुछ लोग हमारे दिल के जज्बात को समझते हैं पर हम सबसे दिल की बात शेयर नहीं करते। बिल्कुल सही कहा आपने। ये कहते हैं कि हम सिर्फ उनसे ही अपने दिल की बात शेयर करना पसंद करते हैं जो हमारे दिल को समझता हो, बिल्कुल हमारे जज्बात को जज्बात की कद्र करे। बिल्कुल सही कहा आपने माहिदा जी। जब तक हमारे दिल को समझेगा नहीं, हम अपने दिल के जज्बात उनसे शेयर कर भी नहीं पाएंगे, यानी अपने दिल की बात खुलकर उनसे कह भी नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर हम उनसे कहेंगे तो शायद वो बात और ज़्यादा खुल जाए, यानी कि सब तक पहुँच जाए जो शायद वाजिब ना हो। तो हो जाए एक प्यारा सा कि उसके बाद करेंगे आपके, लेंगे संदेश और करेंगे ढेरों बातें।

0: दोस्तों आपको हमारे प्रोग्राम कैसे लगते हैं, आप अपने सुझाव शिकायत हमें मेल कर सकते हैं। दोस्तों हमारा ईमेल आईडी है, नोट करें, हमारा ईमेल आईडी है feedback@fmrainbow@gmail.com। जी हाँ, feedback@fmrainbow@gmail.com। और सुनना ना भूलें, हर महीने के तीसरे शुक्रवार को दोपहर 1 बजे प्रोग्राम बिंदास बोल। फिलहाल चल रहा है प्रोग्राम मैसी मसाला मिक्स, कहीं मजा आई क्योंकि हम हाजिर हो रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

वेलकम बैक फ्रेंड्स। एक बार ब्रेक के बाद पुनः आपका हार्दिक नंदन, हार्दिक स्वागत। आप हैं इस वक्त मैसेज मसाला मिक्स से खूबसूरत और हसीन महफिल में दोस्त प्रवीण शर्मा के साथ। तो चलिए लेते हैं आपके संदेश एक बार फिर से। ये हैं शैलजा फ्रॉम निमराना। तो शैलजा जी कह रही हैं कि मैं अपने मेंबर्स, फैमिली मेंबर से और फ्रेंड से दिल की बात शेयर करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया शैलजा जी संदेश भेजने के लिए और अपने दिल की बात बताने के लिए।

शाकिर खान, फरमान खान और राज, ये है राजनगर पालम दिल्ली से। तो शाकिर और फरमान कह रहे हैं कि मैं अपने दिल की बात, हम अपने दिल की बात अपने पापा से शेयर करते हैं क्योंकि उनसे बड़ा कोई भी सलाहकार नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे मम्मी पापा, घर के कोई भी फैमिली मेम्बर्स हों जो हमसे बड़े हैं, अगर हम उनसे अपने दिल की बात शेयर करते हैं तो ना सिर्फ हमारे दिल के वो जज्बात को समझते हैं बल्कि हमें सही सलाह भी देते हैं। भुवनेश अशोक नगर, अशोक विहार दिल्ली से जुड़ गए हमारे साथ। भुवनेश जी कह रहे हैं अशोक विहार से कि आज के टॉपिक में ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपने दिल की बात अपने पेरेंट्स से शेयर करता हूँ, इसके अलावा मैं अपनी सिस्टर से शेयर करता हूँ, अपने कज़न से शेयर करता हूँ जो मेरी फीलिंग को समझते हैं, और इसके अलावा मैं अपने बचपन के दोस्तों से भी शेयर करता हूँ और मुझे मेरी प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाता है। बिल्कुल सही, शुक्रिया आपका संदेश भेजने के लिए भुवनेश जी। गुलफाम खान दिल्ली शाहदरा से जुड़ गए हैं, कह रहे हैं गुलफाम जी कि मैं अपने दोस्त से सलाह लेता हूँ, सलाह मशवरा करता हूँ। क्या बात है, आपका दोस्त भाई बहुत अजीज़ है, यकीन मानिए उन्हें बिल्कुल अपने दिल से दूर मत करिएगा, अपने करीब रखिएगा, क्योंकि ऐसे दोस्त, सच्चे दोस्त मिलते बहुत किस्मत से हैं।

मोहल्ला हलवाईयान कोट शेरकोट मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी जुड़ गए हैं। ये कह रहे हैं कि आपको मेरा प्यार भरा सलाम प्रवीण जी, आपका स्वागत है। वहाँ मौसम कैसा है भाई? यहाँ तो अभी गर्मी का आलम है। और ये कह रहे हैं कि मैं अपने दिल की बात अपनी माँ से शेयर करता हूँ क्योंकि मेरी माँ ही मेरे लिए भगवान है। क्या बात है, बहुत खूब वकार जी, मोहम्मद वकार फरीदी जी, आपके जज्बात की हम कद्र करते हैं। और यकीन मानिए, जब तक माता पिता का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहता है ना, हमें दुनिया की कोई ताकत हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। यानी कि हमें खुदा का, ईश्वर का आशीर्वाद ज़रूर मिलता है क्योंकि माँ बाप में ही ईश्वर बसते हैं। इसके अलावा सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीवा से जुड़ गए हैं। ये कह रहे हैं, पूरा मुखी परिवार जुड़ गया हमारे साथ। ये कह रहे हैं कि हम अपने दिल की बात अपने परिवार के साथ शेयर करते हैं और एक दूसरे से सलाह मशवरा करते हैं। क्या बात है, एक दूसरे से ये अपने दिल की बात साझा करते हैं। और इसके अलावा कह रहे हैं कि आपको शुभ संध्या, जीवन मंगलमय हो, आपका भी, आपको भी शुभ संध्या और आपका जीवन बहुत मंगलमय हो, हमारी भी यही कामना है।

0: समझे हाँ?
1: बढ़िया।
2: मंगल भवन मंगल हारी द्रवहुं सुदर्शन।
3: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
4: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल। आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6 दिल से दिल तक।

एक बार दोस्तों पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मैसी मसाला मिक्स आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। समय हो गया है 6:54:28। अगला संदेश में मिला है, ये है ऋतु बत्रा, कृष बत्रा, जुगल बत्रा और हर्षिता बत्रा दिल्ली से, दिल्ली के गोपाल पार्क से। ये कह रहे हैं गुड इवनिंग, आपको भी शुभ संध्या। ये कह रहे हैं कि मैं अपने दिल की बात अपनी बेटी से शेयर करती हूँ और जो मेरी बेटी है और बेटी के साथ साथ मेरे दोस्त भी है, बेटी और दोस्त दोनों है, क्योंकि कह रही हैं जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब हाँ उन्हें फ्रेंड्स जैसे भी ट्रीट करना चाहिए, ये मेरी थिंकिंग है। बिल्कुल सही, धीरे धीरे जो है जब इंसान बड़ा होता है तो वो अपने अगले पड़ाव पर जब पहुंचता है तो यकीनन बचपन से युवावस्था फिर जवानी बुढ़ापा, इस तरह ये जो है जीवन में उम्र का दौर ये चलता रहता है। और यकीनन अगर हम उन्हें अपनी तरह ट्रीट करेंगे तो यकीनन अपने दिल की बात वो भी हमसे शेयर करेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं। आपका धन्यवाद संदेश भेजने के लिए और इतनी खूबसूरत बात हमसे शेयर करने के लिए धन्यवाद ऋतु जी। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा और पूजा परिहार ये जुड़ गए हमारे साथ। ये कह रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। ये कह रहे हैं कि आज हमें जो है पेड़ लगाने होंगे और उन पेड़ों को बड़ा रूप देना होगा। आजकल ग्लोबल वार्मिंग के चलते पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु सब प्रदूषित हो रहा है और पर्यावरण को हमें बचाना है। स्वच्छ साफ हवा और पानी के लिए, अच्छी जलवायु के लिए हमें पौधारोपण करना होगा। और इन्होंने काफ़ी कुछ लिखी हैं बातें, लेकिन नटशल में इन जो है इनका वो ये है लबोलुभाव कि ये कहने कि हम सबकी जिम्मेदारी है इसको बचाने की, यानी पर्यावरण जो दिवस है मनाते हैं हम, जितने ज़्यादा पेड़ लगाएंगे उतना ज़्यादा हमारा जो पर्यावरण है शुद्ध होगा और उतनी ज़्यादा हमारी प्रकृति जो है वो अच्छी होगी, यानी हम खुशहाल जीवन जी पाएंगे। धन्यवाद आपका संदेश भेजने के लिए आप सभी का। ये हैं, ये कह रही मैं लक्ष्मी हूँ, लक्ष्मी जी आपका स्वागत है। ये कह रही है कि मैं अपने दिल की बात ईश्वर के सामने बोल देती हूँ क्योंकि ईश्वर पर हम आंख बंद कर भरोसा कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, ईश्वर जो है वो हमारे अपने हैं, हमारे राजदार हैं, हमारे कर्णधार हैं, हमारे सब कुछ हैं। और हम अपने दिल की बात अगर हमने अपने कुछ भी जो चीज़ हमारे अंदर है अगर उनके सामने अर्पित कर दी, उनको समर्पित कर दी, तो यकीनन हमें कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसा सुराग जरूर मिल जाएगा, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। अगर हम कितनी भी परेशानी में, कितनी मुसीबत में होंगे, हमें उम्मीद की किरण जरूर नजर आएगी। धन्यवाद संदेश भेजने के लिए लक्ष्मी जी आपका। लेकिन आपने ये नहीं लिखा कि आपने संदेश भेजा कहाँ से, अगली बार जरूर लिखकर भेजिएगा। अरुण कुमार फ्रॉम भटिंडा, ये अरुण कुमार जी ने कुछ पंक्तियाँ लिखकर भेजी हैं विश्व पर्यावरण दिवस पर। आपको भी शुभकामनाएं पर्यावरण दिवस की। ये कह रहे हैं धरती माँ का ना करें अपमान, पेड़ लगाकर बढ़ाएं उसकी शान, स्वच्छ हवा और हरियाली का साथ, यही है जीवन, यही है प्रकृति का आशीर्वाद। बहुत खूब, बहुत सुंदर। राजेश भल्ला एडवोकेट कंकड़खेड़ा मेरठ से जुड़ गए हैं। कह रहे हैं कि लोग कहते हैं तकलीफ बताने से कम होती है, तजुर्बा कहता है कि बस तमाशा होता है। ये देखिए अपनी सोच होती है यकीनन, लेकिन कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं राजेश जी जिन्हें हम अपने दिल की बात अगर शेयर करें तो हमें सही और मशवरा, सही सलाह मिलती है, ऐसा मानते हैं वो, शायद आप भी मानते होंगे। दोस्तों इससे पहले कि कुछ और कहें, क्योंकि वक्त हमें और बातें करने की इजाज़त नहीं दे रहा है, बस आपसे परमिशन आज लेता है अगली मुलाकात तक अनुमति। बस आप सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो। अगली मुलाकात होगी बहुत जल्द, रात 8 बजे प्रोग्राम होगा म्यूजिक मस्ती। तब तक के लिए परमिशन लेता है इजाज़त, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य के विकास को गति मिलेगी और लोगों का जीवन बेहतर होगा। श्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल सूरत की प्रशंसा की।
1: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया हरित और स्वच्छ भविष्य की ओर बढ़ रही है तथा भारत भी इसमें सक्रिय योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर आगे बढ़ रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है, इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: प्रधानमंत्री आज दमण भी जाएंगे जहां वे लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृहमंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि ये परियोजना अंतिम चरण में है और अगले वर्ष सीमा सुरक्षा बल तथा सशस्त्र सीमा बल की तैनाती वाले 7 से 8 संवेदनशील क्षेत्रों में इसका प्रायोगिक चरण शुरू किया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत अमरीका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत सकारात्मक रही है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली के लिए आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से जबरन कब्जा कर रखा है। ये चुनाव 7 जून को होने हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% रहने का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में

वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन 31 जुलाई तक किए जा सकेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया है कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और अनुशंसाएं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस की पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत को SU-57 लड़ाकू विमान कार्यक्रम में शामिल करना चाहता है। भारत एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
2: www.delhitalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
3: Welcome back to our listeners. You're tuned to FM Rainbow 102.6 megahertz is the frequency, and we are checking out new releases and some recent hits in the program Friday Fiesta. My name is Lipika Das. So Friday Fiesta, fresh sounds, soccer anthems, rising stars, and the songs everyone will be talking about soon. All these are featured in this session of Friday Fiesta, especially for you. The next new release, it was dropped just a few hours back, and it's called the London's Inspired Groove. Very breezy and very casual, with very catchy lyrics alongside playful harmonies. The song is called Boys Are Fun by Niall Horan from his latest album, Dinner Party. Here's the track.

वेलकम है फ्रेंड्स, अपना आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं म्यूजिकल योर्स आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 दिल से दिल तक। दोस्तों, दिल्ली और एनसीआर के अलावा आप हमें अलग अलग जगहों पर मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज पर सुन रहे हैं। और अब वक्त हो गया आपके अपने मस्ती भरे प्रोग्राम का, जिसका नाम है म्यूजिक मस्ती। और आज म्यूजिक मस्ती के साथ स्टूडियो में उपस्थित है आपका दोस्त होस्ट प्रवीण शर्मा।

0: दोस्तों वहां से रो रहे हैं छोटे चंद्राल के पास, सुनते रहिए अपना मनपसंद प्रोग्राम जिसका नाम है म्यूजिक मस्ती।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आप इस वक्त म्यूजिक मस्ती की खूबसूरत और हसीन महफिल में अपने दोस्त प्रवीण शर्मा के साथ, तो एक बार फिर करते हैं मिलकर डांस इस डांसिंग फ्लोर पर।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: जी हाँ भाई बहनों, झुमरी तलिया से मुन्नी की रिक्वेस्ट आई है। रफ्ता रफ्ता देखो, आंख मेरी लड़ी है,
3: लड़ी है, लड़ी है, लड़ी है, लड़ी, लड़ी, लड़ी, लड़ी।

0: स्टोरी में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल,
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

और दोस्तों फिलहाल परमिशन आपसे लेता है म्यूजिक मस्ती से अनुमति आपसे फिर होगी भेंट, लेकिन कहीं मैं जाइए क्योंकि अगले प्रोग्राम आपकी याद आती रही के साथ स्टूडियो में मौजूद है गीता चौधरी। तो आप कीजिए उनका स्वागत और फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए शुभरात्रि, नमस्कार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार दोस्तों, रात के 9 बज चुके हैं। दिन की भागदौड़ अब धीरे धीरे थम रही है, शहर की रफ्तार कुछ कम हो रही है। तो चलिए आप और हम अगले एक घंटे के लिए निकलते हैं यादों के उस बहुत ही खूबसूरत सफर पर, जहां कोई मंजिल नहीं होती, सिर्फ एहसास होते हैं। वेल, आप सुन रहे हैं 102.6 FM रेनबो और शो का नाम है आपकी याद आती रही। मैं हूं गीता, प्यार से गीतू भी कहते हैं। तो एक घंटे तक बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारे प्यारे गाने आने वाले हैं। तो आपको कहीं नहीं जाना है, जहां पर भी आप हैं स्टे ट्यून्ड। इसके साथ ही अगर अपने दिल की बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं, मेरे प्रोग्राम के ज़रिए आप अपने दिल की बात किसी अपने तक पहुंचाना चाहते हैं, तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है आप सभी जानते हैं, वो है 9868107070। मैसेज करके बताते चलिएगा।

वैसे दोस्तों सच बात है, ज्यादा मिलने से प्यार तो हो ही जाता है, क्योंकि अगर एक पौधे को भी अगर आप पानी नहीं लगाएंगे तो वो सूख जाएगा। इसलिए मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए तो मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। वेल, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जब हम याद शब्द सुनते हैं या फिर याद शब्द के बारे में हम बात करते हैं इस प्रोग्राम में, तो अक्सर किसी ख़ास इंसान का ख्याल आता है। लेकिन आज मेरे जहन में, मेरे दिमाग में एक बात याद आई, या मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। क्या यादें सिर्फ प्यार मोहब्बत तक सीमित होती हैं? बताना आप मुझे मैसेज करके। मेरी नज़र में बिल्कुल नहीं। याद वो भी होती है दोस्तों, जब हम बचपन की अगर मैं बात करना चाहूँ, गर्मी की छुट्टियों में दोपहर में बहुत ज़्यादा चिलचिलाती गर्मी पड़ती थी, साइकिल लेकर पूरे मोहल्ले का चक्कर लगाया करते थे। याद वो भी होती है जब मम्मी सो जाया करती थी तो चुपके से दोस्त के घर हम पहुँच जाया करते थे। याद होंगी ना सारी बचपन की जो बातें हैं, वो एकदम से रिकॉल हो गई होंगी और आपके सामने वो आ गई होंगी। और दोस्तों याद वो भी होती है जब पॉकेट मनी के 10-10 रुपये बचाकर हम कॉमिक्स खरीद कर लाते थे और हमेशा नई सीरीज़ का इंतज़ार रहता था, और फिर क्या करते थे, चुपके से डर की वजह से रजाई के अंदर टॉर्च जलाकर वो कॉमिक्स पढ़ते थे। ये भी तो एक याद है ना, पुरानी यादें याद आती है तो कितना अच्छा लगता है। ख़ासतौर से जो बचपन होता है ना, वो वाकई में बहुत खूबसूरत होता है। और आज सोचते हैं तो लगता है कि ज़िंदगी उस वक्त कितनी छोटी थी, लेकिन जनाब खुशियाँ बहुत बड़ी थी। वेल, सबसे पहला मैसेज मेरे साथ मेरे प्रोग्राम में किया है प्रेमचंद प्रेमी, धामपुर से जुड़े हैं। लिखते हैं कि गीता जी नमस्ते, शो में बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। और खाना खाते हुए सिर्फ परिवार आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच जी। आगे लिखा है, कहने को तो बात बहुत है, यादों के हालात बहुत हैं, इंसानों की बात न करना, पत्थर में जज्बात बहुत हैं, कोई किसी का हाल न पूछे, राह में चलते साथ बहुत हैं, मन का सुख यूं दूर।

हुआ रे, लालच और जुल्मात बहुत हैं, बहुत रो लिए, अब चुप प्रेमी, गम की लंबी रात बहुत है। ब्यूटीफुल। लेकिन ये गाना बहुत अच्छा चल रहा है, इसको एंजॉय कीजिए।

दोस्तों, कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी जो जनरेशन है वो सच में बहुत ज़्यादा लकी है, बहुत ज़्यादा खुशनसीब है। हमने वो दौर देखा है जब दोस्ती मोबाइल नंबर से नहीं बल्कि साथ खेली गई, गिल्ली डंडे, क्रिकेट और छुपम छुपाई, आइस पाई, और जब शाम होते ही हर घर से एक ही आवाज़ आती थी, घर आ जाओ, बहुत खेल लिया, मम्मी ऐसे चिल्लाती थी, है ना। और तब लगता था कि दुनिया का सबसे बड़ा अन्याय भाई हमारे साथ क्यों हो गया, क्यों बुला रही हो मम्मी। लेकिन आज वही आवाज़ सबसे ज़्यादा याद आती है ना।

बहुत ही खूबसूरत एक मैसेज आया मेरे पास माहिदा सुल्ताना का फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर राजौरी से। लिखते हैं कि वो जिसके लफ्ज़ों से फूल झड़ते हैं, वाह क्या बात है, वो जिसके लफ्ज़ों से फूल झड़ते हैं, सुना है शहर में ऐसा भी जादूगर आया है। आगे लिखा है, मैम आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है और आप बहुत प्यारे प्यारे गाने प्ले कर रही हैं, थैंक यू सो मच।

वेलकम बैक। टाइम हुआ है ऑन द डॉट फ्रॉम माई स्टूडियो क्लॉक 9:18। प्रोग्राम चल रहा है, आपकी याद आती रही, यह है 102.6 FM रेनबो। मैं हूँ गीता, प्यार से गीतू भी आप कहते हैं। आई होप आपको ये सफ़र और ये जो प्लेलिस्ट है अच्छा लग रहा होगा, अच्छी लग रही होगी, और मेरी प्लेलिस्ट भी आपके दिल के किसी कोने को ज़रूर छू रही होगी। अगर इस वक्त आपकी भी कोई ऐसी याद है जो चेहरे पर मुस्कान ले आती है, तो उसे आज खुलकर जी लीजिए, क्योंकि कुछ यादें हमें कभी भी बूढ़ा नहीं करती, बल्कि फिर से बच्चा बना देती हैं। और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो मेल करके भी कह सकते हैं। हमारा मेल आईडी है FM Rainbow 102.6 FM @gmail.com।

ओए होए ओए होए, क्या बात है। अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में कितनी कशिश है। वाकई में एक टाइम था जब अनुराधा पौडवाल जी की आवाज़ चारों तरफ छाई हुई थी। आई होप आज की प्लेलिस्ट आपको पसंद आ रही होगी। इफ़ येस, प्लीज़ डू राइट इन टू fmrainbow102.6@gmail.com राइट नाउ, क्योंकि आपके जो रिएक्शन है वो उनका हमेशा मुझे इंतज़ार रहता है। मेरे एक दोस्त ने पूछा है कि गीता मैम प्लीज़ जो आईडी है, ईमेल आईडी, वो एक बार फिर से बता दीजिए, तो मैंने बता दी है। अब एक बात सच सच बताइए आप, क्या आपको भी वो आखिरी बेंच स्कूल की याद आती है? याद तो आती होगी ना। वो दोस्त याद आते हैं जिनके साथ पूरी क्लास, पूरे पीरियड में हम हंसते रहते थे। वो टिफ़िन शेयर करना, वो लंच से पहले ही सारा अपने पराठे खा जाने आम के अचार से ऐसा होता था ना। और वो पीटी पीरियड का इंतज़ार हमेशा रहता था, ग्राउंड में जाएंगे खेलने। और वो बारिश के दिन स्कूल पहुंचकर पता लगता था कि चलो भाई आज तो छुट्टी हो गई है, मज़ा आ गया। दोस्तों उस वक्त बहुत छोटी छोटी चीज़ों में हमें बहुत बड़ी वाली खुशियाँ मिलती थी। और आज बड़े बड़े मौके भी आते हैं लेकिन हम खुश नहीं हैं, है ना। मेल आईडी पूछिए तो मेल करके बताते रहिएगा आज की प्लेलिस्ट और आज का प्रोग्राम कैसा लग रहा है, क्योंकि आपका जो प्यार है वो इस प्रोग्राम की हौसला अफजाई है। गाना बहुत प्यारा है, एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ट्रैक।

एक मैसेज आया है, लिखते हैं, नमस्कार गीतू मैम, मेरा नाम कृष्ण कुमार मिश्र है और मैं दिल्ली में रहता हूँ। जैसे हमारे पिताजी कहते हैं कि अगर आप समय को अहमियत देते हैं तो वो भी आप पर अपनी थोड़ी सी तो ऐसी यादें दे जाता है जिसे हम अपने जीवन भर याद करते हैं, जैसे हमारा बचपन, स्कूल की पढ़ाई और कॉलेज की मस्ती। बहुत अच्छी बात कहते हैं आपके पिताजी और उसको ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिए।

वाकई में मजा आ गया। कविता कृष्णमूर्ति की आवाज और साथ दे रहे थे सुरेश वाडेकर साहब। मोहम्मद सरफराज आलम जी जुड़ गए हैं जो कि हाट दर्शना बाजार अररिया बिहार से लिखते हैं। गीता जी, आशिकी का जो गाना आपने इस गाने से पहले सुनाया था वो किसी खास शख्स की याद दिला गया। कॉलेज के वो दिन, वो मुलाकातें और कुछ अधूरी बातें फिर से दिल में दस्तक देने लगी। खूबसूरत प्रस्तुति के लिए शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आप प्रोग्राम सुन रहे हैं और सुनने के साथ साथ आप टाइम निकालकर मैसेजेस करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और आपने सही लिखा है, वाकई में ये गाने पता है मैजिकल होते हैं, जादूगर होते हैं। इन गानों को सुनकर पता नहीं हम कहाँ चले जाते हैं, किस कोने की याद, बचपन की याद, कॉलेज की याद, स्कूल की याद, चारों तरफ से आके घेर लेती है। पता है, जिंदगी हमें कॉलेज तक ले

ये गाना सुनकर, जहाँ किताबों से ज़्यादा यादें बनती थी। कॉलेज में होता था ये अक्सर, कैंटीन की वो चाय याद आ गई, दोस्तों की वो एकदम से अंतहीन जो हमारा आर्ग्यूमेंट चलते थे ना, बहस चलती थी। और कभी कभी ऐसा होता था बंक मार कर, चलो आज बंक मारते हैं, फिल्म देखने चलते हैं। और जनाब जब एग्ज़ाम के दिन आते थे और उससे एक दिन पहले हम भगवान को खूब डट के याद करते थे, प्लीज़ जो हमने याद किया है ना कल एग्ज़ाम में वही आ जाए। ऐसा होता था ना, कितना प्यारा कितना खूबसूरत दौर था वो। तब लगता था कि ज़िंदगी बहुत लंबी है, और आज लगता है कि वो दिन कितनी जल्दी बीत गए ना, हम कितने बड़े हो गए आज, कहाँ गए वो दिन पता नहीं। ये जो गाना बज रहा है ना, मेरी जान है, वाकई में बहुत सारी यादें जुड़ी हैं इस गाने के साथ। बहुत खूबसूरत सड़क फिल्म का गाना, ओए होए।

वेलकम बैक दोस्तों. एक मेरे इनफैक्ट तीन दोस्त मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं, जीशान वारसी, अयूब खान, इमराज शेख. वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली से ये लिखते हैं कि आदरणीय गीता जी, आदाब, नमस्कार. मेरा संदेश अलग टॉपिक पर है लेकिन बेहद ज़रूरी है. तो हमने भी आपका जो ज़रूरी मैसेज है वो अपने प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं. लिखते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस के लिए एक बहुत ही सुंदर संदेश है. आइए इस विश्व पर्यावरण दिवस पर हम सभी ये संकल्प लें कि प्रकृति की रक्षा करें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और जल का संरक्षण करें और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ और हरित बनाएं. स्वच्छ पर्यावरण ही स्वस्थ जीवन का आधार है. आने वाली पीढ़ियों को एक सुंदर, सुरक्षित और हरा भरा संसार देना हम सभी की जिम्मेदारी है. सही लिखा आपने, आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है और मुझे लगता है शायद ये दिन हमें सिर्फ पेड़ लगाने की नहीं बल्कि अपने सोचने के तरीके को बदलने की भी याद दिलाता है. ऐसा नहीं है कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है तो आज हम एक पेड़ लगाएंगे, बिकॉज प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट इज नॉट वन डे इवेंट, इट्स अ डेली हैबिट, इट्स अ डेली रूटीन. एक छोटी सी कोशिश, एक पौधा, पानी की थोड़ी सी बचत, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत ही बेहतर, बहुत ही खूबसूरत कल देना. सो लेट्स नॉट जस्ट सेलिब्रेट नेचर टुडे. ऐसा नहीं कि हम आज ही सेलिब्रेट करें कि यार डे है. लेट्स रिस्पेक्ट इट एवरी डे, क्योंकि धरती हमारे पूर्वजों की विरासत नहीं बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों की एक अमानत है. थैंक यू सो मच आप तीनों का, बहुत ही खूबसूरत मैसेज किया है और शायद इम्प्लीमेंट हो, आई होप.

मोहम्मद सरफराज आलम ने बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एक मैसेज किया है। लिखते हैं कि आपके द्वारा बताया गया एफएम रेनबो का ईमेल आईडी आजकल सक्रिय नहीं है। ओह थैंक यू सो मच। वर्तमान में श्रोताओं के सुझाव, सलाह और शिकायतों के लिए जो एक्टिव ईमेल आईडी है वो है feedbackfmrainbow@gmail.com। तो जिन मेरे दोस्तों को नहीं पता वो ध्यान से लिख लीजिए, feedbackfmrainbow@gmail.com। बिंदास बोल कार्यक्रम के लिए भी श्रोताओं की राय, सुझाव और शिकायतें इसी ईमेल आईडी पर स्वीकार किए जाते हैं। ये कार्यक्रम प्रत्येक महीने के तीसरे शुक्रवार को प्रसारित होता है। वाह वाह वाह, तालियां तालियां तालियां सरफराज जी आपके लिए। आपने इतना अच्छा एक ये इन्फॉर्मेशन दी है हमारे तमाम दोस्तों को। थैंक यू सो मच।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे FM रेनबो पर।
2: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर। मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल,
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: वेलकम बैक दोस्तों, टाइम हो चला है 9:46, प्रोग्राम बेहद खूबसूरत दौर में आपकी याद आती रही।

किशन वंजानी, नीलम, स्वाति और किशु जुड़े हैं रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से। लिखते हैं, गुड इवनिंग, वेलकम टू द शो, आपकी याद आती रही। गीत संगीत हमें बेहद पसंद आ रहे हैं, प्लेलिस्ट वंडरफुल है एंड नाइस प्रेजेंटेशन, थैंक यू सो मच।

अनुराग आदर्श नगर से जुड़े हैं, लिखते हैं कि प्रोग्राम अच्छा लग रहा है मैम, सदाबहार गाने की बात ही अलग है। जी हाँ, थैंक यू सो मच। कपिल यादव गाजियाबाद पूजा कॉलोनी से जुड़े हैं, अपने भांजे गुलशन यादव के साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं। गाने बहुत अच्छे चल रहे हैं और मेरे भांजे को भी बहुत पसंद आ रहे हैं। वह वैसे बहुत छोटा है लेकिन उसको फिर भी गाने समझ आ रहे हैं। थैंक यू सो मच।

मोहम्मद शहजाद सूरत गुजरात से जुड़े हैं, कहते हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और सॉन्ग भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। जी हाँ, थैंक यू सो मच।

वेल दोस्तों, वक्त हो चला है 9:54, ठीक 10 बजे आप हिंदी में समाचार सुनेंगे, उसके बाद लिपिका आपके साथ होंगी। और अगर आज की बातें आपको आपकी पुरानी गलियों, पुराने दोस्तों, पुराने दिनों या किसी भूले बिसरे किस्से तक ले गई हो, तो समझिए हमारा ये जो सफ़र चल रहा है, ये जो प्रोग्राम है, वो सक्सेसफुल हो गया। यादों की सबसे खूबसूरत बात यही होती है दोस्तों, ये कभी बूढ़ी नहीं होती। वक्त गुज़रता है, कैलेंडर चेंज होते हैं, लेकिन यादें वहीं रहती हैं हमारे दिल में, हमारी मुस्कान में, हमारी कहानियों में।

वेल दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जब भी जिंदगी बहुत तेज भागती हुई लगे आपको, थोड़ा सा रुकिए, पीछे मुड़कर देखिए। हो सकता है कोई पुरानी याद आपका इंतजार कर रही हो, क्योंकि जिंदगी सिर्फ आने वाले कल का नाम नहीं है। जिंदगी उन खूबसूरत पलों का भी नाम है जिन्हें हम जी चुके हैं। आप सुन रहे थे 102.6 FM रेनबो। प्रोग्राम था आपकी याद आती रही। चलती हूँ मैं, 11 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। प्रोग्राम होगा रंगे महफिल। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी यादों को हमेशा जिंदा रखिए। बाय।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमण में 9,270 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।

मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकारकर विकास को प्राथमिकता दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृहमंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में 3.2% की वृद्धि दर देखी गई है, जो मुख्य रूप से कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्रों के प्रदर्शन से प्रेरित है। मई माह में भारत के यात्री वाहन बाजार में लगभग 4,40,000 वाहनों की बिक्री दर्ज की गई। यह पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। श्री पुरी ने कहा कि प्राकृतिक गैस का भंडार 355 मीटर की गहराई पर पाया गया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग की आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। भारत वर्तमान में अपनी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित कर रहा है। भारत एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से पराजित हो गई थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन में 2,970 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा

सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृहमंत्री ने त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैसों का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार दोस्तों, रात की ये खामोश घड़ियां दिन भर की भागदौड़ के बाद मिलने वाला थोड़ा सा सुकून और संगीत का साथ, इससे बेहतर महफिल और क्या हो सकती है। आप सुन रहे हैं 102.6 FM रेनबो और कार्यक्रम है रंगी महफिल। मैं हूँ गीता और अगले कुछ पलों तक हम साथ मिलकर सजाएंगे एक ऐसी महफिल जहाँ बातों में नज़ाकत होगी, एहसासों में गर्माहट होगी और गीतों के जो गीत सुनवाएंगे, जो गज़ल सुनवाएंगे, उसमें ज़िंदगी के कई रंग शामिल होंगे।

दरअसल कहते हैं दोस्तों कि दिन का जो शोर होता है वो इंसान को दुनिया से जोड़ता है, लेकिन रात की खामोशी उसे खुद से मिलवाती है। और यही वो वक्त होता है जब कुछ अधूरे ख्वाब याद आते हैं, कुछ पुरानी बातें मुस्कुराने पर मजबूर कर देती हैं और कुछ नए ख्याल मन के दरवाज़े पर दस्तक देते हैं। तो अगर आप भी इस वक्त अपने कमरे की खिड़की से आसमान की तरफ झांक रहे हैं, खुले आसमान को देख रहे हैं, या फिर बहुत सारे मेरे जो दोस्त हैं वो सफ़र कर रहे होंगे, नाइट शिफ्ट में भी बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे और हमें सुन रहे होंगे, और कुछ बस नींद के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, आज की ये महफ़िल आपके लिए

कैसा लगा रॉकी फिल्म से ये गाना, मैसेज करके बताइएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9818986810707070। जाग रहे हैं ना, तो मैसेज करके बताइएगा।

देव जुड़ गए हैं दिल्ली से, लिखते हैं बहुत याद आते हो। जब ताजे गुलाब देखता हूँ, जब काटता हूँ एक सुनहरी शाम तुम्हारे बगैर। वाह, बहुत ही गहरी बात कही है देव आपने, थैंक यू सो मच।

0: हाँ यही प्यार है।
1: वेल, जिंदगी भी बहुत दिलचस्प होती है। कभी ये किसी रंगीन मेले जैसी लगती है, तो कभी किसी शांत समुद्र की तरह किताब के उस पन्ने जैसी लगती है जिसे हम बार बार पढ़ना चाहते हैं। और रात का ये वक्त हमें एक बात ज़रूर सिखाता है कि हर दिन चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, हर शाम अपने साथ उम्मीद का एक नया दिया लेकर आती है, एक नया चैप्टर शुरू होता है। और शायद इसी वजह से रातें सिर्फ अंधेरे का नाम नहीं है, बल्कि नए सवेरे की तैयारी है। आप सुन रहे हैं 102.6 FM रेनबो। प्रोग्राम शुरू हो चुका है रंगे महफिल, और मैं हूँ गीता मोहम्मद।

इम्तियाज जवाहर कैंप कीर्ति नगर से जुड़े हैं। लिखते हैं कि तन्हा रात है और दिल उदास है, वो मिलके बिछड़ गए, ये कैसी मुलाकात है। दिल धड़क रहा है मगर आवाज नहीं, वो धड़कन भी ले गए, कितनी अजीब बात है। फैंटास्टिक।

प्रकाश तिरसुनिया भानु प्रतापपुर छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं, लिखते हैं, हम सुन रहे हैं आपका प्रोग्राम। मैं अपने बच्चे के साथ अपने घर के टेरेस पर था, जब उसे अच्छी नींद आने लगी तो मैं नीचे आ गया, पर मैं आपके प्रोग्राम के साथ बना हुआ हूँ। थैंक यू सो मच।

आपको पता है कभी कभी सबसे जो खूबसूरत सबसे प्यारी बातें वो होती हैं जो कहीं नहीं जाती, किसी का खामोशी से हाल पूछ लेना, बिना वजह किसी की मदद कर देना, या फिर किसी की मुस्कान की वजह बन जाना। दुनिया में आज भी बहुत अच्छाइयाँ हैं दोस्तों, बस उसे देखने के लिए थोड़ी देर ठहरना पड़ता है, रुकना पड़ता है, उसको ध्यान से देखना पड़ता है। और शायद संगीत भी यही काम करता है, कुछ मिनटों के लिए हमारी परेशानियाँ, हमारी टेंशन, हमारे दिन भर की जो थकान होती है, जो स्ट्रेस होता है, वो दूर हो जाता है। और ये जो गाने हैं, मैं हमेशा कहती हूँ ना, बड़े जादूगर होते हैं। जैसे ही हम अपना मनपसंद गाना सुनते हैं ना, तो हमारी जो सारी दिन भर की थकान छूमंतर हो जाती है।

0: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

क्या बात है, क्या बात है दोस्तों। फिल्म बैजू बावरा से रफ़ी साहब की आवाज़, क्या फिल्म थी ये। 1952 में रिलीज़ हुई थी और देखते ही देखते पूरे देश में इसकी धूम मच गई थी उस दौर में। और उस दौर में जब फिल्मी संगीत में क्लासिकल संगीत को बहुत ही व्यावसायिक रूप से जोखिम माना जाता था, तब ऐसे वक्त में, ऐसे नाजुक दौर में संगीतकार नौशाद साहब ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसने इतिहास रच दिया। बैजू बावरा न सिर्फ सुपरहिट हुई बल्कि इसके गीतों ने संगीत की दुनिया में एक नई मिसाल कायम कर दी। और उन्हीं अमर गीतों में से एक ये था, तू गंगा की मौज में जमुना की धारा। शकील बदायूनी साहब के खूबसूरत अल्फाज, नौशाद साहब की राग भैरवी पर ये बेस्ड था मधुर धुन और रफ़ी साहब और लता जी की जादुई आवाज़ इस गीत को सीधे दिल तक ले गई। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंगे महफिल, मैं हूँ गीता, यह है 102.6 FM। एक बहुत प्यारा गाना आपके लिए। जगजीत सिंह की आवाज में बहुत ही खूबसूरत गजल है ये।

सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी शांति नगर सोनीपत से जुड़े हैं, लिखते हैं, कार्यक्रम सुन रहे हैं और मधुर प्रस्तुति, मोहक बातें, मन भावन मन पसंद गीत, फिल्म रॉकी का गाना इनको अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।

शुभाजीत कोलकाता से जुड़े हैं, बहुत ही खूबसूरत इन्फेक्ट इन्होंने लाइनें लिखी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इतना खूबसूरत गाना सुनवाने के लिए। 70-80 के दशक के गानों की बात ही कुछ और थी, उन गानों की एक अलग ही खुशबू थी जो आज भी दिल और जिंदगी की जिंदगी के लिए दवा का काम करती है। और रेडियो पर जब बजते हैं 70-80 के वो सुरीले तराने, लगता है जैसे लौट आए हों फिर से बीते हुए जमाने। कहीं प्रेम की मीठी सरगम, कहीं विरह की गहरी बात, हर धुन में छिपी होती है यादों की एक सौगात। बहुत ही खूबसूरत, और आपने इतनी अच्छी हिंदी में ये मैसेज लिखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते हैं, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

केपी तोमर साहब मेरठ से जुड़े हैं, लिखते हैं, नमस्कार, मैं भी जुड़ गया हूँ आपके साथ। संगीत समस्त ललित कलाओं में सर्वोपरि है। इससे निकलती ध्वनि तरंगे रुग्णावस्था में औषधि का कार्य करती हैं, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या विचार है इस विषय पर? बड़ा कठिन सवाल पूछ लिया जनाब आपने। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि संगीत वो साधना है जो स्वर के माध्यम से भावों को, हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है, आई थिंक। और इसमें न रंगों की सीमा होती है, ना शब्दों का कोई बंधन, सिर्फ और सिर्फ अनुभूतियों का अनंत विस्तार। शायद जब शब्द अपनी सीमा पर पहुंच जाते हैं तब संगीत बोलना शुरू करता है, और शायद इसी कारण संगीत को सभी कलाओं का सबसे प्रभावशाली माध्यम माना गया है। आप क्या कहते हैं इस बारे में?

तालिब अहमद बिजनौर से जुड़े हैं हमारे साथ, लिखते हैं सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तही जिंदगी से नहीं ये फजाएं, यहां सैकड़ों कारवां और भी हैं। कायनात कर आलम रंग और बू चमन और भी, आशियां और भी हैं। आपने जो शेर लिखा है उसकी जो शब्द हैं कुछ आगे पीछे हो गए, दोबारा से मुझे लिखकर भेजिएगा तब मैं इसको रीड करूँगी।

रात गहराती जा रही है लेकिन हमारी महफिल अभी जारी है। याद रखिए दोस्तों, जिंदगी में हर दिन कुछ नया सीखने और कुछ नया महसूस करने का अवसर लेकर आता है, इसलिए बीते हुए कल की थकान को आप पीछे छोड़ दीजिए और आने वाले कल की उम्मीदों को दिल में जगह दीजिए। मैं हूं गीता दोस्तों, आप सुन रहे हैं 102.6 एफएम रेनबो और ये है जो प्रोग्राम चल रहा है वो है रंगी महफिल। फिलहाल सुनते हैं एक और बेहद खूबसूरत गाना, रात के इस आलम को और भी खूबसूरत बना देगा।

आई होप ये प्रोग्राम की प्लेलिस्ट भी आपको पसंद आ रही होगी. यस, प्लीज डू राइट इन टू feedback@gmail.com राइट नाउ, क्योंकि आपका जो फीडबैक है, आपका जो रिएक्शन है, आपका जो प्यार है हमारे प्रोग्राम की हौसला अफजाई करता है. तो प्लीज़ मेल करने में कंजूसी बिल्कुल भी ना करें.

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: वेल, टाइम हुआ है ऑन द डॉट फ्रॉम माय स्टूडियो क्लॉक 11:55। स्टूडियो की घड़ी बिल्कुल इजाजत नहीं देगी कि और बात करूंगी। थर्सडे आपसे फिर मुलाकात होगी, प्रोग्राम होगा मैसेज मसाला मिक्स। लेकिन ये महफिलें दोस्तों यूं ही सजती रहेंगी, गीत भी यूं ही बजते रहेंगे, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, मुझे भी इनफैक्ट याद रखनी चाहिए, जिंदगी की असली खूबसूरती इस बात में नहीं है कि हमारे पास कितना है, बल्कि इस बात में है कि हम जो कुछ भी हैं आज, उस ऊपर वाले की दुआ से आज जो भी हमारे पास है उसे हम कितनी शिद्दत से महसूस करते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। चलिए इसी खूबसूरत सोच के साथ संगीत का जो ये सफ़र है इसको यहीं विराम देते हैं, फिर मिलूंगी। आप सभी खुश रहिए, सभी का बहुत ही बड्डा वाला थैंक यू, आपने टाइम निकाल कर मैसेज किया और प्रोग्राम को पसंद किया। बट हाँ, मेल करना नहीं भूलिएगा, प्रोग्राम के लिए रिएक्शंस आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलती हूँ, गुड नाइट।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर्ज की है। दमन में 2,970 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि देश बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास और गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए सुधारों की अपनी गति को बनाए रखेगा। श्री मोदी ने कहा कि नई परियोजनाएं युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश के लिए शुरू की गई विभिन्न समुद्री परियोजनाओं से एक मजबूत ब्लू इकोनॉमी समुद्री अर्थव्यवस्था के लिए भारत का विजन और मजबूत होगा। उन्होंने दमन हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और नमो अस्पताल को देश को समर्पित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री ने कल त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल

और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 330 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। श्री पुरी ने कहा कि प्राकृतिक गैस का भंडार 355 मीटर की गहराई पर पाया गया है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिवसीय भारत दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुगियोनो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि जून तक देशभर में 9,42,000 से ज़्यादा किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं, जिससे संतुलित खाद के इस्तेमाल का ये अभियान एक देशव्यापी जन आंदोलन बन गया है। कृषि मंत्रालय ने जानकारी दी कि इस अभियान के तहत अब तक 17,800 से ज़्यादा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें 1,57,000 से ज़्यादा लोगों को संतुलित खाद के इस्तेमाल, मिट्टी की सेहत के प्रबंधन और खेती के वैज्ञानिक तकनीकों के बारे में जानकारी दी गई है। इन प्रदर्शनों का उद्देश्य लंबे समय में मिट्टी की उत्पादकता को बेहतर बनाना और रासायनिक खादों पर निर्भरता को कम करना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: 12:05 और 45 सेकंड हुए हैं। दोस्तों आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम जीरो आर शो। और आज के इस प्रोग्राम में मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत से गीत के साथ। और ये गीत हमने लिया है फिल्म कलाकार से, जो कि रिलीज़ हुई थी 1983 में। हालांकि फिल्म ज़्यादा तो नहीं चली थी, लेकिन इसका ये गीत सुपर डुपर हिट हुआ था। तो किशोर कुमार की आवाज़ में आइए सुनते हैं ये गीत।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: दोस्तों, अब आइए आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी का गाया नैना फिल्म का ये गीत। और ये जो गीत हमने लिया है फिल्म नैना से, ये फिल्म रिलीज़ हुई थी 1973 में, जिसमें मुख्य भूमिकाओं में थे शशि कपूर और राजश्री।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: स्वामी फिल्म में अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर का गाया ये खूबसूरत सा गीत।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: बारह बजकर 29 मिनट हुए हैं और दोस्तों आप सुन रहे हैं जीरो आर शो मेरे यानी अर्चना बिसारिया के साथ।

लता मंगेशकर के गाए इस खूबसूरत से गीत के बाद अब आपको सुनवाते हैं शैलेंद्र सिंह का गाया ये गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म जमाने को दिखाना है से।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आशा भोसले और अमित कुमार की आवाजों में आइए अब सुनते हैं फिल्म जीवा का ये गीत।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: जीरो आर शो में आइए अब आपको सुनवाते हैं एक जान है हम फिल्म का गीत, जिसे गाया है आशा भोसले और किशोर कुमार ने।

और दोस्तों ये गीत हमने लिया है लव इन गोवा से, अल्फ्रेड रोज की आवाज़ में, थोड़ा हटके है, ज़रा मज़ा लीजिए।

biggest smile that is love in Goa. Yeah, come on. Oh, baby.

जी हाँ दोस्तों, ज़िंदगी में बस मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए। और अब कार्यक्रम का आखिरी गीत फिल्म खानदान से है और आवाज़ है लता मंगेशकर की।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर्ज की है। दमन में 2,970 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि देश बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास और गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए सुधारों की अपनी गति को बनाए रखेगा। श्री मोदी ने कहा कि नई परियोजनाएं युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश के लिए शुरू की गई विभिन्न समुद्री परियोजनाओं से एक मजबूत ब्लू इकोनॉमी के लिए भारत का विजन और मजबूत होगा। उन्होंने दमन हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और नमो अस्पताल को देश को समर्पित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी, सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री ने कल त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा। भारत के मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर सेक्टर को मजबूत करने और सी फूड के निर्यात को बढ़ाने पर केंद्रित 2 दिवसीय सी फूड निर्यात राष्ट्रीय कार्यशाला कल विशाखापत्तनम में हुई। ये कार्यशाला मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य

मत्स्य पालन विभाग द्वारा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सहयोग और आंध्र प्रदेश सरकार के समर्थन से आयोजित की जा रही है। कार्यशाला का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय मंत्रियों पीयूष गोयल, राजीव रंजन सिंह, चिराग पासवान और के राम मोहन नायडू के साथ किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि जून तक देश भर में 9,42,000 से ज़्यादा किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं, जिससे संतुलित खाद के इस्तेमाल का ये अभियान एक देशव्यापी जन आंदोलन बन गया है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिवसीय भारत दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुगियोनो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से पराजित हो गई थी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: एक बजकर 5 मिनट और 42 सेकंड हुए हैं। आइए अब सुनते हैं नॉन स्टॉप म्यूजिक में सुहानी रात।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी

आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती, समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

आकाशवाणी एट 90.90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर्ज की है। दमन में 2,970 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि देश बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास और गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए सुधारों की अपनी गति को बनाए रखेगा। श्री मोदी ने कहा कि नई परियोजनाएं युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश के लिए शुरू की गई विभिन्न समुद्री परियोजनाओं से एक मजबूत ब्लू इकोनॉमी के लिए भारत का विजन और मजबूत होगा। उन्होंने दमन हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और नमो अस्पताल को देश को समर्पित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी, सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत के कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री ने कल त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल हाइड्रोजन रेल परियोजना की प्रगति की समीक्षा की और दिल्ली के शकूर बस्ती डिपो में आधुनिक मेंटेनेंस सुविधाओं का निरीक्षण किया। उत्तर रेलवे के तिलक ब्रिज शकूर बस्ती रेल सेक्शन के निरीक्षण के दौरान मंत्री ने वरिष्ठ रेल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और इलाके में चल रहे विभिन्न विकास परियोजनाओं की स्थिति का जायजा लिया। शकूर बस्ती डिपो में श्री वैष्णव ने अत्याधुनिक रिट्रैक्टेबल ओवरहेड इक्विपमेंट सिस्टम, बोगी पिट और बोगी लिफ्टिंग सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को ऑपरेशनल क्षमता को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिवसीय भारत दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुगियोनो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि जून तक देशभर में 9,42,000 से ज़्यादा किसान बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं, जिससे संतुलित खाद के इस्तेमाल का यह अभियान देशव्यापी जन आंदोलन बन गया है। भारत एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से पराजित हो गई थी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: 2:05 और 47 सेकंड हुए हैं। आइए अब सुनते हैं भुलाए ना बने। मैं हूं आपके साथ अर्चना बिसारिया।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: कोयल सी तेरी बोली कु कु
1: हाय
0: कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु
1: हाय।
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर दर्ज की है। दमन में 2,970 करोड़ रुपए से ज़्यादा की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि देश बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास और गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए सुधारों की अपनी गति को बनाए रखेगा। श्री मोदी ने कहा कि नई परियोजनाएं युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश के लिए शुरू की गई विभिन्न समुद्री परियोजनाओं से एक मजबूत ब्लू इकोनॉमी के लिए भारत का विजन और मजबूत होगा। उन्होंने दमन हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और नमो अस्पताल को देश को समर्पित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी, सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृहमंत्री ने कल त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ से अधिक हो जाएगा। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिवसीय भारत दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुगियोनो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। हिमाचल प्रदेश में कल देर शाम रिक्टर स्केल पर 5.0 तीव्रता का भूकंप आया। यह भूकंप लगभग 10:04 पर आया। भूकंप का केंद्र जमीन से 5 किलोमीटर की गहराई में था। आसपास के क्षेत्रों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। अभी तक किसी के हताहत होने या संपत्ति के नुकसान की कोई खबर नहीं है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंकों की जांच और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि छात्र अब रविवार आधी रात तक अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। भारत एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से पराजित हो गई थी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। प्रस्तुत है कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज़।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल, गया है बदल।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।
8: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर दर्ज की है। दमन में 2,970 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि देश बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास और गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए सुधारों की अपनी गति को बनाए रखेगा। श्री मोदी ने कहा कि नई परियोजनाएं युवा

0: के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश के लिए शुरू की गई विभिन्न समुद्री परियोजनाओं से एक मजबूत ब्लू इकोनॉमी के लिए भारत का विजन और मजबूत होगा। उन्होंने दमन हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और नमो अस्पताल को देश को समर्पित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृहमंत्री ने कल त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिवसीय भारत दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुगियोनो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। मिजोरम में सत्ताधारी जोरम पीपल्स मूवमेंट के उम्मीदवार के लाल तलुवांग कीमा ने इस महीने के 18 तारीख को होने वाले राज्य सभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। सूत्रों ने बताया कि मिजोरम में मुख्य विपक्षी पार्टी MNF सोमवार को अपने उम्मीदवार की घोषणा करेगी। कांग्रेस और भाजपा राज्य में अपने उम्मीदवार नहीं उतार रही हैं क्योंकि उनके पास चुनाव लड़ने के लिए जरूरी 4 विधायकों का न्यूनतम समर्थन नहीं है। मिजोरम के साथ साथ आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और राजस्थान इस महीने के 18 तारीख को अपने राज्यसभा सदस्य चुनेंगे। भारत एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से पराजित हो गई थी।
2: दिस इज आकाशवाणी।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सारेगामा।

0: अतीत से बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर दर्ज की है। दमन में 2,970 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद कल प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि देश बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास और गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए सुधारों की अपनी गति को बनाए रखेगा। श्री मोदी ने कहा कि नई परियोजनाएं युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश के लिए शुरू की गई विभिन्न समुद्री परियोजनाओं से मजबूत ब्लू इकोनॉमी के लिए भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। उन्होंने दमन हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल का उद्घाटन किया और नमो अस्पताल को देश को समर्पित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने बताया कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने ये भी बताया कि भारत और सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृहमंत्री ने कल त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामुरा सीमा चौकी क्षेत्र में आयोजित किए गए प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर और सुगियोनो कल नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि जून 2026 तक देश भर में 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित खाद के इस्तेमाल का यह अभियान एक देशव्यापी जन आंदोलन बन गया है। इस अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। मिजोरम में सत्ताधारी जोरम पीपल्स मूवमेंट के उम्मीदवार के लाल तलुआंग कीमा ने इस महीने की 18 तारीख को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। सूत्रों ने बताया कि मिजोरम में मुख्य विपक्षी पार्टी MNF सोमवार को अपने उम्मीदवार की घोषणा करेगी। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी राज्य में अपने उम्मीदवार नहीं उतार रही है। मिजोरम के साथ साथ आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और राजस्थान इस महीने की 18 तारीख को अपने राज्यसभा सदस्य चुनेंगे। एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। जापान के काका मेघारा में कल खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत की अंडर 18 लड़कियों की टीम को सेमीफाइनल में चीन से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल और अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम आराधना।